मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा चाहते

0: है वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

आप सुन रहे हैं वो भक्ति रचना जो समर्पित है देवाधिदेव महादेव को, उन शंभु को जो संहार में भी सृजन का संदेश देते हैं, मौन में भी जीवन का संगीत सुनाते हैं और भक्त के मन में विश्वास का दीप जला देते हैं। आइए आज महादेव से केवल अपने लिए कुछ मांगे नहीं, बल्कि अपने भीतर इतनी शक्ति मांगे कि हम किसी और के जीवन में भी आशा का दीप जला सके। हर मन बने शिवालय, हर कर्म बने पूजा और हर सांस में गूंजे हर हर महादेव।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम मंदिर में क्या भाव लेकर जाते हैं, ये बहुत कुछ महत्व रखता है। न धन, न यश, न कोई वैभव, बस इतना वरदान दे दो हमारे अंतर मन में शांति रहे, विचारों में पवित्रता रहे, कर्मों में सच्चाई रहे और हर परिस्थिति में हे ईश्वर हम तुम्हारा स्मरण करें। जब ये भाव हर भक्त के मन में हो तो भक्ति सार्थक होती है और पूजा स्वीकार्य होती है।

जब अंतर मन में शांति हो, अधरों पर ईश्वर का नाम हो, मन में सच्ची श्रद्धा, लगन और भक्ति हो, तो जीवन की हर राह बस प्रभु का ही धाम होती है। मन में श्रद्धा, हृदय में प्रेम, हर पल उन्हीं का ध्यान, यही तो है भक्ति का सच्चा ज्ञान।

तो श्रोताओं, कुछ पल ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और जप लीजिए हरि का नाम। शायद जिस शांति को हम बाहर तलाश रहे हैं वो हमारे अंतर मन में

इस खूबसूरत सी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं ऋग्वेद के श्री सूक्त से पाठ।

हे अग्नि जात वेदस, आप स्वर्ण की कांति के समान वर्ण वाली हरित वर्णा, स्वर्ण रजत पुष्पों की माला को धारण करने वाली, चंद्रमा के समान प्रकाश से युक्त हिरण्य स्वरूपा लक्ष्मी को मेरे पास लाएं।

हे जातवेदस अग्नि, आप कभी छोड़कर न जाने वाली स्थिर लक्ष्मी को मेरे पास लाएं, जिससे मैं स्वर्ण, गाय, अश्व और पुत्र पौत्र

0: चंद्रमा के समान कांतिमती, यश से दीप्त, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवताओं से सेवित, उदार पद्मिनी रूप उस लक्ष्मी की मैं शरण में आया हूँ। मेरी अलक्ष्मी का विनाश हो, मैं आपका वरण करता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। हे सूर्य के समान वर्ण वाली, आपके तप से बिल्व नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व के फल आपके तप रूप अनुग्रह से मेरे अंतः इंद्रिय संबंधिनी माया या अज्ञान को और बाह्य इंद्रियों से संबंधित अलक्ष्मी को दूर करें। उपैतु माम देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर कीर्ति और मणि के साथ आए, मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, वे मुझे यश और समृद्धि प्रदान करें। क्षुत्पिपासा मला ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। भूख प्यास रूप मलिन एवं ज्येष्ठा अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, सभी प्रकार की अभूति एवं असमृद्धि को मेरे घर से दूर कीजिए। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूताराम तामिहोपव्यये स्वयं। प्राण से ग्राह्य गंध लक्षण वाली, दुराधर्ष सस्यादि से नित्य पुष्ट, प्रचुर गोमयादि अर्थात विविध पशुओं से समृद्ध, सभी प्राणियों की अधिष्ठात्री उस लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ।
1: गौरव ग्रंथों से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के श्री सूक्त से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। इस विषय पर डॉक्टर हरिवंश राय से अरविंद कुमार की बातचीत, लीजिए सुनिए।
1: किसान भैया, बढ़िया किसान वह माना जाता है जो खेती किसानी के साथे साथे पशुपालन भी करते हैं। पशुपालक अरे भैया, अपने पशुपालन में खनिज पदार्थन का महत्व है। हर चाहे दुधारू पशु हैं चाहे सामान्य पशु हैं, उनके एक संतुलित भोजन का भी आवश्यकता पड़े, तो पशु आहार में खनिज पदार्थन का महत्व बाटे, एकर जानकारी देवे के खातिर आज अपने बीच में डॉक्टर हरिशंकर राय जी आए बैठे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप ये बतावें कि हम पशुपालक भाई हैं, अपने पशुअन के खातिर खनिज पदार्थन का कैसे व्यवस्था की जाए और कौन कौन पदार्थ हैं जो कि खनिज पदार्थ भी बोला जाता है, एक बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, पशु हमारी राष्ट्र संपदा की एक बहुमूल्य कड़ी है। देश में हरित क्रांति के समान ही श्वेत क्रांति ने भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, परंतु औसत दूध उत्पादन पश्चिमी देशों की

0: में आज भी बहुत कम है। पशुओं को संतुलित आहार देके दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। संतुलित आहार में सभी आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन एवं जल उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। पशुओं को प्रत्येक दिन अच्छी गुणवत्ता का खनिज पदार्थ देना चाहिए। शरीर के अतिरिक्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए खनिज पदार्थ आवश्यक होता है। चारे को काट के किसान भाई खिलाएं और सूखा चारा, हरा चारा, पशु आहार एवं खनिज पदार्थ का मिश्रण मिलाकर के सानी बनाकर एक बार न देके प्रत्येक दिन जो है 3-4 बार में बांट करके देना चाहिए। सभी सानी बनाकर खिलाने से चारे में बर्बादी कम होती है और चारा सुपाच्य हो जाता है। पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है। सूखा चारा जिसमें हम भूसा कहते हैं, गेहूं का भूसा, अरहर का, चना का, मसूर का, जौ का भूसा, 100 किलोग्राम पे पशु के शारीरिक वजन पे 2.5 किलो देना चाहिए। धान का पुआल जो है पौष्टिक नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजेट की मात्रा होती है। इसको चूने के पानी में भिगो के खिलाने से पौष्टिकता बढ़ जाती है। पुआल खिलाते समय 30 ग्राम खड़िया आहार देना चाहिए। इसके बाद जो है हम पशुओं को, पशुपालक भाई, हरा चारा देना चाहिए। हरा चारा जो है कम से कम 10 से 15 किलोग्राम प्रत्येक पशु को मिलना चाहिए, जिसमें बरसीम है, लूसर्न है, जई है, लोभिया है, ज्वार है, सुडान छदी है, एमपी छदी है। हरे चारे में पौष्टिकता अधिक होती है, इससे खनिज पदार्थ की उपलब्धता अधिक होती है और हरे चारे में प्रोटीन एंड विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध उत्पादन में पशु आहार का 60 से 70% योगदान है। इसके साथ ही हरे चारे मुलायम होते हैं, रसीले होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं तथा इसे पशु बड़े चाव से खाता है, सुपाच्य होते हैं तथा इसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है।
1: जी,
0: पशु हरे चारे 2 प्रकार के होते हैं, दलहनी चारा और गैर दलहनी चारा। दलहनी चारे अधिक पौष्टिक होते हैं, इसमें प्रोटीन अधिक होता है। इसको भरपेट नहीं खिलाया जा सकता क्योंकि अधिक खिलाने से अफरा नाम की बीमारी हो जाती है, पेट फूलाता है और बाद में पशु पतला गोबर करने लगता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाई ये जानना चाहे कि खनिज लवण या खनिज पदार्थ जौन है पशुपालक भाई जौन की विभिन्न रूप में मिश्रण में भी मिलत हैं, उनके कैसे हमारे सभे अपने पशुन के दिया जाए और कौन कौन खनिज पदार्थ हैं जौन की हमारे पशुन के खातिर उनके जरूरी है, एक बारे में आप थोड़ा बताओ।
0: खनिज पदार्थ जो है जिसमें मुख्य जो है कैल्शियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, आयरन, कापर, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलेनियम, सोडियम, सल्फर, जिंक, विटामिन ए, डी, ई और निकोटिनामाइड एवं प्रोटीन उचित मात्रा में होना चाहिए।
1: जी,
0: ये इसको बनाने के लिए, इस उचित मात्रा में देने के लिए विभिन्न कंपनियां जो है तरह तरह के मिनरल मिक्सचर्स बनाते हैं, जिसको नियमित रूप से 40 से 50 ग्राम पशुओं को देना चाहिए, जैसा पशु का वजन हो।
1: जी,
0: और इसको खिलाने से बछड़े बछड़ों में वृद्धि में सहायक होता है। पशु चारा खाए हुए पदार्थों को सुपाच्य बनाता है। दुधार पशुओं का दूध उत्पादन में वृद्धि करता है। प्रजनन शक्ति को ठीक रखता है और 2 व्याधों के बीच का अंतर कम करता है।
1: अच्छा,
0: और पशु की लंबी अवधि तक उपयोगी बनाए रखता है। पशुओं को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। खनिज पदार्थ का स्वास्थ्य, रक्षा, उत्पादन, बढ़ोतरी तथा प्रजनन में महत्वपूर्ण योगदान है।
1: जी,
0: त्रुटिपूर्ण रूप से खिलाया जाना बढ़ोतरी, प्रजनन, उत्पादन क्षमता तथा प्रजनन को बुरी तरह प्रभावित करता है।
1: डॉक्टर साहब, ये त्रुटिपूर्ण रूप से भोजन का क्या मतलब है, बारे में थोड़ा हम पशुपालक भाइयों को बताएं।
0: मतलब ये है किसान भाइयों कि इसकी कमी होने पे रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। खनिज पदार्थ के अभाव में पशु दुर्बल हो जाता है, बढ़ोतरी रुक जाती है, मादा पशु गर्भित भी नहीं हो पाता। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर और टेढ़ी हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स नाम का जो है रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। के साथ ही साथ जो बच्चा देने वाली गाय या भैंसे हैं उनमें मिल्क फीवर नाम की बीमारी हो जाती है।
1: जी,
0: तो भूसा, हरा चारा, दानों के साथ खनिज पदार्थ की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के दानों का मिश्रण खिलाना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे सरसों की खली है 35 हिस्सा, गेहूं का चोकर है 35।
1: जी, मतलब सरसों की खली है तो 35 हिस्सा और साथे साथे गेहूं का चोकर है तो 35%।
0: जी, और जौ 27%।
1: जी,
0: खनिज पदार्थ 2%, ये बना बनाया आता है।
1: जी,
0: और नमक 1%।
1: जी, ये सबसे मिला के हमारे सभी अपने पशुओं के खिलावा जाए तो एक संतुलित पशु आहार बतावा जाता है। और एक साथे साथे अगर गाय का नस्ल संकर प्रजाति का है तो उनके हमारे सभी संतुलित मात्रा में खनिज पदार्थ कैसे दिन जाए, ओकर प्रतिशत का हो, एक बारे में थोड़ा बताओ।
0: पशुपालक भाइयों, संकर गायों को दूध देने की क्षमता अधिक होती है।
1: जी,
0: उन्हें मूंगफली की खली 25 हिस्सा, खनिज पदार्थ गेहूं का चोकर

0: पच्चीस हिस्सा
1: जी
0: और चना या बिनोला 25%, मक्का जौ 22%, उसके साथ ही खाद्य पदार्थ 2%, खनिज पदार्थ 2% और नमक 1% देना चाहिए।
1: जी।
0: उचित आहार एवं पोषक तत्वों के बिना दुधार पशुओं का उत्पादन अधिक प्रभावित होता है
1: जी।
0: तथा हर चीज पे इसका असर पड़ता है पशुओं पे।
1: अच्छा, ये बतावें कि आहार व्यवस्था कितने ढंग का होता है और हमारे सभे उम्र के हिसाब से अपने पशुओं के कितना कितना भूसा कितना अनाज संतुलित मात्रा में दिया जाए जौन से कि वो स्वस्थ रहें, और साथ साथ जौन दुग्ध उत्पादन करते हैं जौन दुधारू पशु हैं उनके खातिर संतुलित मात्रा का नियम है, एक बारे में भी थोड़ा आप बताएं।
0: पशुपालक भाइयों, आहार जो है इसकी व्यवस्था दो तरह की होती है,
1: जी।
0: एक तो निर्वाह आहार और दूसरा दुग्ध उत्पादन के लिए आहार।
1: जी।
0: निर्वाह आहार जो पशु न गाभिन हो न दूध दे रहा हो लेकिन उसके शरीर के लिए जो राशन पशु के शारीरिक निर्वाह के लिए दिया जाता है, जैसे भूसा जो है, जैसा वजन है पशु का 4 से 6 किलोग्राम जो है
1: जी
0: दिया जाएगा, उसके साथ 1 किलोग्राम गाय के लिए और 1.5 किलोग्राम जो है भैंस के लिए,
1: जी
0: क्योंकि भैंस की बॉडी जो है कुछ मतलब भारी होती है, तो इसको प्रत्येक दिन देना है।
1: जी
0: और जब यही पशु दुग्ध उत्पादन कर रहा है या गर्भित होगा तो चारे दाने की मात्रा जो पशु की वृद्धि दुग्ध उत्पादन के लिए निर्वाह आहार के अतिरिक्त दी जाती है, जिसमें दूध देने वाले पशुओं के शरीर के तत्वों खनिज पदार्थों की कमी न होने पाए, उसके लिए भूसा हरा चारा और 1.5 किलो निर्वाह राशन और 1 किलो प्रति 2.5 से 3 लीटर दूध पर राशन देना चाहिए।
1: जी जी
0: हम अन्य पशुओं को भी बता रहे हैं, जैसे बकरी है चराई पर रखी जाती है, लेकिन चरने वाले पशुओं को भी उनके उत्पादन के लिए वृद्धि के लिए प्रजनन के लिए 350 से 400 ग्राम पौष्टिक आहार खनिज पदार्थ देना चाहिए। भेड़ भी चराई पर रखी जाती है फिर भी उसको 250 से 400 ग्राम राशन देना चाहिए।
1: हम कहें कि पशुपालक भैया पशुपालन जौन है अपने रोजी रोटी से जुड़ा बाटे, एकर मुख्य उद्देश्य जौन है पशुन के ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन भी है, ऊन का उत्पादन भी, अंडा उत्पादन, मांस का उत्पादन, ये सब के कैसे बढ़ावा जाए ये पूरी तरह से संतुलित आहार पर ही निर्भर है। डॉक्टर हरिशंकर राय जी आप आयन और हम पशुपालक भाइयन के बहुत बढ़िया जानकारी दिहन, ये सबसे हमारे सभी जरूर फायदा उठावा जाए, जानकारी देवे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर हरिशंकर राय से अरविंद कुमार की बातचीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोतागण सुने कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज सुनवा रहे हैं वैद्य सुभाष तिवारी से वार्ता, बदलते मौसम में कैसा हो आहार विहार।
1: तो यह वर्षा ऋतु और अगस्त का महीना है जो समाप्त होने जा रहा है। सामान्य रूप से हमारे देश में वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह तक होती है, जो ऋतु चक्र के अनियमित होने से कम या ज़्यादा हो सकती है। सितंबर के अंत में तथा अक्टूबर के आरंभ से मौसम में परिवर्तन होता है, वर्षा समाप्त हो रही होती है और शीत ऋतु का आरंभ होने लगता है। इस समय वर्षा के प्रभाव से हमारी पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो चुकी होती है, अतः अल्पः भुङ्क्तेति सजीवति, इस नियम से हमारा आहार हल्का व सुपाच्य होना चाहिए। पौष्टिकता से भरपूर हल्के मसालेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सामान्य रूप से रोटी दाल हरी सब्जियों के साथ साथ दूध सूखे मेवे ऋतु फल का प्रयोग लाभदायक होता है। देर से पचने वाले गरिष्ठ भोजन जैसे चना मटर उर्द जैसी दालों, अधिक घी तेल वसा चिकनाई युक्त भोजन, बासी ठंडे भोजन के प्रयोग से बचना चाहिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दही जैसे कफवर्धक खाद्य पदार्थ, बाजार के फास्ट फूड इत्यादि से दूरी बना लेना चाहिए। भुने हुए मखाने, रामदाना, गेहूं का, जौ का, बाजरे का दलिया बनाकर खाने से शरीर में पौष्टिकता प्राप्त होती है। मूंग की दाल चावल, मसूर की दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर घी डालकर खाने से शरीर बल में वृद्धि होती है और खिचड़ी में जीरा और हींग से तड़का लगाना अवश्य चाहिए। खिचड़ी के साथ पुराना नींबू का अचार बहुत लाभ करता है जो पाचन

0: करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि करता है। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, अजवाइन, धनिया, जीरा, हींग जैसे मसालों से भोजन को संस्कारित करें। इन मसालों के प्रयोग से भोजन में स्वाद और रुचि के साथ साथ भोजन के अच्छे गुणों में अभिवृद्धि होती है। हानिकारक अंश नष्ट होते हैं। ये मसाले संस्कार द्रव्य कहे जाते हैं, जो शरीर में भोजन की ग्राह्यता को भी बढ़ाते हैं। दही का प्रयोग न करें। यदि खाना ही है तो दही में सौंठ, काली मिर्च, पीपल का चूर्ण और सेंधामर्क डालकर खाएं तथा रात्रि में दही न खाएं। कच्चा सलाद, बिना पकी हुई सब्जियां और अनाज, मैदा, चीनी और खट्टी चीज़ों के प्रयोग से बचें, किंतु नींबू और आंवले का प्रयोग किसी भी रूप में करें। नींबू, अदरक, सेंधा नमक मिलाकर भोजन के पहले खाने से भूख बढ़ती है और भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं रहन सहन की। तो ऋतु परिवर्तन के समय बाह्य वातावरण में तापमान बहुत ही असंतुलित होता है, जिसके कारण शरीर को बाहरी तापमान से तालमेल बैठाने में समस्या होती है। अनुकूलन में समय लगता है, जिससे हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर शरीर बल एवं अभ्यास के अनुरूप 10 से 30 मिनट तक व्यायाम करें। व्यायाम के बाद यथासंभव गुनगुने तेल की मालिश करें। यदि पूरे शरीर में नहीं कर सकते तो सिर में, हाथ पैरों में और नाभि में तेल अवश्य लगाएं। तिल का तेल या सरसों का तेल, जो भी उपलब्ध हो जाए वो अच्छा है। व्यायाम करने के बाद स्नान करके पूरे शरीर को ढकने वाले स्वच्छ वस्त्र, सूखे और यथासंभव सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणों का प्रखर ताप त्वचा को बहुत नुकसान करता है। आँखों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से आँखों में गुलाब जल डालना लाभदायक होता है। ऋतु परिवर्तन में होने वाले अनियमित तापमान की वजह से कीट पतंग, मधुमक्खी, मच्छर, जहरीले जीव जंतुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। संक्रामक बीमारियों की बाढ़ सी आ जाती है। इनसे बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें, घर की साफ सफाई रखें, कूड़े का ढेर और जल जमाव न होने दें। समय समय पर चूने तथा अन्य वैकल्पिक साधनों का छिड़काव करें, जिससे मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों के अंडे और लार्वा न पनपने पाएँ। कूलर की और पानी की टंकियों की नियमित रूप से सफाई रखें। शेष जहरीले जीवों के काटने पर तुरंत अस्पताल जाएं। पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए। बार बार हाथों को धोकर स्वच्छ रखें। नाखूनों की सफाई रखें और इन्हें समय समय पर काटते रहें। मौसम बदलने पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी एवं त्वचा के रोगों की प्रचुरता होती है, अतः चिकित्सक के परामर्श से औषधियाँ लें। पर्याप्त मात्रा में नींद, व्यायाम, संतुलित आहार, साफ सफाई के नियमों का पालन करने से, उचित सूखे स्थानों पर रहने से, शरीर ढकने योग्य वस्त्रों को पहनने से, स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन करने से हम बदलते मौसम में अपने को स्वस्थ रखने में सफल हो सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बदलते मौसम में कैसा हो आहार विहार, इस विषय पर वैद्य सुभाष तिवारी की वार्ता। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 2.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण को सुनने का।

रात 10 बजे रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनवाएंगे सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 7:10 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे

ये सुबह 7:30 पर अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन और दोपहर 12:15 पर रोहित मालवीय का तबला वादन। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम रोज की तरह सुबह 8:45 पर होगा। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9:00, 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर, शाम 7:31 पर और रात 8:15 पर। लोक गीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगी आश्रया द्विवेदी, शिवजीत गौतम और साथी। दोपहर 2:30 पर छेदी लाल और साथियों से सुनिएगा लोकगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर नमिता यादव से और शाम 7:45 पर अंकिता चतुर्वेदी से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। बच्चे सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल संग सुबह 11:15 पर। 7:15 अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम सुनेगा हेलो अनुरोध, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, शाम 5 बजे ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, और इसमें सुनवाएंगे स्नेहा लता श्रीवास्तव की बाल कहानी लालच के लड्डू। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जयति सिंह की वार्ता, कृषि के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर, साथ ही छेदीलाल

रात 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। प्रतिभागी होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। आज इतवार है, कार्यक्रम में सुनिएगा नरेश मिश्र की लिखी झलकी मुंशी इतवारी लाल और 9:30 पर फिल्मी गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा कहकशा। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी देर में यानी 6:55 से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्यदिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु द्वादशवर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यञ्च वर्धयन्ति।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः।

ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी। और अब समय हो चला है सुनने का श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न

अभी आपने आनंद लिया अनुराधा पौडवाल के स्वर में श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले आपको सुनवाने हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से मन्ना डे और लता मंगेशकर के स्वरों में भजन। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम, और अभी आपने सुना था सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से भजन। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुबह फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन। लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने और सुधीर फड़के ने संगीत दिया है। लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। और स्टूडियो की घड़ी में अब 7:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। संपूर्ण राष्ट्र में कल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया तिरंगा, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। UPSTF में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक्र। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही छिटपुट वर्षा, उमस से मिली राहत, अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देशभर में कल 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थीं। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है।
2: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम

0: 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर कल देर शाम तक विविध आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। मुख्य समारोह कल सुबह लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, निरक्षरता और असमानता से पूर्ण मुक्ति भी है, जिसके कारण देश लगातार कमजोर हुआ है।
2: आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को यूथ पॉलिसी का तोहफा दिया। उन्होंने यूथ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे भविष्य में युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को मजबूती मिलेगी।
3: ये हमारा संकल्प है, हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
1: मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ अधिकारी सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए किसी एक समूह, जाति, संप्रदाय को ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधान भवन के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को अपने आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों से संवाद भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जन भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। कार्यक्रम में जन भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि अन्य मंत्रियों ने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लिया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक अस्मिता डे को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 75 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वे मेरठ में कुख्यात अनिल दुजाना से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान के खुलने का समय सुबह 10 बजे और बंद होने का

0: समय शाम 6 बजे होगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक दिया जाएगा। रख रखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कल से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र बिना सिला हुआ होगा, रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाली तीज का त्यौहार कल प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अयोध्या में सावन झूला मेला की शुरुआत कल से हो गई है। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। संपूर्ण राष्ट्र में कल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया तिरंगा। कहा, आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपीएसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक्र। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही छिटपुट वर्षा, उमस से मिली राहत। अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन, राग भैरवी में लीजिए सुनिए ठुमरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंकज श्रीवास्तव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन, राग भैरवी में ठुमरी आपने सुनी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंकज कुमार श्रीवास्तव। और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई

0: स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक

0: उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में

0: 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
3: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
5: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अख्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज

0: के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधान

0: cites the Hindu. A Financial Express headline says, India closer to private nuclear power as draft rules issued. Under pressure amid regulatory heat and rising cost, this festive season to be testy for sweets makers is another headline in the Financial Express. A master plan for Delhi 2047 proposes the Havelis of Chandni Chowk to Lutyens Delhi. Heritage buildings could soon get a lease of life by making them hotels and offices, notes the Sunday Express. And finally, the Economic Times carries a story of matchmaking startups using AI to narrow choices by creating user profiles based on dating history and personality, with traditional dating platforms losing steam. Under the headline, AI-led matchmaking apps getting all the investor love. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapat Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले ही इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख्वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई जहानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्यपत तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का एजाज बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने कल अपना 80वां योम आज़ादी मनाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कई अहम ऐलानात किए। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की।
3: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
2: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ऐलान किया कि गरीब और मतवसित तबके के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मुख्तलिफ सरकारी मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई जहानत AI की महारत की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब और मुतवसित तबके के कुनबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्क के नाम अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर बड़े पैमाने पर मालियाती बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मुतवसित तबके के कुनबे को कोचिंग क्लासों में हजारों करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उत्तम टैलेंट है टीचर।

0: जरूरत है उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI से हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से नौजवान आलमी AI शोबे में कायदाना रोल अदा कर सकेंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को 3 चीजों लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: वजीर आजम ने कहा कि आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि साल 2030 में भारत दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो इसे सियासी मसला बनाए बगैर पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करें। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तमाम पार्टियों से कहा कि वो आगे बढ़कर खवातीन का एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की खवातीन को कानून साज असम्बलियों और लोकसभा में जल्द से जल्द 33% नुमाइंदगी हासिल हो। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को भारत की पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाना चाहिए।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: अपनी नौईयत की पहली सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल इख्तिताम पजीर हुई। इस रिले ने मशरक में वाकई मुल्क फिजी से मगरिब में अमेरिका तक का सफर मुकम्मल किया और इस दौरान 54 ममालिक और मुख्तलिफ टाइम जोन्स का अहाता किया। वजारत खारजा ने बताया कि सूर्य पथ तिरंगा मुहिम को हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मनाया गया। फिजी में भारतीय हाई कमीशन ने शुरू होने वाले इस रिले में तिरंगे के जज्बे को एक तुलिया आफ्ताब से दूसरे तुलिया आफ्ताब तक पहुंचाया गया। इसके जरिए दुनिया भर में मौजूद भारतीय बिरादरी और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा गया। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में वाक़ अलवर सारस डेयरी कॉम्प्लेक्स में एक नए डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस मौके पर राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखा जाएगा और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से ज्यादा नई तकरीरी पाने वाले अफराद को तकरीरनामे भी सौंपे जाएंगे। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इनकशाफ से मुतालिक स्कीम के जवाबी 2026 को नोटिफाई किया है। ये स्कीम आज से नाफिजुल अमल होगी। इस स्कीम के तहत ऐलान नामा जमा कराने की आखिरी तारीख इस साल 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद कोई भी ऐलान नामा दाखिल नहीं किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: छोटे टैक्स दहिंदगान के गैर मुल्की असासों के इनकशाफ से मुतालिक स्कीम 2026 के मालियाती एक्ट के चौथे बाब में शामिल एक बार रजाकाराना इनकशाफ की स्कीम के तहत टैक्स दहिंदगान मखसूस टैक्स या फीस अदा करके ऐसे असासों, गैर मुल्की आमदनी या गैर मुल्की असासों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मालूमात का पहले इनकशाफ नहीं किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने टैक्स दहिंदगान की बेदारी में इजाफा करने और इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने में आसानी पैदा करने के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों के हिस्से के तौर पर एक जामे FAQ दस्तावेज जारी की है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: मुल्क आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। BJP के सीनियर रहनुमा वाजपेयी ने 2018 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी 3 मरतबा भारत के वजीर आजम रहे। उनकी पहली मुद्दत कार 1996 में सिर्फ 13 दिन की थी। दूसरी मरतबा उन्होंने 1998 से 1999 तक 11 माह के लिए वजीर आजम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जबकि 1999 से सन 2004 तक उन्होंने मुकम्मल मुद्दत कार पूरी की। उन्हें 2015 में भारत के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार सदैव अटल पर अहम शख्सियात साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गुलहाए अकीदत नजर करके खराज अकीदत पेश करेंगी। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی کو قومی راجدھانی میں واقع ان کے میموریل سدیو اٹل پر

0: जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राजधानी दिल्ली में तारीखी लाल किले की फसील से वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आजादी के मौके पर तिरंगा फहराया और कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज भारत जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति और नई टेक्नोलॉजी की मदद से 2047 तक विकसित भारत बनाने के हदफ पर जोर दिया। आलमी रहनुमाओं ने भारत की यौम आजादी पर मुबारकबाद दी और जमहूरी सफर में भारत के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इस खबर को आज के सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने की खबर को भी अखबारात ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में खवातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पर तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और बस थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आज हम बात करेंगे इतिहास, साहित्य और राष्ट्र चेतना की।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? शुभम मंगलम। प्रस्तुत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और मैं हूं आपकी आज की कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे।

श्रोताओं, कैलेंडर की तारीखें केवल तारीखें नहीं होती, कुछ तारीखें अपने भीतर इतिहास की करवटें, साहित्य की सुगंध और राष्ट्र की स्मृतियां समेटे होती हैं। सोलह अगस्त भी ऐसी ही एक तारीख है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चलेंगे इतिहास की गलियों से साहित्य के आंगन तक, मिलेंगे एक ऐसे कवि हृदय राजनेता की स्मृतियों से जिनकी

राजनीति के साथ कविता भी बहती थी। याद करेंगे एक ऐसी वीरांगना कवित्री को जिनकी लेखनी ने झांसी की रानी को अमर स्वर दिया, और फिर लौटेंगे अपने प्रयागराज जहां 16 अगस्त 1765 को हुई एक ऐतिहासिक संधि ने भारतीय इतिहास की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला।

बात करेंगे अटल जी की राजनीति में कविता की धड़कन कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। 16 अगस्त आते ही सबसे पहले स्मरण होता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था।

अटल जी भारतीय राजनीति में अपने ओजस्वी वक्तृत्व के लिए प्रसिद्ध तो थे ही, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक अत्यंत संवेदनशील पक्ष था उनका कवि हृदय। उनकी राजनीति में संवाद था, मतभेद थे, लेकिन कटुता को स्थायी स्थान नहीं मिलता था। उनका व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में दृढ़ता और संवेदनशीलता साथ साथ चल सकती हैं।

अटल जी की कविताओं में आशा, संघर्ष और आत्मविश्वास बार बार दिखाई देता है। उनका जीवन मानो इसी भावना का उदाहरण था। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, मनुष्य को आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इसीलिए अटल जी को याद करना केवल एक राजनेता को याद करना नहीं है, ये उस भारतीय परंपरा को याद करना है श्रोताओं, जिसमें विचार और संवेदना दोनों का सम्मान है।

और आइए अब बात करते हैं साहित्य की उस आवाज़ के बारे में जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को चरितार्थ किया। अब इतिहास की एक और स्मृति की ओर बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था महान कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का। उनकी कविता ने भारतीय जनमानस में वीरता और राष्ट्रप्रेम की ऐसी लौ जलाई जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जन जन की स्मृति में अमर कर दिया था। सुभद्रा जी स्वयं भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी, यानी उनकी कविता केवल कल्पना नहीं थी, उनमें उनके अपने संघर्ष और समय की धड़कन भी थी। एक तरफ कलम थी और दूसरी ओर स्वतंत्रता का आंदोलन। यही तो साहित्य की शक्ति है, वो इतिहास को केवल बताता नहीं उसे महसूस भी कराता है। सुभद्रा जी की रचनाएं आज भी विद्यार्थियों को साहस, देश प्रेम और आत्मविश्वास का संदेश देती हैं।

0: और श्रोताओं, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। अभी कल ही हमने स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा देशभक्ति गीत भी, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की ये परंपरा है कि हम करते हैं कुछ बातें, कुछ चर्चाएं, और उसके बाद आपको गीत संगीत से भी रूबरू कराते रहते हैं। तो सुनते हैं ये गीत।
1: चले हम फिदा जान तन

और अब अपने प्रयागराज की ओर बढ़ते हैं और उस घटना की ओर चलते हैं जिसका संबंध सीधे हमारे अपने प्रयागराज से है। आज से 261 वर्ष पहले यानी 16 अगस्त 1765 को हमारे शहर ने भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को देखा था, इलाहाबाद की संधि, जिसे इतिहास में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। श्रोताओं, इस संधि को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ रही थी और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल रही थी। फिर आया 1764 का बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने तीन महत्वपूर्ण शक्तियों के संयुक्त मोर्चे को पराजित किया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, बक्सर की विजय ने कंपनी की स्थिति को अत्यंत मजबूत कर दिया। अब कंपनी केवल व्यापार करने वाली संस्था नहीं रह गई, उसके हाथ में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की शक्ति आ चुकी थी। और इसी बदलते राजनीतिक परिदृश्य में आता है प्रयागराज। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि हुई। इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण बात थी दीवानी अधिकार। दीवानी का अर्थ किसी क्षेत्र में राजस्व वसूलने और उससे संबंधित प्रशासनिक अधिकार से है। संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। और अब जरा इस परिवर्तन की गंभीरता को समझिए। जिस कंपनी ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से प्रवेश किया था, वो अब भारत के एक बड़े और समृद्ध क्षेत्र से राजस्व प्राप्त करने की स्थिति में आ गई थी। यानी व्यापार से सत्ता की ओर कंपनी के बढ़ते कदमों में इलाहाबाद की संधि एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। संधि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था अवध। शुजाउद्दौला को अवध वापस मिला, लेकिन उसे कंपनी को बड़ी धनराशि का भुगतान करना पड़ा। दूसरी ओर शाह आलम द्वितीय को कंपनी से पेंशन प्राप्त होने की व्यवस्था हुई और उन्हें कुछ क्षेत्र भी दिए गए। इस प्रकार इस संधि ने तीनों प्रमुख शक्तियों, मुगल सम्राट, अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों को एक नए रूप में निर्धारित किया। और यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात बताएं आपको श्रोताओं, जिस स्थान को आज हम संगम की पावन धरती यानी साहित्य की नगरी और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जानते हैं, वही प्रयागराज 1765 में भारतीय उपमहाद्वीप की बदलती सत्ता व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ था।

श्रोताओं, इतिहास की घटनाएं केवल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं होते, बल्कि वो हमें समझने का अवसर देते हैं कि किसी देश का वर्तमान किन परिस्थितियों से होकर बना है। 1765 के इलाहाबाद संधि हमें सत्ता और आर्थिक अधिकारों के संबंध को समझने में मदद करती है।

तो श्रोताओं, आइए 16 अगस्त को केवल कैलेंडर की एक तारीख बनाकर न छोड़ें, अटल जी से सीखें विचारों में दृढ़ता और व्यवहार में संवेदनशीलता लाना। सुभद्रा कुमारी चौहान से हम सीख सकते हैं शब्दों में साहस और कर्म में देशभक्ति ले आना। और प्रयागराज के इतिहास से सीखें इतिहास को जानना और अपने वर्तमान को समझने की पहली सीढ़ी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तारीखें बीत जाती हैं लेकिन उनसे जुड़ी सीखें पीढ़ियों तक साथ चलती हैं। और इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज से मुझे यानी अपने आज के कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे को दीजिए इजाज़त। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। फिर मिलेंगे किसी नई तारीख, किसी नई कहानी और किसी नई स्मृति के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास हमारी पहचान है, साहित्य हमारी संवेदना है और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत।

0: 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
6: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
5: UP 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
6: शहर या देहात, दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ।
5: UP 112 नंबर 1 सेवाएं अनेक।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

श्रोताओं, आपका इंतजार खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, फिल्म आप तो ऐसे न थे। फिल्म का गाना आपको सुना रहे हैं हेमलता के स्वर में।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।

0: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, सावन में प्रदेश के प्रमुख शिव धामों में बने धार्मिक आध्यात्मिक माहौल और कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए खास इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
1: पवित्र श्रावण मास भगवान शिव की आराधना, आस्था, तप, सेवा और सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। सावन में बड़ी संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु गंगा, यमुना और दूसरी पवित्र नदियों से जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। उत्तर प्रदेश में सावन में आस्था का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां एक ओर मंदिरों में हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष गूंज रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शासन पूरी व्यवस्था कर रहा है।
2: उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
1: सावन में शिव भक्ति के रंग में पूरा प्रदेश रमा नजर आ रहा है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी इस समय अलौकिकता और आध्यात्मिकता के नए आयाम रचती नजर आती है। वाराणसी में सावन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत उत्सव है। सावन में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुँचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं, जिसे देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।
3: सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर आए, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी पुलिस कर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं, उनकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनको अपना मेहमान समझा जाए।
1: काशी विश्वनाथ धाम के अलावा सावन में यहाँ के महामृत्युंजय महादेव, तिलभांडेश्वर, मार्कंडेय महादेव, काल भैरव, केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी के सैकड़ों प्राचीन शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सावन के दौरान धार्मिक पर्यटन भी अपने चरम पर होता है, जिससे स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प, होटल और परिवहन व्यवसाय को भी नई गति मिलती है। यहाँ व्यापार मंडल के सुरेश तुलसियान ने बताया कि प्रशासन ने सावन में हर सुविधा का ख्याल रखा है।
4: तो सरकार के द्वारा भरपूर हो रहा है, पूरी आपका जो शिविर भी लग रहा है, हर जगह पुलिस की व्यवस्था है, कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना हो जाए। कांवरिया आराम से जाकर के बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें, यही जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है।
1: वाराणसी में देवों के देव महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कांवड़ यात्रियों की भक्ति, आस्था और समर्पण का साक्षी बन रहा है। यहाँ के कई जिलों का धार्मिक महत्व तो है ही, बड़ी संख्या में कांवड़ियों के इन जिलों से निकलने के कारण यहाँ माहौल भक्तिमय।

0: दिख रहा है। सबसे पहले बात हापुड़ की करें तो हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रिजघाट सहित जिले के प्रमुख मार्गों पर बोलबम के जयकारे गुंजायमान हैं। हरिद्वार के साथ साथ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी से श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिवालयों में भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करते हैं। यहां कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुगम और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराने के लिए जनपद को 3 सुपर जोन, 5 जोन और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। ब्रिजघाट, सबली मंदिर, हापुड़ और शिव मंदिर छपकौली में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। नगर पालिका परिषद हापुड़ के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि साफ सफाई के प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पिंक बूथ स्थापित कराए गए हैं, जिससे महिला कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
1: लोगों ने अपने क्षेत्र को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त कर, हम लोगों ने खंभों के माध्यम से टेम्पररी रूप से पूरी तरह से लाइटिंग की व्यवस्था बुलंदशहर रोड पे आगे तक कराया है, बाईपास तक, ताकि कावड़ियों को सुगमता के साथ आने जाने में कोई बाधा अड़चन न पड़े। दूसरी चीज ये है, 2 चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए, ताकि उनको कपड़े में नहाने में कहीं कोई दिक्कत न आवे, कोई बाधा। के साथ साथ हमारी डीएम मैम का निर्देश था कि हम लोगों के द्वारा एक आदर्श कांवड़ शिविर की स्थापना किया जाए, तो हम लोगों ने, पालिका ने कृष्णा पार्क में, वहां पे हम लोगों ने एक बेहतर व्यवस्था किया है।
0: मेरठ में सावन का महीना और कांवड़ यात्रा का बहुत ऐतिहासिक और गहरा महत्व है। मेरठ न केवल कांवड़ियों के प्रमुख मार्गों का केंद्र है, बल्कि यहां स्थित ऐतिहासिक औघरनाथ मंदिर में सावन के दौरान लाखों शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। SSP अविनाश पांडे ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर डॉग स्क्वाड के माध्यम से सुरक्षा जांच की जा रही है। वहीं मेरठ पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है।
2: यहां पर कई सारे बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यहाँ से जो भी फीड देखा जा रहा है, जितने भी भारी वाहन किसी भी कांवड़ मार्ग पर आ रहे हैं या कहीं पर भी कोई अन्य बात सामने आ रही है, उसके बारे में हम लोग लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और चाहे सड़क पर आवारा पशुओं का मामला हो, कहीं पर कूड़े का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसमें तत्काल जो ICCC में हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनको अवगत कराया जाता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 मिनट से कम के रिस्पॉन्स टाइम में इन सभी चीजों को रिजॉल्व किया गया।
0: हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले लाखों शिव भक्तों का मुख्य मार्ग मेरठ से होकर गुजरता है। गंगा जल लेकर यहाँ आने वाले कांवड़िए व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
3: पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाई है और कांवड़ियों को हर चीज की सुविधा दी है। कहीं पे ट्रैफिक कोई जाम हो रहा है तो उनको निकलने के लिए पूरे पुलिस वाले अपने साथ छोड़ के आना, लेके आना, और हर चीज की गाड़ी, एम्बुलेंस और खाने पीने की, और कहीं रुके तो लाइट की व्यवस्था, और कहीं कांवड़िए बैठे होते कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा उनका वो रहा सफर।
0: मेरठ में महादेव की आस्था का भाव परवान पर है, तो गाजियाबाद का भी यात्रा में अत्यधिक महत्व है। मुरादनगर को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, जहां से बड़ी संख्या में कांवड़िए जल भरते हैं। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद गाजियाबाद को सेक्टर और जोन में बांटकर सुरक्षा सुविधा के जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
4: सारी तैयारी हमारी पूरी है। हम लोगों ने व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पूरे हमारे क्षेत्र को 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 108 सब सेक्टर लगाए थे। 11 पूरे जोन बनाए गए हैं। सभी जगह हमारे ऑफिसर्स की और जूनियर स्टाफ की तैनाती की गई है। 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुलिस के माध्यम से CCTV कैमरा, वॉच टावर आदि के द्वारा भी निगरानी की जा रही है, तो सारी तैयारियां हैं।
0: वहीं गाजियाबाद में प्रसिद्ध दूधेश्वरनाथ मंदिर में भी भक्त बहुत उत्साहित दिखाई दिए। दूधेश्वरनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में सावन मास के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। यहां दर्शन करने आए सौरभ सिंगल ने सावन में शिव भक्ति को अद्वितीय बताया।
5: दर्शन अपना जल लेकर आए थे और फूल लेकर आए थे, फूलमाला, चंदन वंदन, चावल, मिष्ठान, ये सब चीज चढ़ाने के लिए कराए थे। और काफी प्राचीन मंदिर है और काफी नामी मंदिर है, पूरा गाजियाबाद काफी अच्छा मंदिर है।
0: गाजियाबाद के बाद बागपत की, यहाँ स्थित पूरा महादेव मंदिर कांवड़ यात्रा का मुख्य केंद्र है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान परशुराम ने यहाँ गंगा जल से जलाभिषेक किया था। यहाँ लाखों श्रद्धालु हरिद्वार और गौमुख से कांवड़ लाकर जलाभिषेक करते हैं। सावन में यहाँ आयोजित होने वाले श्रावणी मेले में आस्था के विलक्षण भाव देखने को मिलते हैं। 3 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मेला परिसर और प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि प्रशासन इस बार मेले को जीरो वेस्ट थीम पर आयोजित कर रहा है, ताकि श्रद्धालु स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल मेले में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।
6: जो हमारी प्रमुख पहल है वो है जीरो वेस्ट और उसका मैनेजमेंट, और जो एक यूज के प्लास्टिक होते हैं उसका भी एक सर्कुलर रूप से उसको हम लोग फाइबर में क्रिएट करके उसमें डॉल्स बनाई जा रही हैं। इसके अलावा कलावा की राखियां भी और बहुत सारी इसी तरह से चीज़ें हम लोग बना

0: रहे हैं ताकि एक सुदृढ़ एक अर्थव्यवस्था हम क्रिएट कर पाए।
1: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर प्रदेश के प्रमुख पड़ावों में से एक है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जाने वाले शिव भक्त मुजफ्फरनगर के मुख्य शिव चौक से गुजरते हैं। इस बार भी शिव चौक शिव भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में शिव भक्त और कांवड़िए यहाँ बाबा भोलेनाथ के समक्ष माथा टेक कर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शहर में जगह जगह शिव भक्तों के लिए शिविर लगाए गए हैं, जहाँ भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। यहाँ कांवड़ यात्रा पर आई महिला कांवड़िया मनीषा ने व्यवस्थाओं पर खुशी जताई।
2: हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं। मैंने लड़के की नौकरी की मनोकामना की थी, जो भगवान ने पूरी कर दी है। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था प्रशंसनीय है।
1: काशी की दिव्यता से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों तक हर जगह शिव भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवा भावना और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था इस यात्रा को और भी भव्य बना रही है, क्योंकि सावन का पावन महीना केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि सेवा, सामाजिक समरसता और अनुशासन का भी प्रतीक है।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे सावन में प्रदेश के प्रमुख शिव धामों में बने धार्मिक, आध्यात्मिक माहौल और कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए खास इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र मीडियम वेव 290.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। और लीजिए अब सुनिए देश गान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में यानी 9:30 से आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वतन की आजादी के लिए दीवाना था और बहुत जल्द आजादी का मुतमन्नी था। एक ऐसा इश्तराकी जिसने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज तो बड़े ही तुमतराक से कांग्रेस से किया और खात्मा बिलखैर मुस्लिम लीग के साथ हुआ। हसरत मोहानी हिंदुस्तान के अलावा बैन अलाक्वामी सियासत और खुसूसन मुस्लिम मालिक की सियासत से भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। इस सिलसिले में उर्दू मुअल्ला का मुस्तफ़ा कमाल नंबर और त्राबलुस, मिस्र, लबनान और हिजाज के सियासी मसाइल पर खुसूसियत के साथ उर्दू मुअल्ला में मजामीन के इशात इस बात का सबूत हैं। हसरत ने 1914 में तज़किरतुश्शोरा सहमाही रिसाले का इजरा कानपुर से किया, जो हसरत की नजरबंदी के सबब 1914 में बंद हो गया। रिहाई के बाद दोबारा 1919 में जारी किया, फिर 1928 में रोजनामा मुस्तकिल जारी किया। मजमूई लिहाज से ये जरायदो अखबारात सियासी, अदबी और कुर्बानी वतन के लिए हमेशा हमा वक्त पेश पेश रहे। इन सारी तफसीलात के बाद हम जिस खास नतीजे पर पहुँचते हैं वो ये कि उर्दू मुअल्ला के अशआर से कबल उर्दू सहाफत का मियार सियासी, इल्मी व अदबी लिहाज से भी कुछ कम ना था, बल्कि अल हिलाल, अल बलाग, हमदर्द, ज़मींदार, मखज़न, दिलगुदाज, ज़माना और मारिफ वगैरह ने भी तहरीक आज़ादी और उर्दू सहाफत के मियार को हर सतह पर काफ़ी बुलंद कर रखा था। लेकिन उन सब के बावजूद हसरत ने तहरीक आज़ादी में जो नई रूह फूंकी वो ये कि इन्होंने उर्दू मुअल्ला को एक खालिस तहरीकी शक्ल दे दी, जिसने मुसलमानों में तुगयानी, बगावती, सियासी और अदबी शहूर पैदा किया। सहाफत हो या सियासत, हसरत ने पूरी जिंदगी में कोई भी काम अपने जमीर की आवाज के खिलाफ कभी नहीं किया। उर्दू सहाफत और वतन की कुर्बानी में हसरत की इनफरादियत उनके इखलास फिक्र अमल व बेरिया, मसलहत अंदेशी से गुरेज और जुरात हक गोई व बेबाकी जैसे औसाफ हमीदा व जमीला के सबब है। निजात उनके दिल की आरजू थी। उनकी पूरी सहाफती जिंदगी इसी नजरिए और मकसद के गिर्द घूमती रही। इनका मसलक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत था। जंग आज़ादी में शमशीर बरहना से अंग्रेज हुक्मरानों और उनके हलीफों के दांत खट्टे करते रहे। इसी पादाश में 3 बार कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन उनके अज़्म और हौसले में कोई फर्क नहीं आया। वह आज़ादी वतन के लिए हर किस्म की मुफाहमत या नरम रवैये के कभी कायल नहीं थे। कहते हैं, जान को महवे गम बना, दिल को वफा निहाद कर, बंदे इश्क है तू यूं कतरे रहे मुराद कर, हक से ये उजरे मसलहत वक्त पे जो करे गुरेज, उसको न पेशवा समझ उस पर न एतमाद कर।
1: अजीब मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी सामई नबिया डॉक्टर शरफुद्दीन से उनका यह मकाला समात फरमा रहे थे। और आइए रुख करते हैं कलाम शायर की जानिब। समात फरमाइए जनाब शादाब आज़मी से उनका कलाम।
2: मतलब बतौर खास हाजिर करता हूँ। रंजो आलम की हालत नहीं देखी जाती,

अति। और बतौर खास शेर समात करें नदीम साहब कि अय खुदा तुझसे दुआ है कि करम कर उस पर। अय

0: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं नमिता यादव। आप सुनेंगे इनके स्वर में गीत और भजन, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आपने सुना सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार थी नमिता यादव। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि AI के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्य पर तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन

और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण, दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से हराया। वहीं अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारो नाकामुरा ने अलीरेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 200

0: लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से हराया। वहीं अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारो नाकामुरा ने अलीरेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। दूसरे दिन भी खेल बारिश की वजह से देरी से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमाथरी। कलाकार हैं आश्रया द्विवेदी, शिवदीत गौतम और साथी। पहले सुनते हैं आश्रया द्विवेदी के स्वर में ये दादरा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आश्रया द्विवेदी के स्वर में लचारी, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में कजरी।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में अभी आप सुन रहे थे आश्रया द्विवेदी के स्वर में लोकगीत, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शिवजीत गौतम और साथियों के स्वर में लोकगीत। तो सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये झूमर।

0: हारे हारे बांसावा की डोलिया बनाई।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये निर्गुण स्वर हैं शिवजीत गौतम और साथियों के।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार थे आश्रय द्विवेदी और शिवजीत गौतम और साथी। आपने सुने इनके स्वर में लोक गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

और लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल को मेजर साहब फिल्म में, साथ ही उदित नारायण ने भी अपनी आवाज इस गाने को दी है।

0: नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो।
1: अब हम आपको सुनवा रहे हैं मन फिल्म का गाना, सुनिए उदित नारायण को। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन तैयार की है संजीव दर्शन ने।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तेरे साथ से हर सफर सुहाना लगता है, तेरी हर बात में कोई अफसाना सा लगता है। तू पास हो तो दुनिया भी अपनी सी लगती है, तेरे बिना ये दिल कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। कुछ इसी एहसास के साथ आपने सुना था ये गाना, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा फिल्म दीवाना से।

जी हाँ श्रोताओं, कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास कभी आवाज़ नहीं होते। बस एक हम सफ़र का साथ मिल जाए अगर, तो ज़िंदगी के सफ़र में कोई गम नहीं होते। और जब मोहब्बत दिल की गहराइयों तक उतर जाए तो हर धड़कन बस एक ही नाम गुनगुनाती है। यही तो है वो एहसास जिसे कहते हैं इस कदर प्यार है तुमसे ऐ

दीवाना फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन तैयार की थी शंकर एहसान लॉय ने, और दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अगली उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: बच्चों, गुरु की बातें ध्यान से सुनना, सच के पथ पर आगे बढ़ना, ज्ञान का दीप सदा जलाना, अच्छे कर्मों से जग महकाना।
2: मिलजुल कर सब साथ रहेंगे, प्रेम के फूल सदा खिलेंगे, देश का नाम ऊंचा करना, हर दिन कुछ नया ही सीखना।
1: आओ मिलकर ये ठाने हम, सीखेंगे हर पल हर दम, ज्ञान संस्कार और मुस्कान, यही है बच्चों की पहचान। तो बच्चों, आज बाल संग कार्यक्रम में हम बहुत सी रोचक जानकारी भी लेकर आए हैं और रोचक विषय पर बात करेंगे। मैं रितंद्रा दीदी
2: और मैं मंदाकिनी दीदी।
1: तो मंदाकिनी दीदी, आज का जो विषय है हमारा वो है मस्तिष्क कैसे सीखता है।
2: बिल्कुल बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है हमारे शरीर का अद्भुत हिस्सा है। हम नई बातें कैसे याद रखते हैं, पढ़ाई को कैसे समझते हैं और अपने अनुभवों से कैसे सीखते हैं, इन सभी के पीछे हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है।
1: बिल्कुल। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क सीखता कैसे है। भाई देखो बच्चों, जब हम कोई नई बात सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो मस्तिष्क उस जानकारी को ग्रहण करता है और उससे पहले से मौजूद, यानी कि पहले से जो हम सोचे रहते हैं वो भी जानकारी को उससे जोड़ने की कोशिश करता है।
2: यानी बच्चों, जितना हम किसी बात को समझकर दोहराते हैं उतना ही वो हमारे लिए आसान हो जाती है। इसलिए पढ़ाई में केवल रटने के बजाय विषय को समझना और उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
1: और मंदाकिनी दीदी, एक सवाल बच्चों से, क्या आपको पता है कि खेलते हुए भी हमारा मस्तिष्क सीखता रहता है? और बच्चों, खेल, चित्र, कहानी, संगीत और प्रयोग जैसी गतिविधियां बच्चों मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है। जब किसी काम में रुचि लेते हैं तो उसे सीखना और याद रखना भी आसान हो जाता है।
2: बिल्कुल। और इसके साथ ही बच्चों, नींद भी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। अब सोचिए रितंद्रा दी, बच्चे सोचेंगे नींद में कैसे हम सीख सकते हैं। बिल्कुल, दिन भर जो आप सीखी बातें होती हैं, जो व्यवस्थित करने में हमारा मस्तिष्क बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाता है, अब वो तभी होती है जब हम आराम की मुद्रा में होते हैं।
1: बिल्कुल। और इसीलिए बच्चों, देर रात तक जगाने के या जगने के बजाय पर्याप्त नींद लेना चाहिए। हम लोग कहते भी अक्सर, ये भी कहते हैं कि पौष्टिक भोजन करना चाहिए और हर रोज कुछ समय खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना है ना?
2: जैसा सुना है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हैप्पी हेल्दी एंड वाइज।
1: बिल्कुल। तो भाई, और बच्चे इस बात का अनुसरण भी करते हैं जो लोग हम लोग बताते हैं ना कि पौष्टिक भोजन करें, तो कुछ बच्चे उसका अनुसरण भी करते हैं और खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं मन लगा के, है ना?
2: बिल्कुल। तो बच्चों, इस तरह हमारा मस्तिष्क जिज्ञासा, अनुभव, अभ्यास और विश्राम के माध्यम से लगातार सीखता रहता है।
1: और बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी देखिए मंदाकिनी दी, कभी गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, तो उससे भी हमको सीख मिलता है ना, वो भी सीखने का एक हिस्सा है। भाई, गलती से हमें पता चलता है कि अगली बार और कितना हम बेहतर कर सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बिनय श्रीवास्तव भैया और रोशनी बंसल दीदी से रोचक जानकारियां।
2: तो चलिए बच्चों, अब हम सुनते हैं रोचक जानकारियां।
3: न कोई जादुई छड़ी, न कोई उड़ने वाली कार, फिर भी सात समंदर पार से खींचा चला आया संसार।
4: दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन इस प्यारी सी ट्यून को सुनते ही खींचे चले आए हमारे बच्चे अपने फेवरेट कार्यक्रम रोचक जानकारी में। स्वागत है बच्चों आपका।
3: हमारे सभी नन्हे श्रोता दोस्तों को विनय भैया
4: और रोशनी दीदी का
3: ढेर सारा

0: Yeah. दोस्तों आ गया है अगस्त का महीना जिसमें रिमझिम बारिश है, आजादी का जश्न है और आसमान में तारों की बारात भी है।
1: अगस्त का महीना तो वैसे ही बहुत खास होता है। वैसे विनय भैया, शुरुआत की वो लाइनें बड़ी ड्रामेटिक थी। सात समंदर पार से कौन खिंचा चला आया था और उसे किसने बुलाया था?
0: बुलाया किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि हमारी रसोई में छिपे छोटे से जादुई दाने ने, जिसके पीछे पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजा, पुर्तगाली समुद्री यात्री और अंग्रेज दीवाने होकर भारत की तरफ दौड़े चले आए थे। वो और कुछ नहीं बल्कि आपके खाने का स्वाद बढ़ाने वाले भारत के मसाले हैं। तो बच्चों, आज से करीब 400 साल पहले इंग्लैंड और यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। वहाँ के लोग मीट को खराब होने से बचाने के लिए हमारी काली मिर्च यानी कि जो ब्लैक पेपर है, इसके दीवाने थे, जिसे वो काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहते थे। इसी को खरीदने के लिए सन 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। जब वो यहाँ आए तो मसालों के साथ साथ यहाँ के मुलायम सूती कपड़े और चमकीले नील यानी कि इंडिगो को देखकर उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने हमारे राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाया और व्यापार करने आई एक कंपनी पूरे भारत पर कब्जा कर बैठी।
1: और इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारा देश आजाद हुआ, जिसका जश्न हम इसी महीने यानी 15 अगस्त को मनाते हैं। पर विनय भैया, क्या बच्चों को पता है कि आजादी के लिए 15 अगस्त की ही तारीख क्यों चुनी गई थी?
0: दरअसल उस समय

0: अगस्त के महीने का आसमान बहुत ही अद्भुत होता है। भले ही मानसून के बादल हों, लेकिन जब भी आसमान साफ होता है तब अंतरिक्ष में एक अनोखा नजारा दिखता है। नासा के अनुसार इस अगस्त 2026 के महीने में परसीड्स मीटियोर शावर यानी कि टूटते तारों का सबसे सुंदर मेला आसमान में दिखाई देगा। इस महीने परसीड उल्का वर्षा के साथ 6 ग्रहों की परेड भी होगी। बृहस्पति, बुध, मंगल, यूरेनस, शनि और नेपच्यून एक साथ सीधी रेखा में दिखाई देंगे। ये ग्रह पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर नजर आएंगे। ग्रहों की परेड देखने का सबसे अच्छा समय रात 2 बजे के बाद है। सभी ग्रह खुली आंखों से दिखाई देंगे, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून दूर के ग्रह हैं, जिन्हें देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होगी। ये खगोलीय संरेखण तब बनता है जब ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और पृथ्वी से देखने पर एक ही सीध में प्रतीत होते हैं। इससे पहले बच्चों 17 जून 2026 को कुछ ग्रहों की परेड हुई थी और 14 नवंबर 2026 को बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति एक सीध में दिखाई देंगे। जानते हो बच्चों, प्रति घंटे 50 से 100 उल्का पिंड इस दौरान नजर आएंगे।
1: और सुने बच्चों, बारिश का ये मस्ती भरा मौसम, लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि बारिश की ये आवाज हमारे ब्रेन यानी दिमाग के लिए एक जादुई टॉनिक की तरह काम करती है।
0: वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम बारिश की टिप टिप टिप की लगातार होने वाली आवाज को सुनते हैं तो हमारा दिमाग बेहद शांत हो जाता है। इस आवाज को पिंक नॉइज कहते हैं। ये आवाज हमारे दिमाग की थकावट को दूर करती है, तनाव को मिटाती है और हमें बहुत गहरी और मीठी नींद सुलाने में मदद करती है।
1: ओहो, यानी जब बारिश होती है और हमें बहुत अच्छी नींद आती है तो वो आलस नहीं बल्कि हमारा ब्रेन रिलैक्स हो रहा होता है। यहाँ तक कि पढ़ाई करते समय भी अगर हम शांत होकर बारिश की आवाज सुने तो हमारा फोकस और याद रखने की ताकत भी बढ़ती है।
0: तो बच्चों, अगली बार जब बाहर बारिश हो तो कान में ईयरफोन लगाने के बजाय थोड़ी देर शांति से बैठना और खिड़की के पास जाकर असली बारिश के संगीत को महसूस करना। देखना, आपका दिमाग एकदम तरोताजा और सुपर हैप्पी हो जाएगा। दिमाग में हर समय कई तरह के विचार और तरंगे चलती रहती हैं। बारिश की एक समान और धीमी आवाज दिमाग की इन तरंगों को धीमा कर देती हैं, जिससे अल्फा तरंगे बढ़ती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग को कोई रिलैक्स करने वाला संदेश मिल रहा हो।
1: भैया, अल्फा तरंगों से मुझे याद आया कि मैंने कुछ नए जनरेशन के नाम भी अल्फा सुने हैं। हम जिन बच्चों से बात कर रहे हैं वो भी अल्फा जनरेशन है। ये जनरेशन का नाम कैसे शुरू हुआ और इनमें क्या खास बातें हैं?
0: बच्चों, समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं। जो बच्चे सन 1997 से सन 2012 के बीच पैदा हुए वो जेन जी हैं। और आप जो रेडियो पर अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं यानी कि जिनका जन्म सन 2013 के बाद हुआ है, आप सभी जेन अल्फा हो। आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन इस डिजिटल और बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर 3 जादुई खूबियां जरूर विकसित करनी होंगी।
1: फोकस और सब्र, यानी मोबाइल की स्क्रीन से ध्यान हटाकर किताबें पढ़ने की आदत डालनी होगी। डिजिटल डिटॉक्स, फोन से दूर हटकर पेड़ पौधों के बीच वक्त बिताना होगा, जैसे हमारे फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग ने बिताया था और अपने दम पर पूरा जंगल बना दिया था।
0: सही और गलत की पहचान, इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती, इसलिए बड़ों से सीखना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है आपकी जनरेशन के बच्चों के लिए।
1: बच्चों, हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन कुछ बातें हमें एक सा बनाती हैं। अब लिखने या काम करने के लिए तो आप में से कई लोग दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करते होंगे। दुनिया की 90% आबादी दाहिने हाथ से ही मेनली काम करती है, मगर बचे 10% लोग एक ऐसा विशिष्ट समूह है जो इस दुनिया को अलग तरीके से अनुभव करते हैं।
0: इन्हीं के लिए 13 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, जो कि अभी पिछले दिनों ही बीता है। इस दिन की शुरुआत सन 1976 में डीन आर कैंपबेल ने की थी, जो लेफ्ट हैंडर्स क्लब के संस्थापक थे। सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, अमिताभ बच्चन और बराक ओबामा, ये सभी लेफ्टी ही हैं। क्रिकेट, टेनिस और टेबल टेनिस जैसे खेलों में लेफ्टीज को हमेशा सरप्राइज एलिमेंट का लाभ मिलता है। जानते हो बच्चों कैसे? क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी को इनकी सर्विस या बॉल की ग्रिप समझने में टाइम लगता है। जब तक राइट हैंडेड खिलाड़ी लेफ्टीज का एंगल समझते हैं, तब तक गेम खत्म।
1: बच्चों, राइट हैंडेड लोगों के दिमाग का बायां हिस्सा हावी रहता है, लेकिन लेफ्टीज में दोनों हिस्से एक साथ बहुत तेजी से कम्युनिकेट करते हैं, यानी क्विक थिंकिंग। लेफ्टीज में आर्ट, म्यूजिक और डिजाइनिंग को लेकर अलग ही क्रिएटिव सेंस होता है।
0: बच्चों जानते हो, कैंची, गिटार, कैन ओपनर से लेकर माउस, नोटबुक की स्पाइरल बाइंडिंग तक दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। इसलिए लेफ्टीज बचपन से ही ज्यादा सामंजस्य बिठाने वाले और इनोवेटिव बन जाते हैं।
1: चाहे जेनरेशन कोई भी हो, दिल और संस्कार हमेशा सच्चे होने चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए करें, न कि समय बर्बाद करने के लिए।
0: तो प्यारे बच्चों, इस अगस्त के महीने में अपनी आजादी का जश्न मनाइए, बरसात का आनंद लीजिए, सुरक्षित रहिए और देश को आगे ले जाइए। साथ ही डिजिटल दुनिया के सुपर हीरो भी बनिए।
1: तो फिर मिलेंगे रोचक जानकारी के एक और मजेदार सफर में। तब तक के लिए
2: जय हिंद, जय भारत।

0: तो बच्चों, आप सुन रहे थे विनय भैया और रोशनी दीदी से रोचक जानकारियां। और बच्चों, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम में शब्द ज्ञान का। जो आज दो शब्द हैं वो हैं कैवल्य और टेनिट। सबसे पहला शब्द कैवल्य, अगर हम भारतीय योग दर्शन में देखें तो इसका अर्थ होता है मुक्ति, मोक्ष या परम स्वतंत्रता। तो बच्चों, आपको पता है मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है? क्यों रितंद्रा दीदी?
1: बिल्कुल सरल है। आजकल देखो बच्चे भी योग कर रहे हैं तो योग से तो परिचित ही हैं, भले भारतीय दर्शन को न जाने, लेकिन ये सब चीजें जो जो परंपराओं में सीख रहे हैं तो बच्चे इसका अर्थ जरूर जान गए होंगे।
0: बिल्कुल। और रितंद्रा दी,
1: हाँ?
0: हमारे जो जैन दर्शन है उसमें अक्सर ये शब्द यूज किया जाता है। जो महावीर थे, गौतम बुद्ध थे, जब इन्होंने, जैसे बौद्ध धर्म निर्वाण होता है, जब उन्होंने मुक्ति पाई, तो उस समय उस जो अवस्था है उसको उन्होंने नाम दिया था निर्वाण का। और जैन दर्शन में ऐसी ही अवस्था को कैवल्य का नाम दे देते हैं, जिसका सिंपल सा अर्थ अभी मैंने बताया कि मोक्ष का मतलब होता है।
1: और ये थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन बच्चे जरूर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जरूर पढ़ते होंगे, है ना?
0: बिल्कुल। और जो दूसरा शब्द है वो है टेनिट, जिसकी स्पेलिंग है TENET। इसका अर्थ होता है सिद्धांत, मान्यता या मूल विचार। इसे विश्वास के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है कि अगर कोई भी सिद्धांत है जो ईमानदारी से है, यानी ईमानदारी का एक मूल सिद्धांत होता है, इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं टेनिट। तो ये तो रही रोचक जानकारियाँ और शब्द ज्ञान। तो रितंधा दी, हमारे स्टूडियो में हमारे नए साथी भी मौजूद हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथ दो बच्चे अपने बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठे हैं। और चूंकि ये जो नन्हे साथी हैं आ भी चुके हैं, और लेकिन हमारे जो स्टूडियो से जो प्रसारण होता है, तो हमारे जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे भी नए नए जुड़ते हैं सुनने के लिए। तो मैं चाहूंगी आप अपना परिचय दे दें। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सात्विक सिंह है।
1: सात्विक सिंह, और सात्विक सिंह क्या करते हैं?
2: मैं हारमोनियम आज बजाऊंगा और आपके समक्ष बहुत अच्छे अच्छे गीत।
1: बहुत अच्छा। आप?
3: मेरा नाम सुंदरम है, मैं तब...

0: और जैसा कि स्टूडियो में दिख रहा है कि सुंदरम जो है अपने तबले के साथ रेडी हैं, बैठे हैं, हम लोगों को सुनाना भी चाहते हैं। साथियों जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ध्यान से इसको सुने जरूर। और सात्विक क्या सुनाएंगे अभी?
1: मैं अभी आपको शिव जी का एक ध्रुपद, जैसा कि अभी सावन चल रहा है तो एक ध्रुपद में क्लासिकल भजन है,
0: बहुत सुंदर। चलिए

0: बहुत अच्छा,
1: बहुत बढ़िया, क्या बात है सात्विक। सात्विक आप स्कूल भी जाते होंगे है ना, किस क्लास में है? तो पढ़ाई के बीच में आपको म्यूजिक का टाइम कैसे मिलता है?
2: मैं स्कूल में भी कभी कभी मैम बुला लेती हैं प्रैक्टिस के लिए, स्कूल में मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया और उसके बाद पढ़ाई, घर पे आके थोड़ी देर, फिर कोचिंग जाता हूँ, उसके बाद म्यूजिक समिति जाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ, ऐसे करते मैनेज हो जाता है।
1: तो एक आपका फिक्स शेड्यूल होगा कि इतने टाइम पे मुझे ये काम करना है, मैं अपने क्लास का होमवर्क भी है और हाँ। आगे एग्जाम, फिर आपका बोर्ड होगा, फिर हाँ। उसकी प्रिपरेशन भी है, साथ में म्यूजिक आपकी जो हॉबी उसको भी आपने इतना संभाल के इतने प्यार से रखा हुआ है, और इसमें नए नए आपने रिसर्च भी किए होंगे आगे सीखने के लिए, है ना? तो ये बताइए कि जैसे आप म्यूजिक सीख रहे हैं, जाते हैं क्लासेस भी करते हैं वहाँ पे, तो क्या इसके लिए कुछ ऐसी डाइट रखनी होती है, कुछ ऐसा शेड्यूल जिसमें जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जो म्यूजिक से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लाइफस्टाइल में और आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हैं ऐसे खास?
2: हाँ, बहुत है। जैसे कि कोई भी ठंडी चीज़ हो गई, आइसक्रीम, ठंडा पानी, या फिर बहुत ही मसालेदार जैसे अचार हो गया, ये सब मैं नहीं खाता हूँ।
1: नहीं खाते?

0: यानी
1: उसके
0: बहुत
1: लिए।
0: ही स्ट्रिक्ट डाइट होती है
1: हाँ
0: आपकी। तो रितंत्रा दीदी,
1: भाई देखो, इन्हीं के साथ बराबर में चल रहे हैं सुंदरम भी, है ना? तो वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं क्या? कैसे करते हैं सुंदरम जी आप ये तबले के रिहर्सल के लिए? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है सबसे ज्यादा?
0: मेरे लिए सबसे पहले तो अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना,
1: हाँ
0: कि मैं संगीत में, संगीत आपको सिखाता है कि अच्छे मनुष्य बनना, आपको वो सिखाता है कि आप कैसे अपने अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें, आपको अच्छा इंसान बनाता है आपको म्यूज़िक। तो जो हमने तालीम ली अपने गुरुजी से, वो उस जो उन्होंने हमको समझाया है, जो ऐसे ही समझाया है सब चीज़ें।
1: तबला सीखने के लिए कितना, मतलब समय की जो रियाज आप करते हैं, कितना लगता है कि हम इसे संतुष्ट हैं, लगभग कितने करना
0: अब
1: चाहिए?
0: तबले तबला मतलब प्रैक्टिस सीखने के लिए, तो मतलब ऐसे नहीं कि हाँ कोई टाइमिंग है सीखने के लिए या फिर कोई
1: हाँ
0: प्रैक्टिस की कोई टाइमिंग है। आप जितने ही मतलब रियाज करें उतने ही राज करेंगे
1: जी। अच्छा सुंदरम जी, एक
0: जी।
1: पता
0: मैं
1: है कि जिसे तबले बजाते हैं आप, तो इसका कोई मूड भी होता है कि मतलब सुबह में हमें करना है या शाम में, जैसे हम पढ़ाई का एक टाइम टेबल
0: हाँ
1: बनाते
0: हाँ
1: हैं उस
0: हाँ
1: तरह?
0: नहीं कोई मूड नहीं, मतलब जैसे
1: हाँ
0: कि अब जैसे कि हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते क्या है थोड़ा हाथ जब जब इंसान मतलब मूड में आ जाता है तो मूड हो जाता बन जाता है, तो
1: अच्छा
0: आधे मतलब आधे घंटे 1 घंटे में लगता है अच्छे मूड मतलब बनने में। रितंद्रा दी, मैं जब से इनको तबला बजाते हुए देख रही हूँ, एक चीज़ के लिए मैं इतनी क्यूरियस हूँ ये पूछने के लिए
1: क्या
0: कि सुंदरम, ये आपकी जो उंगलियाँ हैं, जी मैम
1: ये आप कैसे इसको इतना टफ रखते हैं? क्योंकि लगातार बीट
0: जी
1: पे
0: जी
1: चलती हुई, तो ये आपको ये दर्द होती हैं या
0: नहीं बजाते बजाते थोड़ा बहुत दर्द होती है, और अब तो हैबिट पड़ गई बजाते बजाते फिलहाल
1: हाँ, तो यानी वहाँ
0: उनको भी
1: की
0: आदत पड़ गई है,
1: हाँ
0: उंगलियों को
1: उंगलियों
0: भी
1: को भी,
0: थिरकने की
1: तो
0: हाँ
1: जिस हिसाब से ये तबले पे नाच
0: बिल्कुल
1: रही हैं, तो इससे तो जाहिर है कि इनकी जो, इनका जो रियाज है, इनकी जो
0: जी
1: प्रैक्टिस है, बहुत ही उम्दा है। बिल्कुल। और
0: जी
1: अब
0: मैम,
1: भाई सात्विक हमें क्या सुनाने जा रहे हैं, और हमारे जो नन्हे साथी सुन रहे हैं?
2: जैसा कि कल स्वतंत्रता दिवस था
1: हाँ
2: तो उस पे अपनी ही मातृभाषा में, लोक भाषा में, मैं आपको एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।

0: धन्यवाद
1: भाई, वाह क्या बात है मंदाकिनी। भाई ऐसे बच्चे अगर मतलब ये टैलेंट अभी इस उम्र में है तो आगे तो भाई
0: भाई हमारे देश का भविष्य है और हमारा भविष्य उज्जवल है।
1: और जो अभी इन्होंने अपनी देशभक्ति को अपनी फोक विधा में गाया, सच में कल जो है शहर के अंदर लग नहीं रहा था कि कहीं से मतलब देशभक्ति नहीं हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: मतलब एक एक कड़ में पूरा, अगर प्रयागराज की बात करें तो पूरा मतलब देशभक्ति के प्रति बच्चे क्या और हमारे माता पिता क्या या जो समाज के लोग हैं सब समर्पित हैं।
0: बिल्कुल इतंद्रा दी। हाँ। और स्कूल ही नहीं, ऑफिस या कोई भी कार्यस्थल हो, आप वहाँ देखिए हर कोई बहुत ही उत्साहित होता है। भाई हो भी क्यों ना, ये जो पर्व है हमारे लिए कितने कठिनाइयों से, कितने बलिदानों के फल स्वरूप ये हमें मिला है, तो एक देशभक्ति का जो जज्बा है वो हर भारतीय के भीतर है।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी दी एक चीज और भी मैं देखूंगी, जैसे इस दिन है या 26 जनवरी आती है तो सुबह उठना मतलब स्पीड में उठना फिर कि हमको 9 बजे से पहले झंडारोहण में पहुंचना है, स्कूलों में लड्डू मिलना है।
0: बिल्कुल एक एक्साइटमेंट होता है बच्चों के अंदर और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ अपना जो है जो भी उनका कार्यक्रम उसकी प्रस्तुति देते हैं, जैसा कि अभी हमने अपने स्टूडियो में देखा।
1: और ऐसी कल्चर एक्टिविटियां स्कूलों में भी होती है, यही बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं, है ना। तो भाई सात्विक तो बहुत ही सात्विक बात यहाँ पूछना चाहूंगी मैं कि जो ये गाने का चयन करते हो आप, तो इसको जैसे चयन किया तो इस पे रिहर्सल भी करते होगे?
2: हाँ।
1: तो कितनी बार रिहर्सल करते हो उसकी?
2: मैं इसको पहले तो अच्छे से सुनता हूँ, जिस भी सिंगर ने गाया था, जैसे इस सॉन्ग को शारदा सिन्हा जी ने गाया था, बहुत ही सुंदर, मैंने उसको 3-4 बार सुना। उसके बाद मैंने उसको गाने को लिखा, फिर उसको अपने से एक बार गाने का प्रयास किया।
1: अच्छा।
2: फिर उसके बाद थोड़ी देर रियाज करने के बाद उसी गाने का उस पे तबले के साथ थोड़ा सा।
1: तो इसकी धुन का सिलेक्शन कैसे करते हो?
2: तो इसकी जो धुन होती है वो हारमोनियम पे प्रैक्टिस
1: करनी पड़ती
2: है।
0: बिल्कुल। तो, अच्छा सात्विक, जैसे अब हम लोग तो इस गीत को सुन रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो राग होती है उसको कई सारे राग होते हैं, उनमें से किस सॉन्ग में कौन सा राग है और इसकी जानकारी हम सभी आम लोगों को खासकर नहीं होती है, तो कुछ बताना चाहेंगे हमारे बच्चों को कि जैसे अभी आपने 2 गीत गाए तो आपने कौन सा राग उठाया था?
2: पहला जो गीत गाया था मैंने वो एक ध्रुपद तो था, मैंने उस पर कोशिश की थी थोड़ी सी, लेकिन उसमें पखावज का इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है।
0: अच्छा।
2: तो उसको गाना उस हिसाब से काफी टफ था, उसमें राग अड़ाना का इस्तेमाल हुआ था। तो उस राग में थोड़े से हम ऊपर की नोट्स ज्यादा हाई लेते हैं, तो उससे जो होता है तो उसमें गंभीरता आती है, और गंभीरता हम शिव जी को रिलेट कर सकते हैं, इस वजह से उसी राग में एक बंदिश थी या फिर एक ध्रुपद था जिसको हमने गाया राग शिव।
0: अच्छा। तो ये और अभी जो आपने दूसरा गीत गाया है देवी,
2: ये लोकगीत है, इसका तो मैंने उसको वैसे ही सुना। अब इसका जहाँ तक मुझे लगता है कल्याण थाट से आया है, तो क्योंकि इसमें सारे शुद्ध स्वर लगे हुए हैं।
1: चलिए।
0: अच्छा रितंदा दी, इन बच्चों के साथ ये भी है कि जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो इनकी जो वोकल जो इनकी पिच है वो थोड़ा चेंज होगी, तो उसके साथ मैनेज करना भी सिखाया जाता होगा कि कैसे, जैसे आपकी अब अभी आप और बड़े हो गए तो आपकी आवाज और चेंज होगी, तो क्या सारे राग उन आवाजों के साथ फिट बैठ जाते हैं या उसके लिए अलग से कुछ करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है?
2: मेरी पहले से आवाज काफी चेंज हो चुकी है, मेरी पहले बहुत पतली आवाज थी, उस समय मुझे थोड़ा सा हाई नोट्स भी चलते थे, और इस समय मेरी आवाज हल्की भारी हुई है और अभी भी चेंज ही हो रही है दिन में, तो जैसे कि उसमें राग का कोई वैसा नहीं आता, प्रैक्टिस चलती रहेगी तो

0: अपने आप होता रहेगा।
1: चलिए
0: बड़ी अच्छी बात होता है। तो सात्विक अब क्या सुनाने जा रहे हो?
2: एक और कजरी है, जैसा कि अभी सावन का महीना
1: चल रहा है। बिल्कुल, क्या बात
0: और
1: है।
0: आज मंदाकिनी दीदी भी हरे हरे पोशाक में आई है।
1: बिल्कुल, और हमारे बच्चे इस माहौल को बिल्कुल हरियाली कर देंगे।

0: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: सात्विक तो भाई वास्तव में इसको कहते हैं नेचुरल कलाकार
0: बिल्कुल,
1: है
0: इनके
1: ना।
0: कहते हैं ना कि इनके गले में माँ सरस्वती जी का
1: और साथ
0: विराज
1: में जो
0: है,
1: सुंदरम जो उनका उनका
0: साथ दे रहे
1: दे रहे
0: हैं।
1: हैं
0: बिल्कुल, बहुत
1: वो
0: ही
1: भी,
0: बढ़िया।
1: उनकी भी थिरक रही है उंगलियां, तो जो है रुक नहीं रही है ना।

0: भाई वैसे भी कलाकार तो कलाकार ही होता है। सात्विक, हमारे स्टूडियो में आए कैसा लगा तुमको? मतलब यहाँ पे रेडियो में आकर गाना, मतलब कुछ सोचा था कि हमें रेडियो में आकाशवाणी में कभी जाएंगे?
1: नहीं, मैंने तो ये नहीं
0: हाँ
1: सोचा था. मतलब मेरा सपना था एक,
0: जी,
1: मतलब कि
0: आकाशवाणी में
1: बहुत,
0: आना
1: मैं इसको बहुत ऊंचे पद पे मानता था.
0: जी
1: और जैसा कि आज गाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है.
0: जी
1: और
0: नहीं, और इसमें कोई शक नहीं, सात्विक बहुत अच्छा गा भी रहे हैं।
2: बिल्कुल
0: और
2: हमारे,
0: देखो टाइम बहुत करीब आ रहा है, तो एक कुछ और भी गा
1: मैं
0: सक।
1: आपको एक शिव भजन के साथ साथ एक कजरी का एक मेल टाइप का कुछ
0: बिल्कुल
1: सुनाना
0: बिल्कुल गा
1: चाहता
0: दो।
1: हूँ.

0: बहुत ही सुंदर
1: भाई, दोनों कलाकारों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी मुझे, मेरे हिसाब से। और हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी सुन रहे हैं वो जरूर बताएंगे हमें,
0: बिल्कुल अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए आप हमें जरूर बताइएगा कि सात्विक भैया और सुंदर भैया ने कैसा गाया। और जो है जो भी बच्चे म्यूजिक में रुचि रखते होंगे उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको समझा और सुना भी होगा, जैसा कि हमारे सात्विक और सुंदरम ने बताया कि कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं और क्या क्या चीजें वो फॉलो करते हैं।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी दीदी, एक बात और भी है, हमारे शहर में भी जैसे बहुत सारे जगहों पे म्यूजिक के वर्कशॉप

0: होते हैं, तो बच्चे जो इंटरेस्ट रखते हैं इसमें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, या स्कूलों में भी ऑप्शन होते हैं ना कि
1: बिल्कुल
0: सब्जेक्ट के साथ अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं या चित्रकला करना, जो भी आपकी रुचि हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। तो
1: बिल्कुल
0: और उसी उस आधार पे आप अपने कहते हैं शौकिया
1: या आपकी हॉबीज हैं, और इसके लिए भी आज के जमाने में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इसको आप अपना करियर भी बना सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, जिन्हों का बहुत ही अच्छा करियर है इस चीज में।
0: बिल्कुल, और बच्चे बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं सिंगिंग के भी क्षेत्र में, है ना। और इसके साथ ही मैं भाई कहूंगी कि बच्चे
1: वक्त
0: सब
1: हो
0: कुछ
1: चला
0: करें।
1: है हाँ, और हमें अपने श्रोताओं से, अपने बच्चों से अब विदा लेना है। तो चलिए
0: और बच्चों से कहते हैं, बच्चों जय हिंद।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है।

0: ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध आप सुन सकते हैं दिन में 7:15। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा छेदी लाल और साथियों के स्वर में दिन में 2:30 पर और शाम 6:30 पंचायत घर में। पंचायत घर में लोकगीतों के अलावा ग्रामीण भाई जयत सिंह की वार्ता सुनेंगे, कृषि के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर। ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल शाम 5:00, इसमें आप सुनेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव की कहानी लालच के लड्डू। युववाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर, इसमें हम आपको सुनवाएंगे खुशी राज की वार्ता, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। सुगम संगीत रात 7:45, कलाकार होंगी अंकिता चतुर्वेदी। रात 8:00 आप सुनिएगा पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी आई है। साप्ताहिक कार्यक्रम आज इतवार है, इसमें आप सुनेंगे नरेश मिश्र की लिखी झलकी मुंशी इतवारी लाल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब सूचना खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। ये सूचना है ग्राम टेला थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी से। आनंदीलाल सूचित करते हैं कि उनकी सुपुत्री माया देवी, उम्र 23 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके शरीर की बनावट एकहरी है। ये दिनांक 14 जुलाई 2026 से दोपहर लगभग 2:30 से अपने निवास स्थान ग्राम टेड़ा से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को सूचित करें। संबंधित फ़ोन नंबर कृपया नोट कर लें 9682449901। ये सूचना है थाना कौनिहार जनपद प्रतापगढ़ से। पवन कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय रामदीन ग्राम इब्राहिमपुर थाना कौनिहार जनपद प्रतापगढ़ की सूचना के अनुसार उनकी पुत्री शिवानी उम्र लगभग 19 वर्ष ऊंचाई कद 5 फीट रंग गोरा चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 10 मार्च 2026 से अपने निवास स्थान इब्राहिमपुर से लगभग 3:00 से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना कौनिहार जनपद प्रयागराज प्रतापगढ़ को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं रोहित मालवीय। आइए सुनते हैं इनके स्वर में 3 ताल में तबला वादन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत सुनिए आज के कुछ खास कार्यक्रम। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम रविवार सरी अखिल भारतीय संगीत सभा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर आप सुनेंगे रोहित मालवी का तबला वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रोहित मालवी का तीन ताल में तबला वादन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म दीवाना से। आवाजें अलका याग्निक, विनोद राठौर की, गीत समीर का, धुन नदीम श्रवण की।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौंडवाल की युगल आवाजों में समीर का लिखा गीत। धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने, फिल्म का नाम था आई मिलन की रात। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरूह का लिखा गीत। आवाजें उदित नारायण अनुराधा पौंडवाल की, फिल्म का नाम लाल दुपट्टा मलमल का।

कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं जीत फिल्म का गीत सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि

0: बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रख रखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support e-challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained.

0: ने कहा,
1: भारत की राजनीति में अस्थिरता के दौर को रोकने और राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, राजनीतिक समन्वय के माध्यम से जिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण सरदार अटल जी ने 1996 और 1998 में प्रारंभ किया था, वह आज भी भारत की राजनीति का प्रासंगिक बना हुआ है। और आज भी इतने लंबे समय से एनडीए अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के निरंतर देश के अंदर, राज्यों के अंदर विभिन्न सरकारों का संचालन करते हुए सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी की कामयाब हुक्मरानी को अपोजिशन लीडर और वजीर आजम दोनों के तौर पर तस्लीम किया गया। आज पूरा मुल्क साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, वजीर मुमलिकत बराए ज़रात बलदेव सिंह औलख, मेयर सुषमा खरकवाल और कई मोअज़्ज़िज़ लोगों ने भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के हजरतगंज में रानी अवंतीबाई लोधी को उनके यौम पैदाइश पर उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि झंगझू अवंतीबाई लोधी हिंदुस्तान की आज़ादी की उन अजीम शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी मुल्क के लिए वक्फ कर दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
1: वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिस युद्ध को लड़ा गया, आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन करता है। हर भारतवासी उनके योगदान के लिए उनके प्रति नतमस्तक होता है। आज उनका 196वां पावन जयंती और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की आजादी के उस आंदोलन में, उस संघर्ष में अपने आप को बलिदान किया।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत बाग आज से 15 सितंबर तक आवाम के लिए खुला रहेगा। बाग सुबह 10 बजे खुलेगा और शाम 6 बजे बंद होगा। शाम 5 बजे तक आखिरी दाखिले के साथ बाग खरपीर को देखभाल के लिए बंद रहेगा। मरकजी वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सदर का मुमताज खिदमत तमगा दिया जाएगा और 75 दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सदर की शानदार खिदमत का तमगा दिया जाएगा। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ में तैनात इंस्पेक्टर सुनील कुमार को बाद अजमर्ग कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। वो मेरठ में बदनामे जमाना अनिल दोहाना के साथ तसादुम में शहीद हुए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर ऑल इंडिया एंट्रेंस इम्तिहान के लिए आरजी जवाबी कलीदें जारी करेगी। पीएचडी प्रोग्रामों के लिए ऑल इंडिया मसाबकती इम्तिहान की जवाबी कलीदें भी आज जारी की जाएंगी। एजेंसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आरजी जवाबी कलीदें सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब होंगी। एजेंसी ने उम्मीदवारों पर जोर दिया है कि वो एजेंसी की सरकारी मालूमात पर ही इन्हिसार करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रियासत में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह से सरगर्म हो गया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में मूसलाधार बारिश, तेज गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के लिए अलर्ट जारी किया है। खलीज बंगाल और मध्य प्रदेश पर बनने वाले कम दबाव के इलाके की वजह से 13 अगस्त से शुरू होने वाली बारिश 18-19 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। बारिश के बाद दर्जे हरारत में 4 से 5 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई है। फर्रुखाबाद जिले में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज पूर्वांचल के साथ साथ वस्ती और मगरबी यूपी के जिला जैसे आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, गोंडा और लखनऊ डिवीजनों में गरज चमक के साथ दरमियानी से भारी बारिश का इंतबाह जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब श्रोता सुने अपनी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: सोनू जायसवाल साईपुर प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ
0: जी। सोनू जी बोलिए।
1: फूल और कांटे का सुनवा दीजिए।
0: कौन सा गाना है?
1: कोई अच्छा सा दीजिए आपकी पसंद का।
0: चलिए ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं फूल और कांटे फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: रेखा यादव कुकुराहाटी प्रयागराज से बोल
0: जी। रेखा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: कुछ कहता है सावन, क्या
0: कहता है भाई। सावन तो बहुत कुछ कहता
1: दिल
0: है
1: में मेरे तू रहता है।
0: बहुत ही अच्छा गाना रेखा जी आपने चुना है, बड़ा ही मधुर है सुनने में ये गीत। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज
1: सुन रहा था मैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगा
0: जी। तो हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: कुछ कहता है।
1: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। सुनीता कुशवाहा जी झूंसी से बात कर रही हैं, तो बताइए सुनीता जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? गाने के बोल बताएं। गाने के बोल क्या है?
2: फिल्म का गाना सुनना है मैडम
1: जी।
2: सावन के झूलों ने
1: मुझको बुलाया। ठीक है, आपको आपकी पसंद का ये गीत जरूर सुनवाएंगे। सुनीता जी पहली बार कॉल की है क्या आपने?
2: हाँ, पहली बार कॉल करी है इसलिए नहीं समझ पा रही।
1: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अब आप फोन करते रहिएगा, हम आपको सुनवाते रहेंगे आपकी पसंद के गाने। तो लीजिए सुनिए निगाहें फिल्म का ये गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: जी हारून जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है तमन्ना
0: जी,
1: उठ मेरी जान।
0: सोनू निगम की आवाज में ये गाना है
1: जी। और आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ हारून जी, और आपको सुनवाने जा रही हूँ तमन्ना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: हेलो मैम, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी,
1: मैं काजल बोल रही हूँ।
0: हाँ काजल जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: प्रयागराज से मैम।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे मेरे ख्वाबों में जो आए, ये वाला गाना।
0: अच्छा, काजोल के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना काजल जी ने पसंद किया है।
1: जी मैम।
0: तो काजल जी ये बताइए, आपको किसी के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: मैम भाइयों का नाम ले ले मैम।
0: हाँ बिल्कुल ले लीजिए
1: मैम। छोटे वाले भाई का सूरज है, बड़े वाले भाई का नाम शेखर।
0: ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। आप बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए।
0: जी हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा से मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस समय अपने श्रोताओं को सुनवाती हूँ गाने उनकी पसंद के हेलो अनुरोध कार्यक्रम में।
0: दीदी आपके द्वारा 6 अगस्त का कार्यक्रम सुना आपकी पसंद
1: जी।
0: और उसमें इतनी अच्छी बातें आपने कही सामाजिक जीवन पर और हमें बहुत पसंद आई और उन्हें मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है।
1: अरे
0: और
1: वाह,
0: जब भी इच्छा होती है हम सुनते हैं, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम इतना पसंद आया कि उसे आप बार बार सुनते हैं रिकॉर्ड करके।
0: जी।
1: चलिए वैसे ही बने रहिए हमारे कार्यक्रमों के साथ। और अब बताइए अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।
1: जी
0: कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है झमक झम झम
1: क्या
0: झम।
1: बात है, बहुत बढ़िया गाना है। और वाकई गाने में इतनी झनकार है, लगता है कि जैसे पानी ही बरस रहा है।
0: बहुत अच्छा
1: जी
0: लगता है
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा
0: गीत।
1: गाना है।
0: और राजेंद्र कुमार जी को याद करता हूँ जो कि सदैव अपने गीतों के साथ हमारा नाम लेते हैं, हमें याद करते हैं। मैं
1: जी
0: उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूँ। राकेश कुमार जी हैं भैया मेजा से बस, और गुलाब चंद प्रजापति हैं बाबूगंज से, और लोकेन वर्मा जी हैं राजू यादव। इन दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर स्वागत करता हूँ आरणी मधु दीदी के साथ।
1: तो हम आपको सुनवाते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना।
0: जी दीदी धन्यवाद नमस्कार।

0: आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: मैं चिरमिरी कुलाचा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है बेमिसाल और गीत के बोल है एक रूप में तड़प को तेरा नाम लूंगा, गायक किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन विनोद मेहरा जी का फिल्म का गाना है।
0: जी जी।
1: सबसे पहले गीत आपको केंद्र निदेशक साहब को प्रयागराज जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहन के स्टाफ कर्मचारी को हेलो श्रोताओं को पूरे भारत को क्रिएट करेंगे। इसका प्रसारण 12:30 बजे या 1 बजे में होगा
0: जी। इस कार्यक्रम का प्रसारण हेलो अनुरोध कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन में 1:15 पर किया जाता है। तो अपनी पसंद के गाने आप हेलो अनुरोध कार्यक्रम में इस समय सुन सकते हैं। तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बेमिसाल फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम अनुरोध आपका। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर।

0: India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a sixth world championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया

0: की शेष तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता

0: नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अताचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग

0: 270,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं छेदी लाल और साथी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

अभी आप छेदीलाल और साथियों के स्वर में ये लचारी सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं इनके स्वर में निर्गुण।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम। आज कलाकार छेदीलाल और साथी। अभी आपने सुनी उनके स्वर में देवी गीत कजरी लचारी निर्गुण। आइए अंत में सुनते हैं इनके स्वर में कजरी।

लोक गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छेदीलाल और साथियों के स्वर में लेख लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 17.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 3 बजे हैं। ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लड़कनो जय हिंद।
2: का हो भोला भैया, का हाल बाटे?
1: बढ़िया बा भैया, देखा हमारे तो हाल बढ़िया बा। और हमके तो लगत कि हमारे चुन्नू मुन्नू भी इस समय देखा खूब उत्साह में हुई। आजकल तो ऐसा मौसम भी है और साथ साथ देखें विद्यालय में जो नहाए कल रहा 15 अगस्त, तो उस वजह से जो ना स्कूल के गतिविधि में सब इतना शामिल रहें, इतना उत्साह में रहें कि हम तो देखे भैया कि जो ना चुन्नू मुन्नू हरें जौने कहती देखा वही कहती तिरंगा झंडा लहे जो ना स्कूले खातिर जो ना निकले रहें बड़ा उत्साह में। तो बल्कि जो ना कुछ दो चार चुन्नू मुन्नू से बतिया हमका हो चुन्नू मुन्नू आज 15 अगस्त के का तोहार सबके तैयारी बा, तो क्यों कहा भैया हम कविता सुनाओ, क्यों कहा हम चुटकुला सुनाओ।
2: हाँ देखा ये बात तो सही कहा भैया। हाँ। बोला भाई कि पढ़ाई लिखाई के साथे साथे अन्य गतिविधि भी बहुत आवश्यक हैं, विशेषकर पढ़ाई लिखाई के साथे खेल कूद का भी क्रियाकलाप बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कहाँ से कि चुन्नू मुन्नू के स्वास्थ्य के खातिर बहुत जरूरी है। ये भी चुन्नू मुन्नू विद्यालय में अगर जौन भी खेल है, कबड्डी खेलत हैं, खो खो खेलत हैं और जौने में उनका रुचि है, उनमें वो आगे बढ़ें, वह खेलें। अगर बात किया जाए आधुनिक खेल का तो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या क्रिकेट है, लेकिन खेल कूद के गतिविधि में हर गदेला का जिम्मेवारी है स्कूल जाए वाले कि जरूर से जरूर भाग ले।
1: बिल्कुल भैया, देखें क्या होते कि ना कि अगर आप खाली अपन ऐसे गतिविधि करता है घर बैठ के आप कोनो चीज़ कार्य करता है तो शरीर में कहीं ना कहीं जो ना एक सुस्ती आ जाते हैं। और अगर आप दिन में अगर घंटा दो घंटा खेल कूद के माध्यम से अपने के जो ना व्यस्त करी तो आपके शरीर में जो ना एक चैतन्यता रहते और पढ़ाई लिखाई भी जो ना एकदम बढ़िया से होते। और खेल कूद तो जीवन में बहुत ही जरूरी बा।
2: बहुत सही कहा। और चैतन्यता की बात ना, शरीर स्वस्थ रहे।
1: बिल्कुल,
2: जौन विद्यालय में खेल कूद के घंटा है जो समय निर्धारित हो, मैं भैया चुन्नू मुन्नू जरूर भाग लें। और उनके माई बाबू से भी अरदास है कि लेकिन के खेल कूद के खातिर बिगड़ा ना, नाराज ना हो।
1: बिल्कुल,
2: पढ़ाई लिखाई का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा खेल कूद भी है, वैसे उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, उनके शरीर में स्फूर्ति रहते है, शरीर रोग रोधी रहते है, ये सब तमाम तरह का जो अच्छी बात है वो सब शरीर में आवते हैं। और स्वस्थ मन रहा था, स्वस्थ शरीर रहा था तो पढ़ाई लिखाई का चीज़ भी बहुत आराम से दिमाग में आ जाता है।
1: एक बात और का भैया देखा है चुन्नू मुन्नू से कि देखा ये मौसम आते वर्षा के और यह समय में क्या होते कि बहुत सारे घास फूस और जो नहाए खर पतवार आस पास रहा थे जो नहा घर के, तो खेल कूद के समय ये बात के

0: ध्यान रखें कि ऐसी जगह पे आप अपन खेल कूद ना करें कि जहाँ तमाम तरह के झाड़ी झंझाटी हो, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे जानवर हमें छुपा हो सकते हैं वर्षा ऋतु में, तमाम
1: हाँ, विषैला जानवर उनका
0: विषैला
1: आतंक
0: जानवर
1: रहता है।
0: निकले का डर रहा थे। तो कोशिश करें कि जहाँ पे साफ सुथरा मैदान हो, खुली जगह
1: खेल
0: हो,
1: का मैदान हो
0: खेल के मैदान
1: वहाँ
0: हो।
1: जाएं, वहाँ अपन निर्धारित समय में
0: हाँ
1: खेलकूद करें भैया, लड़ाई झगड़ा न करें आपस में खेलकूद के लेके। और एक बात का जौन विशेष ध्यान रखें कि साँझ अगर दिन डूब रहा बाटे तो फिर सीधे घरे आ जाएं,
0: बिल्कुल भैया,
1: काहे
0: शाम
1: से
0: के।
1: कि मौसम भी खराब है, बरसात का मौसम है और विषैला जंतु जौन हमें ये समय ज्यादा
0: बाहर निकला थी
1: बाहर
0: ना
1: निकले थे।
0: तो।
1: देखा बात बात कही होत रही ने, तो आज एक कहानी है चुन्नू मुन्नू की खातिर, लालच के लड्डू। हम कहें आवा चुन्नू मुन्नू के साथ हम लोग सभी सुना जाए।
0: बिल्कुल भैया, सुनवा दें।
2: यह 21वीं शताब्दी का युग है। समस्त विश्व प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसित हो रहा है। वर्तमान युग में भी कहानियों का अपना अलग महत्व है। प्राचीन काल से ही दादी नानी के द्वारा बच्चों को कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्यों को समझाने की परंपरा चली आ रही है। बच्चे सुगमता से कहानियों के माध्यम से बताई गई सीखों को सीख लेते हैं, उन्हें जीवन पर्यंत नहीं भूलते। बच्चों, आप लोग भी कहानियों में रुचि तो अवश्य लेते होंगे। हम आज कहानियों के माध्यम से आपको बताएंगे कि लालच बुरी बला है एवं संतोषम परमम सुखम। लालची व्यक्ति आजीवन लालच के वशीभूत होकर परेशान रहता है, जबकि संतोषी व्यक्ति थोड़े में ही सुख का अनुभव करता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में जीवन पर्यंत लगा रहता है, लेकिन अगर इसके अंदर लालच समा गई तो वह आजीवन परेशानी में गुजरता है। लालची व्यक्ति असंतोषी होता है, उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। वह सिर्फ अपने ही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, उसे दूसरे के सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है, कर्म की एजा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म ही पूजा है, कर्मठ बनो लेकिन लालची नहीं। लालच का परिणाम कितना बुरा होता है हम इस कहानी के द्वारा आपको बताते हैं। एक मछुआरा और उसकी पत्नी समुद्र के किनारे झोपड़ी में रहते थे। वे निसंतान थे, उनकी उम्र 50 से कम थी, लेकिन गरीबी और चिंता से वे समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे। मछुआरा संतोषी, समझदार, शांत प्रवृत्ति का था, किंतु उसकी पत्नी लालची, असंतोषी तथा कटु स्वभाव की थी। उनकी जीविका का स्रोत था समुद्र से पकड़ी गई मछलियाँ। इन मछलियों को बेचकर मछुआरा अपना जीवन यापन करता था। मछलियाँ ही उनके लिए सर्वस्व थीं। अगर मछली नहीं मिले तो उसकी पत्नी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी। अगर टोकरी भरकर भी वह मछली लाता तब भी उसकी पत्नी खुश नहीं होती। बेचारा बूढ़ा शिथिल पड़ चुका था। रोज की तरह वह जाल बिछाकर समुद्र के किनारे बैठा था। कोई मछली नहीं फंस रही थी। अचानक उसे लगा कि जाल कुछ भारी है, तो खींचा और देखा कि उसमें एक सुनहरी मछली फंसी है। मछुआरे ने उसको हाथ से उठा लिया और प्यार से सहलाने लगा। वह मछली सजीव होकर बोली, हे बूढ़े मछुआरे, तुम मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूँ। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। बूढ़े को दया आ गई, उसने मछली को छोड़ दिया और खाली हाथ घर पहुंचा। उसे खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी काटने को दौड़ी। मछुआरे ने उसे धीरज बधाया और सुनहरी मछली की बात बताई। सुनकर वह मछेरे पर चिल्लाने लगी, तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? अभी तुरंत जाकर मछली से कुछ खाने के लिए मांग लाओ, घर में कुछ है ही नहीं। बूढ़ा नंगे पांव लौटकर सागर तट पर बैठकर बोला, हे सागर की रानी, मछली तनिक तट पर आओ और मेरी विनती सुनो। पल भर में ही लहरों के साथ खेलती सुनहरी मछली तट पर आ गई। बूढ़े ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे मछली रानी, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, कृपया खाने के लिए कुछ दे दें। मछली बोली, आप घर जाइए, मैं भेज देती हूँ। मछेरा जब घर पहुंचा तो आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जियों के ढेर लगे थे। दोनों ने

मिलकर सामान को रखा। बूढ़ा अभी रख कर निवृत्त भी नहीं हो पाया था कि तभी बूढ़ी चिल्लाने लगी, केवल खाने की वस्तुओं से क्या होगा, जाओ उससे वस्त्र और आभूषण भी मांग लाओ। बूढ़ा उसको समझाते हुए बोला, बार बार मांगना ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, चलो कल जाकर फिर मांग लाएंगे। बूढ़े ने उसकी एक न सुनी, रात भर कोसती रही। सुबह फिर सागर तट पर जाकर विनयपूर्वक बूढ़ा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी को वस्त्र आभूषण की भी जरूरत है। मछली बोली, आप जाओ।

रात भर कोसती रही। सुबह फिर सागर तट पर जाकर विनय पूर्वक बूढ़ा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी को वस्त्र आभूषण की भी जरूरत है। मछली बोली, आप जाओ, हम भेज देंगे। बूढ़ा घर गया तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी ढेर सारे वस्त्र और जेवर पहन करके बैठी हुई है। बूढ़े को देखते ही वह बिफर कर बोली, इस तरह सज कर झोपड़ी में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कल सुबह ही जाकर मेरे लिए एक महल की मांग करना। मछेरे ने सुनी अनसुनी कर दिया, लेकिन वह कहाँ चुप होने वाली थी। फलता फिर सुबह ही सुबह मछेरा वहाँ पहुँचा और विनती पूर्वक मछली से बोला, मेरी पत्नी को महल की आवश्यकता है। तब मछली बोली, उनकी इच्छा भी पूरी कर दूंगी। जब मछेरा घर पहुंचा तो देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और उसकी पत्नी प्रसन्न चित्त दिखाई दी। कुछ दिन इसी प्रकार सुखपूर्वक व्यतीत हो गए, परंतु लोभी बुढ़िया का लालच फिर सिर उठाने लगा। एक दिन उसने मछेरे से कहा, मैं दिन रात काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। मैं ऐसे जीवन से तंग आ चुकी हूँ। तुम सुनहरी मछली के पास जाओ और मेरे लिए नौकर चाकर के लिए कहो। बूढ़े ने उसे समझाते हुए कहा, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हम केवल दो ही लोग हैं, घर का काम ही कितना है। लेकिन बूढ़ी के लोभ ने उसके विवेक को इतना ढक दिया था कि उसने मछेरे की एक नहीं सुनी। विवश होकर मछेरा सागर तट की ओर चल पड़ा और मछली से निवेदन किया। मछली केवल मुस्कुराई और दृष्टि से ओझल हो गई। लौटकर मछेरे ने देखा कि उसकी पत्नी नौकर चाकर से घिरी सज धज बैठी है। एक दिन बुढ़िया का मछेरे से तकरार हो गया। वह उसे फिर सुनहरी मछली के पास भेजना चाहती थी। अब उसका लालच अत्यधिक बढ़ चुका था। अब वह धरती की महारानी बनने की सोचने लगी थी। बूढ़ा जब नहीं राजी हुआ जाने के लिए, तब बुढ़िया ने नौकरों से कहा कि इसकी पिटाई करके घर से बाहर निकाल दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। मछेरा किसी तरह सागर तट पर पहुंचकर मछली का स्मरण किया। मछली बोली, तुम्हारी पत्नी को अब किस चीज़ की आवश्यकता है, बोलो। मछेरा बोला, अभी तक तो मैं उसके कहे के हिसाब से ही आपसे सब कुछ मांगता रहा, लेकिन अब मेरी भी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराई और बोली, कहा, हाँ, वह भी पूर्ण होगी। बूढ़ा मछेरा बोला, बस इतना ही, अब रहने दीजिए। आप यह धन दौलत, दास दासियां एवं महल आदि सब कुछ वापस ले लीजिए। मुझे मेरी झोपड़ी और जाल लौटा दीजिए। धन के लालच में मेरी पत्नी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। मेरा सुख चैन सब छिन गया था। मछली ने उत्तर में कहा, ऐसा ही होगा। अब महल के स्थान पर पुरानी झोपड़ी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। बुढ़िया सोई पड़ी थी। मछेरे ने उसे जगाया। वह उठ बैठी और आसपास का वातावरण देख सकते में आ गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं होता, वह कभी सुखी ही नहीं हो पाता। बूढ़े की प्रेम भरी बातों को सुनकर मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसने अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। इसके पश्चात दोनों प्राणी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लालच किस तरह से बुद्धि भ्रष्ट करता है, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक बुढ़िया ने एक मुर्गी पाली थी। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। बुढ़िया की गरीबी धीरे धीरे अमीरी में बदलने लगी। बुढ़िया खुश रहती थी। कुछ पड़ोसियों की नज़र बुढ़िया की आर्थिक स्थिति पर पड़ी और पता चला कि अमीरी का कारण मुर्गी का रोज सोने का अंडा देना है। कुछ ईर्ष्या करने वालों ने बुढ़िया को समझाना शुरू किया कि रोज केवल एक अंडा पाती हो, मान लो मुर्गी अगर कहीं खो गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि मुर्गी का पेट चीर कर जितने अंडे मिले निकाल लीजिए। धीरे धीरे बुढ़िया के दिमाग में यह बात घर कर गई और वह एक दिन मुर्गी का पेट चीर कर फुर्सत कर दी। जब उसे ढेर सारे अंडे नहीं मिले तो वह दुखी हुई और सोचने लगी कि अगर हम लालच नहीं करती तो मुर्गी का अंडा हमें रोज एक मिलता रहता और हम सुख से रहते। वह अपनी मूर्खता पर बहुत दुखी थी। उसने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। ऐसा लालच के कारण ही उसने किया। वह लालच के लोभ में इतनी अंधी हो गई कि उसे भले बुरे का ध्यान ही नहीं रहा।

0: उसकी क्षति तो हुई, साथ ही साथ उसकी बदनामी भी हुई। लोग उसे लालची कहकर पुकारने लगे। उसे अपने किए पर बेहद अफसोस था। वह इसके अलावा कर भी क्या सकती थी। अंदर ही अंदर वह आत्मग्लानि से दुखी थी और लोग उसका परिहास उड़ा रहे थे। बच्चों, इन कहानियों से यही सीख मिली कि अपने ऊपर लालच को हावी होने मत दीजिए। इससे काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है, चित्त में चैन नहीं आता, नुकसान अलग से होता है। लालच मति भ्रष्ट कर देती है, स्वार्थी बना देती है। असंतोषी जीवन कदापि सुखमय नहीं होता। बच्चों, हमें लालच से बचना चाहिए तथा औरों को भी बचने की सलाह देनी चाहिए। कर भला तो हो भला, इसे त्याग कर आप कई बुराइयों से बच सकेंगे। सही ढंग से किए गए कार्यों से आप समाज, राज्य तथा देश की प्रगति में सहायक हो सकेंगे।
1: हाँ, देखा हो,
2: हाँ भैया,
1: लालच के लड्डू बहुत बढ़िया रही, स्नेहलता श्रीवास्तव जी कहानी रही, चुनु मुन्नू के बहुत पसंद आई हुई।
2: बिल्कुल भैया,
1: हम कहें चला चलावत, बस एक बात है कि देखा बरसात का समय है, साफ सफाई पर ध्यान रखें अपने,
2: और खान पान भी बहुत जोना है, बाहर के बचें और ताजा भोजन करें, पढ़ाई मन लगावें। तो चुन्नू मुन्नू जय हिंद।
3: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
7: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
8: हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
7: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
9: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1 अनेक।
3: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: माटी की खुशबू, ढोलक की थाप, दादी की सुनाई हुई वो कहानी और किसी मेले में गूंजता हुआ वो लोकगीत। कुछ चीजें ऐसी होती है ना दोस्तों, जो सिर्फ सुनी या देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। लेकिन आज की दुनिया थोड़ा बदल गई है। अब चौपाल की जगह चैट रूम्स हैं, लोकगीतों की जगह ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं और चिट्ठियों की जगह एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज पूरी कहानी कह देता है। फिर भी इन बदलावों के बीच कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो मिट्टी आज भी सांस ले रही है जिससे हमारी पहचान बनी है।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवानी यानी यूथ की बात यूथ के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा और मेरे साथ
0: और मैं हूँ सेजल।
1: सेजल को हमेशा जल्दी रहती है अपने नाम लेने की, तो आज उसने वही किया है। खैर, सेजल मैं यही कहना चाहती हूँ कि वक्त बदल

0: बदलता है, दौर बदलता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ाव ही हमारी पहचान को जिंदा रखता है।
1: बिल्कुल। और जरा सोचिए दोस्तों, आज हमारी सुबह मोबाइल के नोटिफिकेशन से होती है, क्यों पूजा?
0: हाँ बिल्कुल।
1: और रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए गुजरती है। हम दुनिया के किसी भी कोने का म्यूजिक, फैशन या ट्रेंड कुछ ही सेकंड्स में जान लेते हैं। लेकिन इसी तेजी के बीच एक सवाल है, क्या हम अपनी लोक संस्कृति से भी उतने ही जुड़े हुए हैं? हमारी दादी नानी की सुनाई कहानियाँ, गांव की चौपाल, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले, पारंपरिक कला, त्योहारों की अपनी खास परंपराएं, क्या ये सब आज के युवा की जिंदगी में अब उतनी ही जगह रखते हैं, या फिर मॉडर्न बनने की दौड़ में कहीं हमारी ये खूबसूरत विरासत पीछे छूटती जा रही है?
0: और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो पुराना होकर भी हर पीढ़ी के लिए नया है, हमारी लोक संस्कृति और आज का आधुनिक युवा। क्या आज का युवा अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस दौर में वही युवा हमारी संस्कृति को एक नई दिशा दे रहा है?
1: तो आइए थोड़ा आज से पीछे चलते हैं, अपनी मिट्टी को महसूस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे जड़ें और हमारी नई पीढ़ी एक साथ कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ सकती है।
0: लेकिन सेजल, उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लोक संस्कृति है क्या।
1: बिल्कुल।
0: तो आसान भाषा में समझें तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे गाने, हमारे डांस, फूड, फेस्टिवल, स्टोरीज, आर्ट, यानी वो सारी चीज़ें जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि इसके लिए हमें किसी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं होती। किसी घर में दादी की सुनाई गई कहानी भी अपने आप में एक कल्चर है, किसी फेस्टिवल में गाया हुआ लोकल सॉन्ग भी अपने आप में कल्चर है, और किसी ट्रेडिशनल आर्ट भी जो हम देखते हैं वो भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं संस्कृति को समेटे हुआ है।
1: एग्जैक्टली पूजा, यानी हम ये कह सकते हैं कि कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे सिर्फ म्यूजियम में जाकर देखा जाए। कल्चर इज समथिंग वी लिव। अब भारत की बात करें तो यहाँ कल्चर की डाइवर्सिटी लिटरली अमेजिंग है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लैंग्वेजेस बदल जाती हैं, फूड्स बदल जाते हैं, क्लोथ्स बदल जाते हैं, म्यूजिक और डांस फॉर्म्स बदल जाते हैं, और फिर में एक कॉमन फीलिंग रहती है, अपनापन। उत्तर भारत के फोक सॉन्ग्स हो, राजस्थान की लोक धुनें हो, पंजाब का फोक म्यूजिक हो, या फिर दक्षिण भारत की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, हर रीजन की अपनी एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, और यही डाइवर्सिटी इंडिया को इतना स्पेशल बनाती है। लेकिन एक बात सच है कि आज यूथ की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है।
0: एब्सोल्युटली। टेक्नोलॉजीज, स्टडीज, करियर, सोशल मीडिया, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आज टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है।
1: बिल्कुल।
0: और यही वजह है कि कुछ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म या फोक प्रैक्टिसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी आर्ट को प्रैक्टिस करने वाले लोग कम होते जाएंगे तो उसे कंटिन्यू कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब सवाल ये है कि क्या यूथ मॉडर्न लाइफ स्टाइल छोड़ दे?
1: एब्सोल्युटली नॉट पूजा। और दोस्तों, इसका सोल्यूशन हम जानेंगे और दोस्तों को भी पूजा बताएंगे इसके बारे में, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो वैसे पूजा, हम बात कर रहे थे कि क्या यूथ मॉडर्न लाइफस्टाइल छोड़ दे, इसके सोल्यूशन की.
1: बिल्कुल.
0: तो दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कल्चर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सिंपली हाँ या नहीं में देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आज का युवा कल्चर को उसी पुराने फॉर्मेट में शायद ना अपनाए, लेकिन उसे नए तरीके से एक्सप्लोर ज़रूर कर रहा है.
1: पहले लोकगीत गांव के किसी शादी या त्यौहार तक सीमित रहते थे, लेकिन आज वही लोकगीत सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, और यही सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव हमें देखने को मिलता है. पहले किसी लोक कलाकार को अपनी कला दिखाने के लिए किसी मंच या बड़े आयोजन का इंतज़ाम करना पड़ता था, लेकिन आज उसके पास अपना छोटा सा डिजिटल स्टेज है. यानी टेक्नोलॉजी ने लोक संस्कृति को ख़त्म करने के बजाय अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक कहीं ना कहीं नया प्लेटफॉर्म हमारे जो यूथ्स हैं, जो इस तरह का टैलेंट है, उन्हें मिल सकता है. और सेजल, हम ये देख रहे हैं कि आज का जो यूथ है सिर्फ इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा है.
0: बिल्कुल.
1: वो रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट बना रहा है, स्टोरी सुना रहा है. लेकिन सच ये है कि किसी भाषा की सिंप्लिसिटी उसकी कमजोरी नहीं होती. कई बार हमारी लोकल बोलियाँ ही वो इमोशनल कनेक्शन बना देती हैं जो बड़ी

0: किताबें भी नहीं कर पाती।
1: क्योंकि कल्चर सिर्फ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में नहीं रहता, कल्चर तो हमारे बोलने के तरीके में है, खाने में है, पहनावे में है, त्योहार मनाने के तरीकों में है, लोक कथाओं में है, और उन छोटी छोटी ट्रेडिशंस में है जिन्हें हम कभी कभी इतना नॉर्मल समझ लेते हैं कि उनकी वैल्यू ही भूल जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मॉडर्न होना गलत नहीं है, नई चीज़ें सीखना, नए ट्रेंड्स को अपनाना, दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना, ये सब ज़रूरी है। लेकिन मॉडर्न बनने का मतलब अपनी रूट्स से डिस्कनेक्ट होना तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम अपनी कल्चर को सिर्फ पुरानी चीज़ें समझेंगे तो धीरे धीरे उससे दूरी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर हम उसे लिविंग कल्चर समझें, यानी ऐसी चीज़ जो समय के साथ बदल सकती है, तो शायद कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी और ये बदलाव युवा कर सकता है।
0: मान लीजिए कि कोई ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है, युवा अगर उसे उसी तरह गा सकता है तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि वो नई जनरेशन तक भी पहुंच सकता है। कोई ट्रेडिशनल पेंटिंग है तो उसे डिजिटल आर्ट के साथ कंबाइन किया जा सकता है। कोई पुरानी लोक कथा है तो उसे शॉर्ट फिल्म, पॉडकास्ट या एनिमेशन के रूप में भी नए जनरेशन तक पहुंचाया जा सकता है।
1: यानी कल्चर को म्यूजियम में रखकर सिर्फ देखना नहीं है, उसे यूज करना है और नए जनरेशन तक पहुंचाना है। और शायद यही डिफरेंस है ट्रेडिशन और लिविंग ट्रेडिशन में। लेकिन एक सवाल यहाँ और आता है कि क्या हर पुरानी ट्रेडिशन को सिर्फ इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि वो पुरानी है? है पूजा,
0: मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है हमें।
1: तो यानी कि कल्चर को प्रिजर्व करने का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज को बिना सोचे एक्सेप्ट कर लें। हमें अपनी संस्कृति की अच्छी चीजों को समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और जो चीजें समय के साथ बदलने की जरूरत रखती है उन्हें बदलने से भी डरना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि कल्चर कोई फ्रोजन पिक्चर नहीं है। समाज बदलता है तो टेक्नोलॉजी भी बदलती है, लोगों की लाइफ स्टाइल बदलती है, तो कल्चर भी अपने आप कहीं ना कहीं बदल ही जाता है। और जब युवा उसमें अपनी क्रिएटिविटी जोड़ देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कहीं ना कहीं उसका दायरा जो सीमित था ना, वो हट जाता है और बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है।
1: और मुझे ऐसा लगता है ना पूजा, कि आज के युवाओं के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, उनके पास भाई रीच भी है।
0: बिल्कुल,
1: कि कल्चर को प्रमोट करते समय हमें सिर्फ ट्रेंड के लिए गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, उसके पीछे की कहानी, उसकी हिस्ट्री, उसका मीनिंग, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी कल्चर कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा बल्कि एजुकेशन भी बनेगा। और यही तो हमारी युवा शक्ति कर सकती है। हम अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट ना करें, उनके पीछे की स्टोरीज भी सिर्फ उस स्टोरीज को भी जानना चाहिए, अपने लोकगीत से सुने नहीं बल्कि उन्हें समझें, उन्हें में किस समाज की कहानी छिपी है। वो अपने ट्रेडिशनल फूड को सिर्फ टेस्ट नहीं करना है भाई, बल्कि ये जानना भी है कि उसके पीछे की रीजनल आइडेंटिटी क्या है।
0: बिल्कुल सेजल, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भारत देश है स्पेशली, इतनी सारी भाषाएं हैं हमारे पास, और जो तुमने अभी खाने की बात की है ना, तो मुझे इतने डिफरेंट डिफरेंट डिशेस मेरे सामने ऐसे नजर आ रही है। तो आई थिंक ये सारी चीजें सिर्फ हमारे देश में ही मिल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: और आज के यूथ में स्पेशली ट्रैवलिंग को लेकर बड़ा क्रेज हो गया है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
1: और जब हम किसी चीज़ की कहानी जान जाते हैं ना पूजा, जैसे तुमने अभी कहा इतनी ढेर सारी डिशेस तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गई थी, तो इससे हमारा कनेक्शन और गहरा हो जाता है। नहीं, ट्रैवलिंग की बात हुई तो हम अगर कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं तो उस वहाँ की नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश भी करते हैं, तो इससे हम अपने अपने कल्चर या वहाँ के कल्चर को और हमारा उनसे अच्छा बॉन्ड बन जाता है।
0: जैसे कि मुझे रिसेंटली पता चला था कि जैसे हमारे यहाँ जलेबी दही के साथ खाते हैं, लेकिन बीकानेर में उसे दूध के साथ खाया जाता है।
1: तो ये चीज तुमने जानी वहां जा करके ना, तो इससे हमारा जो इंटरेक्शन था वो और बढ़ गया। और शायद यही लोक संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है कि हमें ये बताती है कि हम कहाँ से आए हैं। और जब हमें पता होता है कि हम कहाँ से आए हैं, तब आगे जाना इसका रास्ता भी थोड़ा और क्लियर हो जाता है। तो मॉडर्न यूथ और लोक संस्कृति एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक हमें फ्यूचर की तरह ले जाता है और दूसरी हमें अपनी रूट्स की याद दिलाता है, और दोनों साथ हों तो जर्नी और भी खूबसूरत हो सकती है।
0: तो अगली बार जब कोई लोकगीत आपको सुनाई दे तो रीजनल फेस्टिवल्स देखे जरूर, और जो भी घर में पुराने ट्रेडिशन अपनाए जा रहे हैं शादी के टाइम पे, कितनी सारी हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, तो उसे जानने की कोशिश जरूर करें। और जो स्टोरी तुमने कही ना सेजल, आई थिंक वो भी समझना में बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और एक बार रुक कर जरूर सोचिएगा, जैसे पूजा ने कहा, कभी कभी पूजा की बात भी मान लेनी चाहिए। तो इसके पीछे कितनी जनरेशन्स की मेमोरीज होंगी, है ना। तो आज की हमारी कन्वर्सेशन से इतना तो समझ आया होगा आपको कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन हो सकता है, प्लेलिस्ट ग्लोबल हो सकती है, लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडर्न हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपनी रूट्स को भूल जाएं। क्योंकि ट्रेंड्स तो बदलते रहेंगे लेकिन आइडेंटिटी वही।

खूबसूरत है जिसकी रूट्स मजबूत हो। तो मॉडर्न बनिए, नए ट्रेंड्स एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन अपने कल्चर को आउटडेटेड समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शायद हमारी सबसे पुरानी स्टोरीज में ही हमारे फ्यूचर की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हो।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: दोस्तों, हर बात का एक मतलब होता है, और हर मतलब तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और फिर बात करना। तो इसी बात से बात तक के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त है एक नए सेगमेंट का, जो कि है वार्ता, और इसका शीर्षक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारा गौरव, और वार्ताकार है खुशी राज। तो आइए सुनते हैं उनकी ये वार्ता।
4: किसी देश को पहचानने के लिए उसका नाम जानना पर्याप्त नहीं होता, उस देश की आत्मा को पहचानना पड़ता है, और भारत की आत्मा उसके राष्ट्रीय प्रतीकों में दिखाई देती है। भारत एक ऐसा देश है जिसे केवल सीमाओं से नहीं समझा जा सकता। यह वह भूमि है जहाँ सभ्यताएं जन्मी हैं, जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ अलग अलग वेशभूषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, फिर भी इनके बीच एक ऐसी डोर है जो सबको एक साथ बांधती है। उस डोर का नाम है भारत की राष्ट्रीय पहचान। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इसी पहचान के दृश्य रूप हैं। वे केवल सरकारी दस्तावेजों, विद्यालयों, कार्यालयों या राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं हैं। वे हमारी स्मृतियों में हैं, हमारी भावनाओं में हैं, और हमारे इतिहास की उन कहानियों में हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान से लिखा है। 15 अगस्त को जब तिरंगा आकाश में लहराता है तो वह केवल 3 रंगों का एक ध्वज नहीं होता, वह सभी देशवासियों के सपनों का प्रतीक होता है जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। केसरिया से त्याग, सफेद से शांति व हरे रंग से समृद्धि के बीच अशोक चक्र निरंतर गति और प्रगति का प्रतीक है। रंग 3 है मगर कहानी 1000 है। हर रंग में छिपा भारत का प्यार है। हवा में जब लहराए तिरंगा हमारा, समझो इसमें धड़कता हिंदुस्तान सारा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में हमारा राजकीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ विशेष स्थान रखता है। 4 सिंह पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं, मानो चारों दिशाओं में भारत की शक्ति, सजगता और आत्मविश्वास का संदेश दे रहे हों। इसके नीचे का संकेत है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। यही भारत की सभ्यता का मूल विचार रहा है। सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं बल्कि जीने का मूल्य है। राष्ट्र का निर्माण केवल बड़ी बड़ी घोषणाओं से नहीं होता, उसका निर्माण उन छोटे छोटे निर्णयों से होता है जो हम निस्वार्थ भाव से लेने में सफल रहते हैं। ईमानदारी से काम करना, किसी कमजोर का अधिकार न छीनना, अपने कर्तव्य से पीछे न हटना, यह सभी सत्यमेव जयते को जीवन में उतारने के तरीके हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक न सिर्फ हमें गौरवान्वित करते बल्कि यह कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपते हैं। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भारत की एकता की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। राष्ट्रगान के दौरान हमारी व्यक्तिगत पहचान पीछे छूट जाती है। उस समय ना कोई उत्तर भारतीय होता है, ना दक्षिण भारतीय, ना ही कोई बंगाली, पंजाबी या तमिल। उस क्षण सभी लोग खुद को बस एक गर्वित भारतीय समझते हैं। हमारी विविधता ही हमारी पहचान है। अलग अलग भाषाओं में बोलते हुए भी एक दूसरे को समझना, अलग अलग त्यौहार मनाते हुए भी एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, और विभिन्न परंपराओं के होते हुए भी एक ही राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना ही हमारे भारत को और देशों से अलग बनाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। वंदे मातरम केवल 2 शब्द नहीं बल्कि उस भूमि को नमन है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें अन्न दिया, जिसने हमें

हमारी सभ्यताओं को पाला और जिसकी मिट्टी में हमारे पूर्वजों की स्मृतियां समाई हुई हैं। देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर जाकर लड़ना नहीं, आज स्वतंत्र भारत हमसे कुछ और मांगता है, ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन, संवेदनशीलता और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ भारत की शक्ति, साहस और प्राकृतिक संपदा का प्रतीक है। बाघ हमें केवल शक्ति का अर्थ नहीं बताता, वह हमें प्रकृति की ओर हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है। यदि जंगल ही सुरक्षित नहीं रह जाएंगे, तो केवल किसी पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से हमारा गौरव सुरक्षित नहीं रह सकता। इसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सौंदर्य, गरिमा और प्रकृति की जीवंतता का प्रतीक। बारिश की पहली फुहार और मोर का नृत्य भारतीय जीवन की उन सुंदर स्मृतियों में से है जिन्हें किसी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल महसूस किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल की सबसे बड़ी विशेषता उसके रंग या आकार में नहीं, बल्कि उसके जीवन के संदेश में है। वह खिलता जरूर कीचड़ में है, लेकिन अपनी सुंदरता को जरा भी कीचड़ के भाव से प्रभावित नहीं होने देता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मनुष्य अपने चरित्र और गरिमा को फिर भी बरकरार रख सकता है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसकी विशेषता केवल उसके आकार में नहीं, बल्कि उन जड़ों में है जो धरती के भीतर भारतीय सभ्यताओं की तरह लगातार विस्तार हो रही हैं। हमारा राष्ट्रीय फल आम है। आम का नाम सुनते ही भारत का एक अलग ही चेहरा सामने आ जाता है। गर्मियों की दोपहर, पेड़ों की छांव और बचपन की अनगिनत यादें, यही हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की पहचान है। यह केवल बड़े बड़े आदर्शों की बात नहीं करते, यह साधारण जीवन में भी उत्सुकता भर देते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमें यह भी बताते हैं कि भारत केवल एक साधारण देश नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की एक लंबी परंपरा वाला देश है। हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक और भावपूर्ण प्रतीक है गंगा। भारतीय सभ्यता के लंबे प्रवाह की साक्षी रही गंगा केवल जलधारा नहीं है, वह इतिहास, संस्कृति, आस्था और स्मृति की भी चिन्ह है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि भारत केवल अतीत की उपलब्धियों का संग्रहालय नहीं है, बल्कि एक जीवित यात्रा है जिसमें हर पीढ़ी का अपना एक अध्याय जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारा गौरव का अर्थ केवल यह याद कर लेना नहीं कि हमारा राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, बल्कि इसका सही अर्थ उन प्रतीकों में छिपे संदेश में है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की सबसे बड़ी खासियत है कि यह सिर्फ ये नहीं बताते कि हम कौन हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली कोई आम वस्तु नहीं है। इसके पीछे अनगिनत लोगों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की एक लंबी कहानी छिपी है। आज हमारी जिम्मेदारी केवल स्वतंत्रता का उत्सव मनाने की नहीं, बल्कि उसे सार्थक बनाने की है। हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र केवल सरकारों से नहीं, बल्कि उस देश के जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इसीलिए हमारा गौरव हैं क्योंकि वे हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, हमारे वर्तमान का आईना दिखाते हैं और साथ ही हमारे भविष्य की दिशा भी निर्धारित करते हैं। किसी देश की सबसे विलक्षण बात शायद यह नहीं होती कि उसके पास क्या क्या है, बल्कि यह है कि वह अपने भीतर कितना कुछ संजो कर रख सकता है। भारत को ही देखिए, यहाँ हजारों वर्ष की स्मृति वर्तमान के साथ एक ही सांस में चलती है। कोई बहुत पुराना शब्द आज भी किसी घर की बातचीत में जीवित है, कोई लोक धुन आज भी किसी गांव की संध्या में सुनाई देती है। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भारत के स्मृति बीज हैं, और बीज भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, उसके भीतर पूरा वृक्ष खड़ा करने की क्षमता अवश्य होती है। राष्ट्रीय प्रतीक मेरे लिए किसी सूची के अंतिम बिंदु नहीं है, वे उस अनंत वाक्य के वह शब्द हैं जिनके बाद भारत की कहानी रुकती नहीं, क्योंकि भारत कोई पूर्ण विराम नहीं है, वह एक अल्प विराम है, एक ऐसा अल्प विराम जिसके बाद हर पीढ़ी अपनी अगली पंक्ति लिखती है। और शायद हमारी सबसे बड़ी पहचान तब होगी जब आने वाली पीढ़ी उस अगली पंक्ति को पढ़े और उसमें एक निश्चित समय नहीं बल्कि पूरे भारत का एहसास देख सके। इसी के साथ हम अंत करना चाहेंगे।

0: कुछ पंक्तियों से, ना रंगों से, ना सीमाओं से, ना केवल इतिहास की कहानी से, भारत की पहचान बनेगी हमारे कर्मों की रवानी से। तिरंगा तब सच में ऊंचा होगा जब ऊंचा होगा इंसान, सत्य तभी सच्चा होगा जब सच्चा होगा हिंदुस्तान। प्रतीक हमारे गौरव हैं, गौरव हमारी पहचान, इनकी गरिमा में बसता है मेरा भारत, मेरा अभिमान।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा गौरव, और वार्ताकार थी खुशी राज।
2: हमें उम्मीद है कि ये वार्ता आपको पसंद आएगी, और हम अपने कार्यक्रम में इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को शामिल करते हैं ताकि आपको भी पसंद आए। फिलहाल अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने अगले खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर। श्रोताओं, जब जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA और काकोरी क्रांति की चर्चा होती है, तब तब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान के साथ एक नाम स्वतः ही बुलंद आवाज में आ जाता है। वो नाम है ठाकुर रोशन सिंह का।
1: ठाकुर रोशन सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान और अमर क्रांतिकारी थे। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे और काकोरी कांड के प्रमुख नायकों में गिने जाते थे। आपको बता दें कि उनका जन्म 22 जनवरी 1892 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नबादा गांव में हुआ था।
0: बात अगर उनके क्रांतिकारी जीवन सफर की करें तो 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। आगे चलकर वे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए।
1: और 9 अगस्त 1925 को जब HRA के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजानों से भरी ट्रेन को लूटा तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की।
0: हालांकि रोशन सिंह सीधे तौर पर काकोरी ट्रेन डकैती की जगह पर मौजूद नहीं थे, फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें बमरौली डकैती और संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल कर लिया।
1: ब्रिटिश अदालत ने दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, की मलका जेल यानी नैनी जेल में उन्हें फांसी दी गई।
0: आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें ठाकुर रोशन सिंह जैसे अमूल्य बलिदानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
1: तो ये थे हमारे आज के प्रेरणा पुंज ठाकुर रोशन सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम के लास्ट में आपसे पूछते हैं प्रश्न और उसका जवाब हम अपने प्रोग्राम के अगले दिन शामिल करते हैं। तो 14 अगस्त का प्रश्न था, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका सही जवाब है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1 जुलाई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी।
0: और बात करें अगर आज के सवाल की, तो आज का हमारा सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? आप इसका सही जवाब हमारे नंबर पर भेज सकते हैं सेजल
1: 8004926250 पर। तो पूजा, अब भाई घड़ी भी कह रही है कि पूजा और सेजल के जाने का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक आखिरी गीत और।

0: तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें मेल ज़रूर कीजिएगा हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvniald@gmail.com। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल
1: और मुझे यानी पूजा यादव को
0: दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
1: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण

0: कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप हैं आकाशवाणी प्रयागराज के साथ। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रम के बारे में जानकारी। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, इसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे जयती सिंह की वार्ता, कृषि के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर। इसके अलावा आपको सुनवाएंगे एक बातचीत वर्षा ऋतु में मछलियों की देखभाल, इसमें अशोक कुमार सिंह से मनोज कुमार सिंह ने बातचीत करी है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में गीत और भजन। श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है, समय होगा रात 8 बजे। 8:30 पर आज इतवार है, इसमें सुनिएगा नरेश मिश्र की लिखी झलकी

और 9:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम कहकशा। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अतुल पावने से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत, नींबू वर्गीय पौधों में होने वाले प्रमुख रोग और उनका निदान। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा की वार्ता होगी, हड्डियों में होने वाले सामान्य रोग। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कमल कुमार का बांसुरी वादन। दिन में 12:15 पर पंडित सी आर व्यास का गायन और शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर मधुसूदन भावे का गायन। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज में सुनिएगा आनंद भूषण सरन, चीफ जनरल मैनेजर DFCCIL से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत, गायक कलाकार होंगे खोखा मिर्जापुरी। शाम 5:00 बच्चों का कार्यक्रम होगा नन्ही दुनिया, इसमें बच्चे जानेंगे सांपों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर शिव प्रताप से लोक भाषा कविता पाठ सुनेंगे हमारे ग्रामीण भाई। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर श्याम मिश्र की वार्ता होगी, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष की यात्रा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनवाएंगे आपको गार्गी द्विवेदी के स्वर में भजन और

गीत। 8:30 पर होगा कार्यक्रम कानून और हम। इसमें अधिवक्ता अतुल कुमार यादव की वार्ता होगी डिजिटल युग में निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनते हैं आप 9:30 पर। तो ये थी जानकारी हमारे इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों की।

0: अभी आपने सुना देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोई हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। पारुल, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये दिनांक 26 जून 2026 से। नारा, मंजनपुर कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें अजय चौरसिया से, जिनका मोबाइल नंबर है 7991686128। नंबर एक बार आपको फिर से बता देते हैं 7991686128। जूली, जिनकी उम्र है 25 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। ये दिनांक 29 जून 2026 से। बदलेपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें नथुलाल से, जिनका मोबाइल नंबर है 8810923091। नथुलाल, जिनकी उम्र है 75 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, इकहरा बदन, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये दिनांक 29 जून 2026 से। शाहपुर टिकरी कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें चिंतामणि से, इनका मोबाइल नंबर है 6391832831। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 6391832831। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ। धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्राप्तानि तावत् पञ्चपञ्चाशदधिकचतुश्शत धावनाङ्कान् विरच्य क्रीडन्नासीत्। पूर्वदिने प्रचण्डवृष्ट्या प्रथमद्वयं सत्रं नष्टम् अभवत्, येन भारतं मध्याह्नभोजनसमये रात्रौ क्रीडकद्वयस्य हानौ 88-200 धावनाङ्कान् अरचयत्। श्रृङ्खलायाः द्वितीया अन्तिमा च निकषक्रीडा आगस्त मासस्य 23 दिनाङ्के कोलम्बो नगरे आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

0: कहो बोला भैया, क्या हाल है?
1: भैया देखा हाल चाल तो एकदम बढ़िया बटे। और आप बतावा का होता है खेती किसानी का हाल चाल बा।
0: अब भैया हो खेती किसानी के तो ये हाल है कि जौन फसल है मुख्यतः खरीफ वाली जौन फसल है सबसे महत्वपूर्ण फसल होता है।
1: बिल्कुल
0: हम तो
1: भैया।
0: ये कहें कि रबी और खरीफ दोनों में मिला के सबसे महत्वपूर्ण फसल होता है धान। और धान का इस समय चल रहा बाटे भैया, सबके खेते में रोपाई हो गई बाटे, पहले पानी भी लग गया बाटे। अब ज़रूरत यह है कि जौन ओकर सिंचाई व्यवस्था आगे कहो ओकरे जौन प्रबंधन पर ध्यान देवे के बाद बा।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: साथे साथे चूंकि पानी का ही फसल है तो भोला भाई खेते में खरपतवार भी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: खरपतवार का कैसे नियंत्रण किया जाए एकरे बारे में भी किसान भाइयों के सोचे के बात है। तो ज़रूरत ये बात का है कि भाई देखा, अब तो उस समय रहा नहीं कि हाथे से जो है खुरपी से निकाला जाए, बोला जौन कृषि रक्षा केंद्र पर जौन दवाई आवत है खरपतवार नाशी, उसे जाए के किसान भाई वहाँ पता करके और जौन विधि बतावा जात है, क्योंकि कृषि के जानकार लोग हैं, कृषि विशेषज्ञ लोग रहते हैं, ये विषय का जानकार लोग हैं, तो उनसे के बतावे विधि के हिसाब से ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हमारे सभी अपने धान के फसल में खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है।
1: बिल्कुल भैया आप जो ना एकदम सही बात कहें। और खर पतवार में का होत भैया ना, शुरुआत में अगर ओके रोकथाम पे आप विचार कर लिया तो बाद में दिक्कत नहीं बतावत। ए लिए कि जब खर पतवार ज़्यादा हो जाथिन बढ़ जाथिन तो फिर उनका हटावे में अधिक दवा के प्रयोग भी होते और बहुत समस्या भी आवत है। और फिर जो फसल आए उनके विकास पे भी ओके असर पड़े लगते हैं। और साथ ही साथ भैया देखा इस समय का होते कि जो ना कृषि में जो सिंचाई है
0: हाँ
1: ओमें सावधानी भी बरते के समय होते। ए लिए कि हम मौसम के अनुमान तो लगाए नहीं सकित, लेकिन अब फसल में हम पानी दे दिया, पता लगा वर्षा भी हो गया तो अधिक अगर पानी सिंचाई हो गई तो फसल के नुकसान हो के भी डर बना
0: कुछ
1: रहे।
0: फसल तो निश्चित रूप से नुकसान अधिक पानी में गलन का समस्या आ जाता है। जैसे अगर दलहन का बात की जाए तो इस समय जो रहर का पौधा है बहुत बड़ा तो है नहीं, और दूसरी जौन है मक्का, ये दोनों पौधन में गलन बहुत ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से ऊंचाई वाले खेतन में इनकर खेती किसानी की जाते हैं। और ये बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि ये खेत में पानी का जमाव ना हो, जल
1: बिल्कुल
0: भराव
1: भैया।
0: ना हो। जल भराव होवे के स्थिति में जौन है मक्का वो भी भैया
1: खराब हो किसी
0: गलन हो
1: में।
0: जाता है तो पौधा नुकसान हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: ओकरे साथे साथे अगर अरहर है विशेषकर तो अरहर में भी गलन का समस्या आ जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया। देखें हम तो कहे कि बातचीत तो अपने पंचायती में होते यहाँ है, लेकिन आज अपने पंचायती में का का सुनवावा जाए
0: देखा
1: पंच भैया
0: भैया
1: के।
0: सही बात कहा भैया, देखा दुई बातचीत हैं। एक तो जाना कि भाई हर प्रगतिशील किसानी जान भी रहा बाटे कि परंपरागत खेती किसानी के अलावा जौन कृषि विविधीकरण का रूप है, आज समय का मांग भी है, जनसंख्या

0: संख्या का दबाव भी है और किसान भाई इनका खर्चा भी है खेती किसानी में, तो कृषि विविधीकरण का रूप अपनावा जाए, चाहे मौन पालन किया जाए, चाहे मधुमक्खी पालन किया जाए, चाहे भेड़ पालन, बकरी पालन, मछली पालन,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना, पशुधन का बात है। तो वर्षा के ऋतु में ये समय जो चल रहा बाटे में मछलियन के देखभाल कैसे की जाए, ये विषय पर भी एक विस्तार से वार्ता बाटे, ओके सुना जाए, बहुत समसामयिक वार्ता बाटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसर बात आवत है कि कृषि का जौन क्षेत्र है इसमें युवा देखा जाता है तो युवा अक्सर खेती किसानी में उतना
1: दूर भागत है,
0: हाँ उससे दूर भागत है। खेती किसानी भी युवा के खातिर कैसे आकर्षित हो सकत है, कृषि के क्षेत्र में युवा के लिए का अवसर बाटे, ये विषय पर जयत सिंह से अनिल कुमार यादव को भी बात कही भाई बाटे, ओके तो सुना ही जाए। मुला अपने पंचायती के जो परंपरा है कि किसान भाइयों के स्वागत में गीत गौ नहीं होते, तो एक लोकगीत है छेदीलाल और संघाती का, आवाज सुन लीजिए।
1: बिल्कुल भैया।

0: हाँ
1: हाँ
0: भैया
1: भैया देखा कितना बढ़िया कजरी रे बड़ा निकला गए हमार देशवा।
0: बिल्कुल भैया, छेदी लाल और साथी कितना बढ़िया से इतना मधुर जो नहाए कजरी सुनाए। और सावन के महीना में भैया कजरी जब बजे थे तो एकदम मन सुन के हरियर हो जाते।
1: सही कहा भैया। हाँ एक बात बोला भाई रे कि देखा खेती किसानी में जो युवा हैं उनकर भागीदारी कम होत है। आजकल हर व्यक्ति चाहते है कि भैया खेती किसानी में समय और श्रम दोनों ज़्यादा लगत है, तो ऐसा कीन जाए कि कुछ चार पैसा कहीं शहर में चल के कमाया जाए। कहे का मतलब पलायनवादिता भी एक तरह से आ गई बाटे।
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: भैया।
1: अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही बाटे। अब नवाचार के युग में नए कृषि यंत्र आ गए बाटे, खेती किसानी का नवीन पद्धति आ गई बाटे,
0: बिल्कुल
1: इतना
0: बिल्कुल।
1: बढ़िया बेहतरीन हाइब्रिड जोन है बीज आ गए बाटे कि कम समय में बहुत अधिक पैदावार हो जात बाटे।
0: बिल्कुल
1: और
0: भैया।
1: श्रम भी कृषि यंत्रण के कारण से श्रम भी कम लगत है, शासकीय अनुदान भी मिलत है खेती किसानी में, और जरूरत से ज़्यादा आमदनी भी हो जात है। तो ये कारण से धीरे धीरे क्रमशः जाना कि युवा भी कहीं न कहीं अब खेती किसानी की ओर अग्रसर होता है।
0: बिल्कुल
1: अब
0: भैया।
1: विशेषकर अगर और अंदर जाया जाए तो जौन जैविक खेती है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: काहे
0: बिल्कुल।
1: से कि जैविक उत्पाद जौन भी हैं खेती किसानी में उनकर बाजार मूल्य बहुत बढ़िया मिलते हैं।
0: बहुत बढ़िया,
1: तो
0: बहुत
1: बाजार
0: मांग है
1: मूल्य
0: भैया।
1: अगर जौने भी चीज़ का बढ़िया मिले तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर खेती किसानी वाला है तो वही का पैदावार ज़्यादा ली, वही विधि के अपनाई।
0: बिल्कुल भैया।
1: लब्बल हुआ अब ये है भैया कि कृषि के क्षेत्र में हम युवा के खातिर कौन कौन अवसर दिया जाता है, का अवसर हैं, कैसे युवा अपने के खेती किसानी वाले क्षेत्र में
0: जोड़ें।
1: लगा के जुड़ के पैदावार बढ़ा सकत है, खेती किसानी में अपन योगदान दे सकत है, जौने से कि भारत का आत्मनिर्भरता भी बढ़े और भारत कृषि उत्पादन में एक अग्रणी देश और बढ़ जाए। तो
0: बिल्कुल
1: ये
0: भैया।
1: सब बातन के विस्तार से बतावे के खातिर अपने स्टूडियो में जैत सिंह जी आई रहीं, उनसे बात बात कही कह रहे हैं अपने अनिल कुमार यादव भैया। हम तो ये चाहब कि युवा किसान और किसान भाई सबके साथे आवा हमरहु सभे ये बातचीत के सुना जाए और एकर फायदा उठावा जाए।
0: बिल्कुल भैया, सुनवाई दें।
2: देखा भैया, खेती किसानी में पहले जौन पुरानी परंपरा रही है जैसे खेती किसानी किया जात रहा, मुला आज जौन है नई तकनीक है नई जानकारी से खेती किसानी किया जात बे, तो हमरे ग्रामीण युवा जौन हैं अपने खेती किसानी में कौन से तकनीक का उपयोग करें और कैसे खेती किसानी से जुड़े जौन है, आज यही के विषय में जौन है जानकारी देवे थे। हमरे कार्यक्रम में जयत सिंह आए हैं जौन की कृषि विशेषज्ञ सुवाट्स नैनी प्रयागराज में भैया कार्यरत। तो बहनी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे।
3: धन्यवाद।
2: ये बतावें हमारे कि ग्रामीण युवा जौन हैं ये खेती किसानी में कौन कौन सा तकनीक कैसी अपनावें जौन है जौन की खेती किसानी अच्छे तरीके से कर सकते।
3: जी, वो बिल्कुल खेती को बिना छोड़े, उस जैसे कि हम जानते हैं कि

0: ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आते थे लोग,
1: जी
0: बट आजकल युवाओं के लिए बहुत ढेर सारे अवसर हैं। युवा आजकल उद्यमिता का संगम बन चुकी है खेती। यदि युवा खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो ना केवल वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते
1: जी जी जी
0: हैं।
1: देखे में आवत है कि जैसे पहले हल बैल से खेती होत रही है, और धीरे धीरे जौन है खेती किसानी के तौर तरीका भी बदला, नए नए कृषि यंत्र आई गए तो उसे खेती किसानी होए लगा। तो एहमन अब हमार युवा जौन है खेती किसानी से काहे दूर होत हैं, एकरे बारे में थोड़ा सा बतावें।
0: जी, आज युवा खेती से इसलिए दूर हो रहा है क्योंकि उन्हें इसमें कम आय, अधिक मेहनत और अनिश्चित भविष्य दिखाई देता है। छोटी जोत, मौसम की अनिश्चितता, बाजार में उचित मूल्य ना मिलना और आधुनिक तकनीक की सीमित पहुंच भी इसके प्रमुख कारण हैं।
1: जी
0: इसके अलावा शहरी जीवन शैली और नौकरी की आकर्षक संभावनाएं भी युवाओं को खेती से दूर करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज कृषि का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।
1: जी जी खेती के स्वरूप में जैसे कि है, पहले खेती किसानी किया जाता रहा हल बैल से तो वहाँ समय लागत रहा। अब आज जोन है मशीनीकरण के युग आई गए, तो मशीन से खेती होत बे, ट्रैक्टर से है तो कम समय में खेती किया जात बे। तो का हम ये जाने चाहिए थे कि हमारे जोन युवा भाई हैं ये खेती किसानी में इनके करियर का कोनो संभावना बाय?
0: जी हाँ, बिल्कुल, इनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज खेती केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक एग्री स्टार्टअप और उद्यमिता का क्षेत्र बन चुकी है।
1: जी
0: मशरूम उत्पादन, डेयरी, जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, एग्री टेक और डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अनेक अवसर हैं। यदि कोई छात्र कृषि की पढ़ाई करता है तो उसके लिए केवल खेती ही नहीं बल्कि कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, बैंकिंग, एग्री स्टार्टअप जैसे अनेक करियर विकल्प उपलब्ध हैं। यानी आवश्यकता केवल खेती करने की नहीं बल्कि खेती को उद्यम के रूप में देखने की भी है।
1: जी जी जी यानी कि खेती का मतलब है कि उद्यमिता उद्योग से जुड़ा होए के चाहिए। तो ये ग्रामीण उद्यमिता का बाटे एक कैसे हमारे किसान भाई हरे समझें, जो नवयुवक भाई हैं जो उनके समझें, एकरे बारे में बतावें।
0: ग्रामीण उद्यमिता एक बहुत अच्छा विषय है। ग्रामीण उद्यमिता का अर्थ है गांव के स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर

0: इन एग्रीकल्चर,
1: जी
0: यूथ
1: जी
0: मतलब युवा आज का। योजना का उद्देश्य युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना है, उन्हें कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए एक सक्षम बनाना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि उद्यमिता, मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन तथा व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे स्वयं का सफल कृषि उद्यम स्थापित कर सकें।
1: जी, बात आवत है कि कृषि में वैल्यू एडिशन,
0: जी
1: ये वैल्यू एडिशन खेती किसानी में का बाटा है, एकरे बारे में थोड़ा सी जानकारी दें।
0: वैल्यू एडिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे कृषि उत्पादों का मूल्य अधिक गुना बढ़ जाता है।
1: जी,
0: उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, टमाटर से सॉस का बनना, दूध से पनीर और आम से अचार बनाकर किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं।
1: जी,
0: इससे किसानों की आय बढ़ती है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
1: जी, यानी कि खेती किसानी में जो हम किसान भाई हरे उत्पाद अपन करत हैं,
0: जी,
1: तो ओकर फूड प्रोसेसिंग के जरिए जोन है उसे आमदनी बढ़ा सकत हैं।
0: जी उनको और अधिक ही लाभ होगा उससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। ये बात आवत है कि जिसे छोटा किसान हैं, इनके कृषि उद्यमिता ये शुरू कर सकत हैं कि कैसे एक करें जोन है, एकरे बारे में बतावें।
0: जी छोटे किसान भी बिल्कुल उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। छोटे किसान भी कम निवेश में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन और नर्सरी जैसे कृषि उद्यम भी शुरू कर सकते हैं, यदि उन्हें सही प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार की जानकारी मिले तो वे सफल उद्यमी बन सकते हैं। ऐसी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके की
1: जी
0: भी
1: जी
0: बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: जी देखे में आवत है कि जैसे किसान तो अपन उत्पाद कैले हैं,
0: जी
1: मूला उनका एक अच्छी बाजार कहाँ वह बेचें और कैसे बेचें जोन है उनके, कहे से कि अगर अपने उत्पाद करें खेत से तो उनके मूल्य उतना ना मिल पावत, एकरे बदे आजकल जोन डिजिटलीकरण चलत है, एक एक कैसे अपने उत्पाद के वो कहाँ प्रचार प्रसार कर सकते हैं जोने उनका अच्छा मूल्य मिल सके।
0: जी ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। आज के समय में केवल अच्छा उत्पाद तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही ग्राहकों तक पहुंचाना भी उतना महत्वपूर्ण है। डिजिटलीकरण ने किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए यह कार्य पहले से कहीं आसान बना दिया है। मोबाइल आज केवल बातचीत का साधन नहीं, बल्कि एक डिजिटल दुकान यानी कि डिजिटल शॉप की तरह काम करता है। किसान अपने उत्पाद का एक अच्छा फोटो व अच्छा वीडियो बनाकर सीधे संभावित ग्राहकों के भेज सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस से अपनी उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं।
1: जी
0: यदि
1: जी
0: किसान किसी FPO यानी कि सहायता समूह से जुड़े हुए हैं तो वे समूह के माध्यम से बड़े खरीदारों, रिटेल दुकानों, होटलों व प्रोसेसिंग इकाइयों तक भी अपना उत्पाद पहुंचा सकते हैं। तो इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है, ग्राहक बढ़ते हैं व बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं और किसानों को इससे बहुत फायदा होता है।
1: जी जी यानी कि किसान अगर जो ना अपन उत्पाद करत, अगर एका उत्पाद के आप एक प्लेटफार्म दें, एक ऑनलाइन करें,
0: जी
1: तो उनके उत्पाद के अच्छा मूल्य मिल सकत है।
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल बढ़िया बात आप बताएं जो है, और हमारे किसान भाई हरेन के लिए का आप बता सकते हैं ओकरे बारे में बताऊं।
0: आज का युवा सबसे बड़ी ताकत उनकी डिजिटल समझ है।
1: जी जी
0: यदि वे मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रभावी उपयोग करके कृषि उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं तो वह साथ ही साथ मौसम की जानकारी, बाजार भाव, डिजिटल भुगतान और आधुनिक कृषि तकनीक जैसे लाभ उठाकर आय भी बढ़ा सकते हैं।
1: जी,
0: तो केवल आज का युवा न केवल जॉब ढूंढ सकता है बल्कि जॉब दे भी सकता है। वो
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल,
0: लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकता है कि वो उनके अंडर काम करें और उन्हें फायदा मिले। तो
1: जी,
0: अंत में मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि खेती को केवल परंपरा के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान, तकनीक और उद्यमिता पर आधार एक आधुनिक व्यवसाय के रूप में भी देखें।
1: जी
0: आज कृषि में असीम संभावनाएं हैं। यदि नवाचार, डिजिटल तकनीक और सही योजना के साथ आगे बढ़ा जाए तो खेती केवल आजीविका ही नहीं बल्कि सम्मान, रोजगार, आत्मनिर्भरता का भी सशक्त माध्यम बन सकती है।
1: जैसे कि खेती किसानी के साथ साथ जौन भी जुड़ा व्यवसाय हैं, आप बताएं कि मधुमक्खी पालन,
0: जी
1: पशुपालन है,
0: जी
1: तो अगर किसान भाई हरे एके भी करत हैं जौन की आज हमारे

0: नवयुवक जौन है,
1: जी
0: युवा जो है,
1: जी
0: ये अपन खेती से जौन दूर होत हैं, अगर ये सब खेती से जुड़ा व्यवसाय अगर अपनावत हैं
1: जी
0: तो उनका जौन है अतिरिक्त आमदनी होत है। आप बतावत हैं कि जौन है ऐसे और वो दूसरे के भी रोजगार दे सकत हैं, तो बहुत बढ़िया आप जानकारी दीन जौन है कि ग्रामीण युवा खेती में नए अवसर की संभावना का बाट है, एकरे बारे में बहुत बढ़िया आप बताएं, एक बताओ बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
3: हाँ
2: भैया,
3: भैया।
2: देखा जयत सिंह जी कितना बढ़िया बताएं कि कृषि के क्षेत्र में युवाओं के खातिर का अवसर बाँटे,
3: बिल्कुल भैया।
2: और उतने बढ़िया अनिल कुमार यादव फरिया फरिया के बताएं। भैया ये तो सामान्य सी सीधी बात है कि अब चाहे जैविक विधि से खेती की जाए, नवीन नवीन ढंग का कृषि यंत्र आ गए बाटे, श्रम कम लगत है जोने से, और उन्नतशील ढंग का जो बीज हैं कि कम से कम लागत में बेहतरीन पैदावार दे देते हैं,
3: बिल्कुल,
2: और ज़्यादा पैसा मिलत है, समय कम लगत है, श्रम कम लगत है, तो युवा भी धीरे धीरे आकर्षित हो रहा बाटे, धीरे धीरे खेती किसानी की ओर लौट रहा बाटे, और नवाचार का नई तकनीक आ गई बाटे। भैया देखा खेती किसानी में सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रगतिशील किसान है, अगर जागरूक है, अगर वो कुछ अपनी खेती में नया कीन चाहत है, तो युवा से ही ज़्यादा संभव है। युवा लोग ही क्रांति भी करत हैं, और एक नवीन कृषि क्रांति के खातिर युवा जोन वर्ग है ओके खेती किसानी में आवल बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल भैया, आप जोन बात कहें कि खेती किसानी में अब आवत भी यहाँ है, लेकिन अब ये संभावना और अधिक यह है, और युवा के जागरूक हो गए बटे कि हमारा जो खेती किसानी बटे अब जो ना है ये कोनो ऐसा शर्म वाली काम ना टे कि आप जो ना है का करबे तो कोनो हमें शर्म वहाँ कोनो बात के,
2: खेती किसानी
3: बहुत ही आत्मसम्मान की चीज अटे, कहूँ ना कहूँ जो ये मानसिकता रही उसी अब युवा निकला था है, और बहुत सारे युवा अपने आसपास हम लोग देखी थी पंचायती में कि देखा खेती किसानी काम कराता है करावत है, और खेती किसानी के साथ साथ जो कृषि व्यवसाय यहाँ उहू के भी जो ना है करता है बढ़ चढ़ के, तो इस समय तो जैसे डेयरी वाला भी कार्य है बहुत सारे युवा साथी लोग करता है।
2: हाँ तो, सही कहा, ये कृषि विविधीकरण का जो रूप बाटे कि चाहे डेयरी व्यवसाय हो, चाहे जाना कि मुर्गी पालन हो, बत्तख पालन हो, भेड़ पालन हो, बकरी पालन हो, सुकर पालन हो, या मधुमक्खी पालन हो, ये सब कृषि विविधीकरण का रूप है, और ये जाना भोला भाई की अपन सरकार भी विशेष ध्यान देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, और जौन भी युवा किसान भाई या कोनो भी किसान भाई ये सब क्षेत्र में आवा चाहते हैं उनके खातिर बहुत लाभकारी योजना है, अपार संभावना है। हाँ, जरूरत ये बात का है कि चूंकि कृषि विविधीकरण का ही रूप ऐसा है कि प्रशिक्षण प्राप्त किसान अगर ये सब कुछ काम किया चाहते हैं तो कि आसानी रहे, ओकर नुकसान कम से कम होए, ओके फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होए, तो ये सब के चीज बीच में नवीन जो युवा किसान भाई हैं उनसे अरदास यह है कि अनायास गांव से पलायन न करें, अगर खेती किसानी है तो कृषि के क्षेत्र में उनके अपरंपार संभावना है, अपरंपार अवसर हैं, ओकर वो अनुभव लें, ओके अवसर में अपन भागीदारी करें, सरकार उनके खातिर अनुदानित राशि भी देती है, ओकर भी फायदा उठावें, पढ़ा लिखा लोग आई हैं तो निश्चित रूप से खेती किसानी में श्रम कम लगी, लागत कम लगी, और पैदावार और लाभ दोनों अधिक से अधिक मिली, जौने के कारण से अपन देश भी आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हुए, और तरह तरह के जैसे बात हुई आजकल देखा अपन सरकार भी मोटे अनाज के ऊपर ध्यान देते, जौन चिकित्सक लोग हैं वो लोग भी मानव शरीर के खातिर बतावत हैं कि
3: मोटा
2: अनाज बहुत स्वास्थ्य
3: अधिक उपयोगी है
2: तो
3: के लिए।
2: वो सबके खातिर भी युवा किसानन के खातिर किसे ये अरदास है कि भैया ये सबके बारे में जानें, इनकर खेती किसानी करें, और जहाँ तक हो सके कि अब तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई बाटे कि जैविक खाद का अपने खेती किसानी में प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरक जो है उसका प्रयोग नगण्य रहे या अति अल्प रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे उपज का दाम भी अधिक मिलता है जौन उपज खाली खाली जैविक खाद से होते हैं, जैविक खाद है।

0: है, केचुआ खाद है, हरी खाद है, ये सब के मिला के जैविक खाद बोला जाता है। तो किसान भाई, नवीन किसान भाई, जो युवा किसान भाई हैं, ये सब के पढ़ के समझ के अपने खेती में अपन अनुभव लगावें, जो से कि एक कम से कम एक तबका के एक वर्ग के शुद्ध
1: अनाज
0: उपज अनाज मिल सके, मोटा अनाज मिल सके, जोने से कि भारत का युवा वर्ग अगर स्वस्थ रहे तो निश्चित रूप से जाना कि अपन भारत भी स्वस्थ है, समृद्ध है और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बट बात होते रहे, भोला भाई देखा कि कृषि विविधीकरण की बात आई ना, तो हमारे सभी मौन पालन की बताया गया, बकरी पालन, भेड़ पालन, पशु पालन बताया गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी कृषि व्यवसाय है वो है भैया मछली पालन।
1: बिल्कुल,
0: मछली पालन में थोड़ी सी सावधानी का जरूरत है। मत्स्य पालकन भाइयों से ये अरदास है, ये निवेदन है कि जोन मछली विभाग में जाए के जितना प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण ले लें। अगर नवीन मछली पालक आवल चाहते हैं तो उनके खातिर तो और जरूरी है भाई, वो सबका प्रशिक्षण ले लें, ये जानकारी प्राप्त कर लें कि कहाँ जीरा मिलत है, उनका बढ़वार कैसे होते है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ विदेशी प्रजाति का मछली है, कुछ देसी प्रजाति का मछली है, विदेशी प्रजाति के मछलियन का बढ़वार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से होता है, देसी प्रजाति के मछलियन का बढ़वार उनके तुलना में कम होता है। तो अगर एक तालाब में दोनों मछली डाल गई हैं तो स्थिति ये होती है कि देसी प्रजाति का मछली लुप्त हो जाते हैं, विदेशी प्रजाति का बड़ी मछली जो मांसाहारी मछली हैं वो इनके खा जाते हैं। तो ये सब बेसिक जानकारी है, इनका जानकारी लेके अगर मछली पालन किया जाए तो निश्चित रूप से फायदेमंद है। अब आवत बात की बरसात में, बरसात में बढ़वार बहुत अधिक होता है मछलियन का, और बरसात में तरह तरह का गंदा पानी भी
1: इकट्ठा हो जाता
0: है। बरसात में मछली व्यवसाय करे वाले जौन भी भैया हैं, मछली पालन करे वाले जौन भी भैया आ रहे हैं, वो अपने मछली के जीरा से लेके बढ़वार तक कैसे देखभाल करें, एकर जानकारी लेवल बहुत जरूरी है। तो यही विषय पर अपने स्टूडियो में अशोक कुमार सिंह भैया आए रहे हैं और उनसे बात बत कही मनोज कुमार सिंह का भाई रहे। आवा हम सभी मछली पालकन भाइयों के साथे साथे ये विषय का भी जानकारी लीन जाए।
1: बिल्कुल भैया, वर्षा ऋतु में मछलियों की देखभाल।
2: भैया खेती किसानी के अलावा आज के जित किसान हैं भैया प्रगतिशील हैं और कुछ ऐसा भी काम कृषि विविधीकरण के अंतर्गत अपनावत हैं जोने से कि उनके कुछ नगद आमदनी होके, और कृषि विविधीकरण में अगर देखा जाए तो मछली पालन आज के समय में एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसे काफी लाभ होता है। लेकिन ये लाभ तभी हो पाई जब ओकर समय समय से सही ढंग से देखरेख किया जाए, ओमन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावा जाए। विशेष कहके ये वर्षा ऋतु चला था और इस समय मछली का देखभाल को ढंग से करें, यह विषय में जानकारी देवे बदे आज अपने बीच आमंत्रित है श्री अशोक कुमार सिंह जी, भैया यह विषय का जानकार हैं। सिंह साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: हम सबसे पहले आपसे ई जाना चाहब कि ई जोन वर्षा ऋतु बाद होने की ये समय जे मत्स्य पालक लोग हैं उनके अपने मछलियन का देखभाल कौन ढंग से करे के चाहिए।
3: मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हमारे किसान भाई वर्षा ऋतु में मछलियों की देखभाल में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तालाब में बंधे जो टूटे फूटे हैं उनकी मरम्मत बहुत जरूरी है, मरम्मत करा लें ताकि बाहर से जो पानी आए वो पानी बाहर से नाली के रास्ते से आए, और नाली के रास्ते में आप जाली का प्रयोग जरूर करें, जाली लगवा दें, और वो जाली जो है जो आप मकान बनवाते हैं और बालू जो चालते हैं उस तरह की महीन जाली हो
2: जी जी,
3: ताकि उसमें जो है वो अवांछनीय मछली तालाब के अंदर ना आ सके।
2: एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अवांछनीय मछली का बात किए, ऐसा मछली जन का चाहत ना है, जोनी की हम चाहत ना ही पालन हम कुछ और मछली का किए हैं और कुछ और मछलियों मना गए, तो ऐसे का नुकसान पहुंचाता है, का हानि होती
3: है? किसान भाई आप 6 प्रजाति की मछली का पालन करते हैं, सामान्यतः 6 प्रजातियां पाली जाती हैं, रोहू, भाकुर, नयन, ये देशी प्रजाति की 3 मछलियां हैं, और 3 मछली विदेशी प्रजाति की, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। जो 5 प्रजाति की मछली है, रोहू, भाकुर, नयन, देसी प्रजाति की, और 2 कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये इनका एक ही चारा है जिसमें रासायनिक खाद आप NPK और गोबर की खाद तालाब में डालते हैं।
2: अच्छा अच्छा।
3: इसके अलावा पूरक आहार के रूप में ऊपर से चावल की पालिस और सरसों की खली अधिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए डाली जाती है
2: जी।
3: अब इसमें जो है यदि तालाब में पानी वर्षा ऋतु में आता है और आप नियंत्रित उसको नहीं करेंगे तो अवांछनीय मछली ऐसी आ जाती है।

0: है, जो कुछ मछली ऐसी होती है जो इनके चारे को खा जाती है, जो ये मछलियाँ पाली गई मछलियाँ जो आप चारे के रूप में लेती हैं, जो चारा आप डालते हैं प्लैंकटन बनता है उसको, कुछ मछलियाँ ऐसी अवांछनीय हैं जो इनको खा जाती
1: खाए
0: हैं,
1: जाते हैं जी।
0: और कुछ मछलियाँ अवांछनीय ऐसी हैं जो आप मछली पाले हुए हैं उनको ही खा जाते। तो जो अवांछनीय मछली जो इनके चारे को खाती हैं, जैसे आपने डाला गोबर डाला, आपने जो है NPK डाला, और आपने पालिस और खली डाला, और इससे चारा बन के प्लैंकटन तैयार हुआ जो इन
1: जी।
0: मछलियों का भोज्य पदार्थ है। अब इन मछलियों के भोज्य पदार्थ को जो छोटी मछलियाँ जो अवांछनीय हैं पानी में बह के जो आती हैं, जिसमें रैया है, बाटा है, चलवा है, पुठिया है, टेंगन है, ये इनको जो है चारे को इनके खा जाती हैं।
1: जी
0: अब इनके चारे को जब खा जाएंगी तो आप जो चारा डालते हैं प्लैंकटन जो बनता है इन मछलियों को नहीं मिलेगा, तो इनकी बढ़वा रुक जाएगी और ये बढ़ेंगी नहीं। दूसरी मछली अवांछनीय मछली ऐसी है जो इनको ही खाती है, उसमें सौर है, पढ़िन है, टेंगन है, मांगुर है, ये इनको ही खा जाती हैं। अब धीरे धीरे ये होता है कि बरसात में आप ध्यान नहीं देंगे वो पानी आ जाएगा, अवांछनीय
1: जी
0: मछली आ जाएगी, तो धीरे धीरे आपके तालाब की मछली ही खत्म हो जाती है। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि तालाब में जाल चला करके हर 20 दिन बाद एक बार जाल चला करके जरूर मछली चेक करें कि हाँ आपके मछली की स्थिति क्या है, उसमें अवांछनीय मछली तो नहीं आई है, दोनों तरह की मछलियां, ताकि उसकी सफाई हो सके और आपके तालाब में चारे की मात्रा से जानकारी हो सके, आपके तालाब के पाली गई मछलियों की बढ़वार की जानकारी हो सके, तो
1: जी।
0: ये जरूर करना चाहिए।
1: मतलब भैया देखें, दोहरा नुकसान है इससे। पहली बात तो जौन पोषक तत्व तो डाला जाता है अपने पाली गई मछली बदे ओके खा जाते हैं अवांछनीय मछली, और
0: जी
1: साथ साथ कुछ अवांछनीय मछली दूसरे टाइप का ऐसा है कि जो उनकी मछली के ही खा
0: खा
1: जाते हैं,
0: जाती हैं।
1: तो निश्चित रूप से ही ध्यान देवे के चाहिए। आप कहें जैसे कि बीच बीच में उमन जो है अगर जाल चला दे तो ऐसी स्थिति पता चलता है, तो अगर मान लें कि जाल में अवांछनीय मछली आवत है तो
0: जी
1: क्या करे चाहिए ओकरे साथ?
0: जाल में अवांछनीय मछली यदि आ रही है तो पहला काम ये करना चाहिए कि यदि आप उसमें तालाब में बिक्री योग्य मछलियां आपके में हो गई हैं तो उन मछलियों को निकाल करके और उसकी बिक्री कर दें, और पुनः उसमें पानी निकाल करके तालाब को बिल्कुल सूखा करें और फिर से तालाब की तैयारी करके पानी भर के उसमें मछली डालें।
1: अच्छा। एक चीज़ हम जानना चाहें कि जैसे मछली जो पाली गई हैं अपने तालाब में, तो कहा जो ना कि वर्षा ऋतु में जैसे मछली पाला गया पहले से, तो एमन का मछली का बच्चा डाला जा सकत है, और अगर डाला जा सकत है तो उकर प्रजात का होके के चाहिए?
0: जी, अब 6 प्रजाति की मछली जो पाल रहे हैं, रोहू भाकुर नयन मैंने पहले ही बताया, और 3 विदेशी ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कामन कार्प,
1: जी
0: ये 3 कार्प जो है विदेशी प्रजाति की हैं, तो ये 6 प्रजाति सामान्यतः तालाब में पाली जाती है, और इसका सबसे बढ़िया वैज्ञानिक तरीका मत्स्य पालन का यही है कि 6 प्रजाति पाली जाए,
1: जी
0: क्योंकि ये मछलियों का तालाब में रहने का एक स्तर होता है, सबसे नीचे माने जमीन के तली पे देसी प्रजाति की जो है नयन मछली रहती है और विदेशी प्रजाति की कामन कार्प मछली रहती है,
1: जी जी
0: और बीचली सतह पे आपकी रोहू मछली देसी प्रजाति की रहती है और विदेशी प्रजाति की ग्रास कार्प मछली रहती है, और सबसे ऊपरी सतह पे आपकी देसी प्रजाति की भाकुर मछली जिसको कतला भी कहते हैं और सिल्वर कार्प रहती है विदेशी प्रजाति की मछली। तो आप तालाब में जो भी नीचे जैसे अपने गोबर की खाद और NPK
1: जी
0: जो मैंने बताया है, वो चूंकि निचली सतह पे धीरे धीरे जब ऊपर डालते हैं तो नीचे जाके जम जाती है और नीचे से वो प्लैंकटन बनाती है, और जो ऊपर से आप पूरक आहार जैसे राइस सरसों की खली और पालिस देते हैं तो वो ऊपर से देते हैं तो वो धीरे धीरे प्लैंकटन ऊपर से बनाते हुए नीचे जाती है,
1: जी
0: तो इस तरह से नीचे से भी उसको भोज्य पदार्थ प्लैंकटन मिल रहा है और ऊपर से भी उसको भोज्य पदार्थ प्लैंकटन मिल रहा है, तो पूरे तालाब की शुद्ध उपयोगिता होती है।
1: अच्छा।
0: अब रही बात मछली के बच्चे, तो ये 6 प्रजाति की इस समय चूंकि वर्षा ऋतु है और मछली के बच्चे मिलने का समय है, और यही 2 महीने 3 महीने मछली के बच्चे मिलते हैं,
1: जी
0: तो आपके तालाब में बड़ी मछली है तो छोटी मछली आप डाल सकते हैं, 6 प्रजाति की मछली आप डाल सकते हैं।
1: अच्छा, एक साथ।
0: हाँ, लेकिन उसमें ये ध्यान दें कि मात्रा अभी तो चूंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे 1 इंच साइज के बच्चे मिलते हैं, तो आप अभी तो मात्रा ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां बरसात बीत जाए तो जरूर जाल चला के देख लें कि आपके तालाब में मछली की मात्रा

0: ज्यादा तो नहीं हो गई है, और यदि ज्यादा हो गई है तो बड़ी मछलियों को तालाब से निकाल के उसकी बिक्री कर दें,
1: अच्छा,
0: ताकि ताकि मछलियों की बढ़वार ज्यादा होने पर रुक ना जाए, मछलियां और कम हो जाएं तो बढ़वार अच्छी हो।
1: भैया जैसे वर्षा ऋतु का जब बात होते हैं तो का तालाब में जो पाली गई मछली ने तो के और भी ये ऋतु में ये मौसम में कोनो तरीके से नुकसान होता है या नुकसान होने की संभावना रहता है?
0: बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी। बरसात का जब पानी आता है तालाब में, या नहर का पानी जैसे गुलाबे से लोग लेते हैं तालाब में, तो उसमें पानी जब आता है तो गंदा पानी हो जाता है तालाब का,
1: जी
0: जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। तालाब में घुलित ऑक्सीजन मछलियां सांस के रूप में लेती हैं। जो तालाब के पानी में ऑक्सीजन घुला होता है वो ये मछलियां सांस के रूप में लेती हैं। इसीलिए मछलियों को आप तालाब से बाहर निकाल दीजिए तो वो मर जाती हैं धीरे धीरे।
1: जी जी जी
0: और हम लोग मानव जो है वो बाहर की ऑक्सीजन लेता है, वो पानी में जाता है तो वो मर जाता है। तो इसलिए जो है, जब आप ऑक्सीजन की कमी होगी तो मछलियां धीरे धीरे बेहोश होगी, ऑक्सीजन नहीं पाएंगी, और धीरे धीरे वो बेहोश होकर के किनारे किनारे तड़पेंगी, और तड़प करके जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगी।
1: जी
0: तो इसके लिए चूने का प्रयोग, हमारे किसान भाई चूने का प्रयोग बरसात में जरूर करें, और 1 हेक्टेयर में 200 किलोग्राम चूना, एक एक महीने के अंतराल पर 200 किलोग्राम चूना अवश्य बरसात के समय
1: मतलब
0: में
1: बड़ के
0: दें।
1: 4 बीघा का अगर तालाब है तो मन
0: दो
1: 2 क्विंटल 200 किलो।
0: 200 किलोग्राम चूना दें। इस चूने से ये होगा कि तालाब के पानी को चूना साफ करता है, और ऑक्सीजन जो तालाब में घुलित ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को बढ़ाता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा जैसे मान लीजिए बरसात के पानी आता है, ये आता है, तो हो सकता है कि कुछ रोग भी लगने की संभावना बड़ी मछलियों में होती है। इसीलिए जाल चलाने की बार बार बात कहते हैं कि जाल जरूर चला के देखें, ताकि आपकी मछली में रोग तो नहीं पकड़ रहा है, या मछली कम तो नहीं हो रही है, तो उससे ज्ञात हो जाएगा। यदि मछलियों में तनिक भी रोग की संभावना आपको देखने में
1: कहीं कुछ
0: मिल रही
1: रंग
0: है,
1: धब्बा अगर कुछ दिखाई
0: हाँ,
1: देता है।
0: तो असामान्यतः ये होता है कि जैसे मछली की चकत्ते, लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं शरीर
1: हाँ
0: पे,
1: जी
0: और धीरे धीरे उसमें घाव होता है।

0: है।
1: तो असामान्यता ये होता है कि जैसे मछली की चकत्ते, लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं शरीर
0: हाँ
1: पे,
0: जी
1: और धीरे धीरे उसमें घाव होता है, कभी कभी पूंछ सड़ने लगती है, कभी कभी शरीर फूल जाती है। तो इस तरह से एक ये डिजीज है, एक बीमारी है, जिसको देसी भाषा में अल्सर कहते हैं, लेकिन इसको जो है वो अल्सरेटिव सिंड्रोम डिजीज इसको कहते हैं।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: सामान्यतः यदि यदि ये बीमारी लग रही है तो आप चूने का प्रयोग इसीलिए बताया गया, तो जो 200 ग्राम किलोग्राम चूना आप दे रहे हैं वो 1 हेक्टेयर में 375 किलोग्राम चूना आप डालें, और इसको 1 महीने बाद 375 किलोग्राम चूना एक बार और डालें, यदि रोग की मात्रा आपको दिख रही है तो।
0: अच्छा।
1: इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा मत्स्य पालन भाइयों को। और इसके अलावा आप सीफा, सेंट्रल फिशरीज ने एक प्रोडक्ट किया है सीफेक्स,
0: अच्छा।
1: वो आप 1000 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके पूरे तालाब में छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से आप निजात पा जाएंगे।
0: अच्छा। भैया श्री अशोक कुमार सिंह जी आप आएं, और विशेष कही के वर्षा ऋतु में मछलियन का देखभाल कोने ढंग से करें, कोने कोने बात का सावधानी रखें, ये विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। निश्चित रूप से मत्स्य पालक भैया एक सुनिए गुनिए गुन के लाभ उठाइए, आपकी जानकारी देवे दे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
1: हाँ
2: भैया,
1: भैया
2: देखा वर्षा ऋतु में
1: मछलियों
2: मछलियों
1: की
2: की
1: देखभाल
2: देखभाल, बड़ा फरिया के बताया हो कि कौन कौन विदेशी प्रजाति का मछली है, कौन देसी प्रजाति का मछली है, कौन इनके बढ़वार कैसे होते हैं और कौन रोग लगते हैं, और स्वच्छ जल कैसे रखा जाए, उनके ऑक्सीजन भी मिले, बढ़िया भोजन का मिले,
1: बिल्कुल
2: एक बारे में भी
1: बिल्कुल।
2: बहुत बढ़िया बताएं।
1: और
2: के
1: अशोक
2: हिसाब
1: कुमार
2: से
1: सिंह भैया
2: अगर
1: से
2: मछली पालक भैया काम करी है तो निश्चित रूप से अशोक कुमार सिंह भैया का जो मनोज कुमार सिंह से बात बात कही भाई रहे वो समझा कि असली ढंग से सफलीभूत हुए।
1: बिल्कुल भैया।
2: एक बात ये आवत है हो भोला भाई की, देखा बरसा का दिन बाटे और अगर पूरे वर्ष भर का तापमान देखा जाए तो बरखा का दिन कम होते हैं, ठंडक का दिन कम होते हैं और गर्मी का दिन बढ़ रहा बाटे,
1: बिल्कुल
2: कहीं ना कहीं में जाना कि पर्यावरण का असंतुलन भी है
1: बिल्कुल भैया, बहुत।
2: और वृक्षारोपण का कमी भी है।
1: भैया एक बात यह है कि देखें यह मौसम में का होते कि अब बारिश के बाद थोड़ा ठंडक महसूस होने लगा थे, लेकिन अब आजकल हम लोग देखें महसूस करते हो कि बारिश जब तक होती है तो थोड़ा बहुत ठंडक आ है, नहीं तनिक देर के बाद फिर लगा था कि गर्मी और उमस बने लगा थे
2: तो हम कहें भोला भाई समय तो ये बात का ना, बरखा अब है तो तापमान भी अब मनोनुकूल हो जाता है पौधारोपण के खातिर, तो हर किसान भाइयों से ये अरदास है कि जौन भी खाली जमीन है जहाँ गड्ढा बनाए रहा हुए हैं वो अपने, अगर नहीं उनके कुछ समझ में आवत है तो भैया हो वन विभाग में चल जाएं, वहाँ अगर लकड़ी की खातिर चाहते हैं तो लकड़ी की खातिर पौधा मिले थे,
1: और
2: अगर
1: फलदार जो
2: शोभाकार
1: चीज़।
2: पौधा चाहते हैं वो भी मिल जाते हैं, शोभाकार चाहिए वो भी मिल जाए, तो अपने मनोपसंद अपने मन पसंद पौधा लिया में संभवतः निःशुल्क मिले थे और ले आए के वृक्षारोपण कर दें। हाँ एक बात का जरूर ध्यान रखें भैया कि अगर पौधा छोटा है तो नुकसान का ज़्यादा संभावना है, छुट्टा पशुओं के काट सकते हैं, छुट्टी बकरी है भेड़ है नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उनकर बाड़ लगावल बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल भैया।
2: बाड़ लगा के अगर उनके महीना 10 दिना देखभाल कर दिया जाए तो उनकर बढ़वार अगर बढ़ जाए तो निश्चित रूप से फिर उनके कोनो प्रभाव नहीं पड़े,
1: बिल्कुल
2: ये
1: भैया।
2: तरह से अगर वृक्षारोपण होए। अब तो देखा अपन सरकार सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी लिया आई बाटे, एक नई व्यवस्था आई बाटे कि वनों की भांति वृक्षारोपण माने इतनी सघन वृक्षारोपण जो निके कहा जाता है, जैसे बहुत कम समय बहुत कम जगह में बहुत अधिक वृक्षारोपण कर दिया जाता है, बहुत अधिक पौधारोपण कर दिया जाता है, और ओकर एक संकल्पना बाटे कि अगर कुछ पौधा नष्ट भी हो जाते हैं
1: हाँ तो
2: तब
1: कुछ तो
2: भी
1: बचा रहेंगे।
2: 50% से अधिक पौधा बची हैं जो उन्हें बढ़वार अच्छी हुई और आगे चल के वो कम से कम सामान्य वातावरण में जो प्राणदायिनी वायु है ओके भैया ओकर कमी पूरा करिए।
1: बिल्कुल भैया।
2: ये हम कहें भोला भाई अब तो देखा समय समय पे सब ठीक लागत है हो, अब डेरा डम्बर उठावा जाए, कल फिर पंचायती में भेंट हुए, पंच भैयन से विदा लीन जाए तो पंचो
1: राम
2: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। अब प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का जीवन देशवासियों को सदैव देता रहेगा प्रेरणा। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों का तत्काल लाइसेंस रद्द कर दर्ज होगा केस। प्रदेश सरकार ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश। प्रदेश भर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी को लेकर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया विशेष ट्रैफिक प्लान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए अटल जी का जीवन सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे।
1: भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुशी शासन का लोहा मनवाया हो।
0: स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के KGMU साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर ने काव्य पाठ किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली महान वीरांगनाओं में से एक थीं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई का आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर PSC की नई वाहिनी का गठन किया गया है।
1: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश PSC बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, इन 3 PSC महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था।
0: सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिका पाल ने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन ने दूध और दुग्ध उत्पादों, खोआ, पनीर, घी आदि में स्वास्थ्य के लिए घातक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में हानिकारक रसायन अथवा अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने तथा समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त करने के साथ साथ BNS की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त मिलावटी ब्रांड्स की बिक्री पर प्रदेश व्यापी रोक लगाकर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति एवं निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। विभिन्न जनपदों में दूध और दुग्ध उत्पादों में हानिकारक रसायन और मिलावटी तत्वों के इस्तेमाल

0: के मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
1: प्रदेश के 6 जिलों मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती रैली कल 17 अगस्त से मेरठ से शुरू होगी। यह अभियान 14 अप्रैल को अयोध्या में समाप्त होगा। मेरठ में 17 अगस्त से 9 सितंबर, बरेली में 14 सितंबर से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 जनवरी से 28 जनवरी 2027, वाराणसी में 2 फरवरी से 27 फरवरी, आगरा में 4 मार्च से 24 मार्च और अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल 2027 तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान भर्ती स्थलों पर अभ्यर्थियों के ठहरने, सुरक्षा और भीड़ एवं यातायात प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कल सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व को लेकर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आज दूर दराज के जिलों से पहुंचे श्रद्धालु कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
2: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाश वाराणसी।
1: कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले राजमार्ग पर बाई लेन को कांवड़ियों के लिए आरक्षित रखा गया है। प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन के चलते कई जनपदों में कल परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जा रहे आजमगढ़ निवासी एक यात्री की लाइसेंसी पिस्तौल से दुर्घटनावश गोली चलने से एयरपोर्ट के 2 ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी घायल हो गए। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वाराणसी की गोमती जोन की DCP नीतू कादियान ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे एयरपोर्ट पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी।
3: वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है। हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई फूलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: छात्र आधिकारिक UGC नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। बाराबंकी में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का जीवन देशवासियों को सदैव देता रहेगा प्रेरणा। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को तत्काल लाइसेंस रद्द कर दर्ज होगा केस। प्रदेश सरकार ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश। प्रदेश भर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी को लेकर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया विशेष ट्रैफिक प्लान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए, प्रयागराज के न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम में आयोजित संगीतमय बैंड की प्रस्तुति और चंद्रशेखर आजाद पार्क में वायुसेना बैंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रयागराज में आयोजित हुए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

दिनांक 14 अगस्त व 15 अगस्त को शहर प्रयागराज में जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोबरा ऑडिटोरियम न्यू कैंट प्रयागराज में विशेष बैंड प्रस्तुति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सेना की समृद्ध परंपराओं, अनुशासन और संगीत विरासत की झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल अमित सिंह सोहल, बार्ट विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सब एरिया

गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य परिवार के सदस्य, स्कूली बच्चे व वरिष्ठ नागरिक भी कार्यक्रम में सम्मिलित रहे और जिन्होंने अपने जोश, उत्साह और तालियों से कार्यक्रम को और भी उत्कृष्ट बनाया।

कार्यक्रम में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड और वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के पाइप बैंड ने राष्ट्रभक्ति धुनों और अपने गीतों के माध्यम से पूरे ऑडिटोरियम को देशभक्ति के रंग में रंग दिया था।

दिनांक 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर मध्य वायु कमान मुख्यालय के तत्वाधान में वायुसेना स्टेशन बमरौली द्वारा प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में संगीतमयी संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एयर मार्शल तरुण चौधरी, ABSM, VSM, वायु ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ मध्य वायु कमान की गरिमामयी उपस्थिति रही। इनके अलावा जिलाधिकारी प्रयागराज श्री मनीष वर्मा की भी उपस्थिति रही।

भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट बैंडों में से एक नंबर 4 एयरफोर्स बैंड ने इस कार्यक्रम में अपने गीतों और राष्ट्रभक्ति धुनों पर हजारों की संख्या में आए हुए युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

लगातार दूसरे वर्ष आयोजित किए जा रहे इस विशेष कार्यक्रम ने बताया और दिखलाया भी कि जो हमारी सेना सीमाओं पर हमारी रक्षा कर सकती है, वो संगीत के माध्यम से हमें जोड़ने का भी काम कर सकती है। कार्यक्रम को आयोजित करा रहे रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी देवार्तोधर जी ने

0: आकाशवाणी प्रयागराज से बात की और उन्होंने कार्यक्रम के बारे में विभिन्न जानकारियां हमें दी। आइए सुनते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश।
1: दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स सेंट्रल एयर कमांड। ऑब्वियसली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट आउटसाइड इन द पब्लिक, बट हाउएवर यू कुड सी इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड। द क्राउड प्लेड अ वेरी बिग रोल, दे वर एंथुसियास्टिक एंड इट वाज अ वेरी बिग सक्सेस। सो इट इज रिक्वेस्टेड दैट क्राउड ऑफ प्रयागराज नेक्स्ट टाइम ऑल्सो दे कीप कमिंग एंड ग्रेसिंग सच ओकेजन। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आज इंडियन एयरफोर्स का बैंड परफॉर्मेंस था, नंबर 4 एयरफोर्स बैंड। एयरफोर्स की जो एयरफोर्स स्टेशन बमरौली का पार्ट है, उसने बहुत ही अच्छा और एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस दिया। काफ़ी उत्साह आपने क्राउड का देखा होगा, ऑल ओवर प्रयागराज से क्राउड आए, स्टूडेंट्स थे, सीनियर सिटीजन्स थे, बच्चे थे, सब लोगों का उत्साह बहुत ही अच्छा था। इससे भी ये भी देख सकते हैं कि जो डिफेंस फोर्सेज है, एयरफोर्स है, इज़ नॉट ओनली अबाउट गार्डिंग द स्काइज, ठीक है, ये पीपल से भी कनेक्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो बैंड है नंबर 4 एयरफोर्स बैंड, देख सकते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे से पीपल से कनेक्ट किया और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और 80th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शहर प्रयागराज में आयोजित हुए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रमों की स्थल रिकॉर्डिंग और वाचन स्वर थे रितेश के, प्रस्तुति थी अभिनव प्रज्ञा पांडे की।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में भजन।

समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना राठौर का नमस्कार। दोस्तों, आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
1: नमस्कार वंदना जी, सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार और अभिनंदन। कार्यक्रम चिट्ठी आई है मैं
0: और देखिए अभिनंदन कर रहा है उर्दू प्रोग्राम के लिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं के जो संदेश हैं
1: जी।
0: तो देखिए ये हैं डॉक्टर अर्शिया सरफराज प्रयागराज से हमें संदेश भेज रही हैं और ये कहती हैं कि आकाशवाणी प्रयागराज से डॉक्टर नौशाद कामरान का मकाला नाजिश प्रतापगढ़ी की शायरी में इंसानियत और रवादारी का पैगाम सुना। मकाला बेहद उम्दा था और खुर्शीद अंबर की शायरी भी अच्छी थी। इस बेहतरीन पेशकश के लिए प्रयागराज आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो वहीं नौशीन फातिमा जैदी ये मसगांव मुंबई से हमें ये इन्होंने संदेश अपना भेजा है तो ये कहती हैं कि इन्होंने इनके पास किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी
1: उर्दू सुनने के लिए।
0: जी हाँ, उर्दू प्रोग्राम के अंतर्गत जिसमें सईद अहमद हसनैन साहब की जो स्टोरी थी, कहानी थी अंगूठी।
1: जी
0: वो इन्हें जब इन्होंने सुना तो बहुत ही आनंददायी प्रतीत हुई वो कहानी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और ये कहती हैं कि उस कहानी से काफ़ी कुछ प्रेरणा भी मिली। जो स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज था हसनैन साहब का वो मन को छू गया। इतने बेहतरीन कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर अनुज नागेंद्र साहब की कविताएं थीं
1: जी,
0: उसके जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वो बहुत ही सुंदर थे। और इसी कार्यक्रम यानी उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत रूही जैदी जी ने भी अपना ये यूएई से संदेश भेजा है और ये कहती हैं कि अहमद हसनैन साहब की स्टोरी सुनी अंगूठी, सच में प्यार हो गया इस कहानी से, इसने मेरे दिल को छू लिया
1: जी।
0: बहुत ही वंडरफुल राइटिंग थी और हम लोग ने बहुत इसको एंजॉय किया। ये कहती हैं आगे कि द स्टोरी लेफ्ट अ ब्यूटीफुल इम्प्रेशन ऑन मी।
1: बहुत शुक्रिया अर्शिया जी, नौशीन फातिमा जी और रूही जैदी जी। आप यूएई से लिख रही हैं और बाकी लोग प्रयागराज से और अन्य जगहों से लिख रहे हैं। अच्छा लगता है जब अपने केंद्र का प्रोडक्शन सराहा जाता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रदीप मिश्र जी हैं तो ये साधुवाद उन तक पहुँचाया जाएगा। अहमद हसनैन साहब की कहानी, ये जो अफसाना है, रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं भी स्टूडियो में बैठी हुई थी, बड़े इत्मीनान से वो पढ़ रहे थे और एक एक भाव शब्दों में पिरोते हुए रिकॉर्डिंग हो रही थी और शायद यही भाव आप सभी सुधी श्रोताओं उनको कम्युनिकेट हुआ और प्रोग्राम पसंद आया। तो साधुवाद अहमद हसनैन साहब तक भी हम लोग कन्वे ज़रूर करेंगे। नाजिश प्रतापगढ़ी साहब पर जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ है वो भी आपको पसंद आया है अर्शिया जी भाई। सच कहें तो वो हम सभी के मार्गदर्शक रहे हैं और हमारा केंद्र नाजिश साहब पर बहुत जहीन काम हम लोग करते रहे हैं और करते रहेंगे सार्थक कार्य। तो यूं ही हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले उर्दू कार्यक्रम के साथ जुड़िए, पत्र लिखिए, अच्छा रहेगा।
0: और नेहा जी, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमसे दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बिंदु और दिव्यांशु नागनपुरे जी। और ये कहते हैं कि 2 अगस्त रविवार का दिन था, कार्यक्रम सुना बाल संघ, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में चर्चा के अंतर्गत मित्रता विषय पर दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी और कहानी सच्ची पूंजी ये भी बड़ी ही प्रेरणादायक थी। शब्द ज्ञान भी बहुत ज़्यादा जानकारियों से भरा हुआ था। रचना जी और हेम जी की प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई, बहुत पसंद आया मुझे। और आगे ये लिखते हैं कि 8 अगस्त को युवाणी कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन था। इस कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन और गोवा क्रांति पर दी गई जानकारी बढ़िया थी। आज की शाम आपके नाम सेगमेंट के अंतर्गत अभिनेता इरफान खान के बारे में दी गई जानकारी और गीत बहुत अच्छे लगे। प्रेजेंटर अभिषेक और सुधांशु जी को हार्दिक बधाई।
1: बहुत शुक्रिया दुर्गेश नागनपुरे जी। मुझे याद है कि सुधांशु

0: और अभिषेक ने उस दिन कमाल कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात थी तो उन्होंने बहुत बढ़िया स्क्रिप्टिंग की थी। आज की शाम आपके नाम में अभिनेता इरफान खान पर आधारित उन लोगों ने प्रोग्राम प्रस्तुत किया था। असल में ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, दोनों ही वाक्य उन दोनों के हृदय के बड़े करीब हैं, इसलिए लेखनी में भी वो बात निखर करके आती है। और जब आवाज़ देते हैं उन शब्दों को तो कहते हैं ना कि रंग गाढ़ा हो जाना दिन दुनी रात चौगनी जैसी बात हो गई। तो बहुत शुक्रिया कि आपको कार्यक्रम पसंद आया।
1: और नेहा जी, युवाणी कार्यक्रम को पसंद किया है माधुरी कुशवाहा जी ने कोठा पारशा प्रयागराज से, और ये लिखती हैं अपने बहुत सारे और संदेशों के साथ कि 11 अगस्त का युवाणी प्रोग्राम बहुत पसंद आया जिसे महिमा और अभिषेक ने पेश किया था। दोनों ने डिग्री और स्किल के बारे में बहुत विस्तार से बातें की थी और किस तरह से हमें नौकरी के लिए जब जाना होता है तो डिग्री या हमारा जो सीखने की जो कला होती है वो कितनी काम आती है, ये बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ देशभक्त खुदीराम बोस जी पर जो कार्यक्रम किया गया था वो भी बहुत मन को छू गया। दोनों की मेहनत को सलाम है हमारा। साथ ही साथ 10 अगस्त का विचार बिंदु कार्यक्रम बड़ा ही पसंद आया। धर्म के बारे में व्यापक जानकारी मिली और किस तरह से धर्म को व्याख्यायित किया गया वो सुनकर मन झूम उठा। और एक तरह का धर्म तो वही होता है कि जो जिसको हम जानते हैं, और एक धर्म ये भी बताया गया कि जो मनुष्यता का धर्म होता है जिसमें विनम्रता है, क्षमा करने की बात होती है, अच्छे आचरण की बात की जाती है, वो भी एक धर्म के ही तरह से होता है। तो ये बड़ी ही प्रेरणादायी बातें रही और मन को खुश भी कर गई। वहीं पसंद आया है कार्यक्रम 5 अगस्त को सावनी जो बोलते नगमे का
0: जी
1: सावनी फुहारों की जो बातें थी
0: जी।
1: और महादेव जी को समर्पित सावन का महीना बहुत सारी यादें लेकर भी आता है। तो ये बड़ा ही खिलखिलाता हुआ कार्यक्रम था। नेहा जी और वंदना जी, आप लोगों ने जो बातें बताई, खेतों में धान रोपती महिलाओं की चर्चा की तो नेहा जी ने उसे जोड़ा अपनी दादी की कामदार चूड़ियों के साथ। मन को ये बातें छू गई। बहुत बेहतरीन गीतों के साथ किस तरह से कितने पर्व होते हैं, ये महीना किन किन रूपों में खास होता है, श्रृंगार की जो बातें की गई और जिस तरह के गीत आप लोगों ने चुने थे और जिस अंदाज में इस कार्यक्रम को पूरा गढ़ा था, इसे सुनकर मन झूम उठा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया माधुरी कुशवाहा जी, आपको ये वाणी कार्यक्रम अच्छा लगा, अभिषेक का कार्य अच्छा लगा, महिमा का काम अच्छा लगा। तो ये साधुवाद उन दोनों के साथ साथ इस कार्यक्रम के इंचार्ज अभिनव प्रज्ञ पांडे तक ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा। बोलते और नगमे कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, सावनी बूंदों की जो साजिश रही है। सच में जब इस कार्यक्रम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमारा जो स्टूडियो है वो बूंदों को पा करके कैसा महसूस करता है, और वो शायद वो सारे भाव हमने नगमों में शामिल किए थे, शब्दों में शामिल किए थे, तो आप सभी को पसंद आया, शुक्रिया आपका।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य कौमुदी के बारे में हमें अपना संदेश भेज रहे हैं अजीत शर्मा आकाशी अतरसुइया इलाहाबाद प्रयागराज से, और ये कहते हैं कि काव्य कौमुदी में विजयानंद जी और डॉक्टर पीयूष मिश्र जी का जो काव्य पाठ था वो बहुत ही सराहनीय रहा। हालांकि विजयानंद जी द्वारा उच्चारण की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे प्रतीत हुई, लेकिन कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत अच्छा था। इन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
0: आकाशी शुक्रिया हमारे हिंदी कार्यक्रम को सराहने के लिए। विजयानंद जी, पीयूष जी, विवेक सत्यांशु जी, कविवर यश मालवीय जी, अभिषेक वर्मा जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अनिशा यादव जी की कहानी है, अमिता मेहरोत्रा जी आती रहती हैं। तो आप सभी साहित्यकार हैं, जो कविवर हैं, सम्मानित जन हैं, भाई स्वागत है। और हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी जो रचना है, उनका जो विज़न है, वो जिस तरह से जीवन को देखते हैं, शब्दों में ढालते हैं, हम तो यहाँ पर हैं कि उन शब्दों को क्यों ना थाम लिया जाए और थाम करके उन शब्दों को आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो शुक्रिया आकाशी।
1: नमस्कार, प्रयागराज के साथ
0: उपस्थित हैं नीरा त्रिपाठी जी।
1: बिल्कुल सही पहचाना नेहा जी। तो अशोकनगर प्रयागराज से नीरा त्रिपाठी जी हमसे जुड़ रही हैं और कहती हैं कि नीलम श्रीवास्तव जी का नमस्कार प्रयागराज बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने बोला कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके भीतर मजबूत इच्छा शक्ति होती है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से सफलता के पायदान पर पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी होता है। वहीं आगे नीलम सिंह जी ने भी जो हथकरघा दिवस पर पेशकश उनकी थी बहुत अच्छी लगी। बुनकरों के लिए

0: जो सहायता सरकार द्वारा मिली है उसके बारे में भी बताया, तो पूरी टीम को इसके लिए बधाई। आगे ये कहती हैं कि जीवन में रिश्तों की अहमियत के बारे में नमस्कार प्रयागराज में बहुत अच्छी बातें बताई गई। दिखावा किस तरह से हमारे रिश्तों में मनमुटाव पैदा करता है, ये बातें सोनम जी ने बताई तो दिल खुश हो गया। वहीं नीलम जी ने फिर से सावन के रंग में प्रस्तुति जो दी वो बहुत ही खूबसूरत लगी। और आगे नेहा जी थोड़ा सा संभल कर बैठिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि थोड़ी सी तारीफ है हम लोगों की भी।
1: आप जब कुछ चेतावनी होती है, जैसे फ्लड की चेतावनी, बाढ़ बुला

0: लोगों ने की है, बोलते हैं नगमे की, वो मोहब्बत हम लोगों के दिलों तक जाग उठी। और बहुत ही अच्छे छू लेने वाले गीत थे। नेहा जी ने देवानंद जी की सादगी की बातें की, उनके बारे में, उनकी चंचलता, उनकी एक्टिंग स्किल की जो बातें की, और जो गाना हुआ आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, उसने तो दिल को छू लिया। राहत फतेह अली खान साहब के जो दोनों ही गीत थे वो बहुत अच्छे थे, और आज प्रेम में मगन दिखाई पड़ रहे थे आप दोनों ही की दोनों। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: शुक्रिया नीरा जी, इतने विस्तार से हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा लिखने के लिए। सवेरे का वो जो समय नमस्कार प्रयागराज वाला होता है, सुबह का 9:15, नीलम सिंह हो, नीलम श्रीवास्तव हो, प्रमेंद्र जी हो, अखिलेश जी हो, गार्गी जी हो, सोनम हो, मोना जी हो, ये लोग पहले से स्क्रिप्टिंग कराते हैं, और जो इनके इंचार्ज हैं अभयकांत तिवारी जी, वो ध्यान भी रखते हैं कि विषयों पर किस तरह से बात की जा रही है। और नीलम श्रीवास्तव जी, सच कहूँ तो उन्होंने काम किया है और वो काम नज़र आता है। और नीलम सिंह जब कहते हैं कि भाई बारिश की बात हो रही हो, किसी को आनंद आता है तो किसी के लिए बारिश सबब बनकर आती है, जिसके सर छत नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये वो महीना है जब हम किसी के लिए दुआएं मांग सकते हैं, किसी को मदद पहुंचा सकते हैं। तो हम आगाह भी करते हैं और आनंद में डूबते भी चलते हैं। वहीं पे आपको पसंद आता है बोलते और नगमे। नगमों को चयन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है सुधीर श्रोताओं, नीरा जी, कि हम वो आधे घंटे शायद सुधीर श्रोताओं से इस तरह से जुड़े कि जीवन कितना खूबसूरत है, मखमली सा है, और हर किसी का जीवन बहुत सार्थक है, इसको हम सभी महसूस कर सकें। तो कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा किया जाए, पसंद आ रहा है तो मैं कहूँगी कि हृदय तल से धन्यवाद आपका।
0: और नेहा जी, ये दो संदेश हमें मिल रहे हैं। एक तो संदेश हमें मिला है आसाम से
1: जी
0: हितेंद्र दास जी का, और दूसरा संदेश हमें आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रबी, मेराज जहां जी। और ये दोनों ही लोग कहते हैं कि आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाट्सएप फरमाइश जो कार्यक्रम जाता है ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मधु जी की पेशकश बहुत अच्छी
1: जी
0: होती है, और इनकी गुजारिश भी है कि हमें भी किसी गीत में शामिल कर लीजिएगा।
1: अरे हितेन जी और ताशी, ये तो हमारी खुश नसीबी है कि आपके जो नाम हैं वो असम से और हरिद्वार से हमारे प्रयाग संगम नगरी पहुँचे हैं। तो ज़रूर आपका जो नाम है मधु जी तक पहुँचा दिया जाएगा, कार्यक्रम में शामिल भी किया जाएगा। और देखिए चिट्ठी आई है कार्यक्रम में, आप दोनों ही लोगों के संदेश को शामिल कर लिया गया है।
0: और नेहा जी, अब
1: जी
0: उन श्रोताओं के नाम जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं, और नाम शामिल हो रहा है इसमें दत्ता धोंडके, आष्टी जालना जो कि हमें महाराष्ट्र से हमसे जुड़ रहे हैं, हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से, ये हैं धीरज भाई रबारी जी, सुरेश गगनेजा, सोमू गुप्ता, विजय सुरालकर मुताला महाराष्ट्र से, इन्होंने हमें संदेश भेजा है अपना, और ये हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी, और फगु राम यादव, विनोद नारायण कुशवाहा जी।
1: बहुत शुक्रिया आप सभी सुधीर श्रोताओं का जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पत्र हमारे केंद्र भेजा है। आप सभी सुधीर श्रोताओं से गुजारिश है कि हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनिए, जुड़िए, पत्र लिखिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ज़रूर जुड़िए।
0: तो श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम आपको बताएं अपना पता। तो लिखिए, कार्यक्रम चिट्ठी आई है द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार, और अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, सावन की रिमझिम फुहारें जब तन को भिगोती हैं तो कभी कभी मन के भीतर छुपी यादों को भी जगा देती हैं। बाहर बूंदों की ठंडक होती है लेकिन दिल में किसी की याद की तपिश। बारिश की बूंद

बूंद में प्रेम की आहट और मन की हल्की सी कसक को समेटे सुनवा रहे हैं आपको आरडी बर्मन की मधुर धुन और योगेश के भावपूर्ण शब्दों से सजा किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मंजिल का ये गीत।

सावन का मौसम हो और पेड़ों पर पड़े झूले हों तो तन मन अपने आप बचपन की उन खूबसूरत यादों में लौट जाता है। लेकिन जब इन झूलों की हर पींग किसी अपने के इंतजार से जुड़ जाए तो सावन की फुहार भी विरह की कहानी लगने लगती है। ऐसे ही मीठे इंतजार और मनोहार से सजा ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसमें सावन की पेंगे जैसे कह रही हों, अब देर न करो, लौट आओ।

सावन की घटाएं जब आसमान पर छाती हैं तो मौसम में एक अलग ही नशा घुल जाता है। रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और किसी अपने के साथ होने की चाह, यही तो है श्रोताओं सावन का रूमानी रंग। लेकिन जब सावन आने वाला हो और दिल में किसी खास का इंतजार हो, तब हर बादल जैसे एक पैगाम लेकर आता है कि घटाएं बरसेंगी, मौसम भीगा भीगा होगा और शायद इस बार मिलन की कोई वजह भी बन जाए। इसी खूबसूरत इंतजार और प्रेम की नर्म सी दस्तक को अपने सुरों में समेटे ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे हमने लिया है फिल्म चुपके चुपके से। गायिका हैं लता।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, आज इतवार है। इस कार्यक्रम में सुनिए झलकी मुंशी इतवारी लाल। इसके लेखक है नरेश मिश्र।
1: अज भाई हमारा बाबा बाबा बाबा हमारा अभी तक तैयार नहीं बाबा है हमारा। मैंने कहा मेरी अच्छी मुंशिया इन, अरे भाई कहीं घूमने भी चलोगी या है?
2: आ रही हूं।
1: देखा
2: मैं कब

0: देखा देखा साहिबान, ट्रेन जब लेट होती है तो मेकअप कर लेती है, हैं? और हमारी मुंशियाइन है ना, वो मेकअप करने में लेट हो जाती है भगवान के फसल से। हाँ
1: ए जी,
0: हाँ जी,
1: खुद तो बन संवर कर बुढ़ापे में भी छैला बन गए, मैं जरा मेकअप करने लगी तो।
0: देखो देखो मुंशियाइन, हाँ अगर मैं भी तुम्हारी तरह नकली दांत लगा लूं, हाँ, और बाल काले करवा लूं तो जवान लगने लगूं भगवान की कसम से। देखिए देखो मुंशियाइन, अब भाई नजरों के तीर चलाने के मौसम, ये तानों के तीर न चलाओ भगवान के फसल से। हाँ।
1: नजरों के तीर खाने के लिए ही यहाँ मिर्जापुर आए हो?
0: अम्मा ये भी कोई पूछने की बात है, है?
2: तो मुझे क्यों लाए हो?
0: अब भाई ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा घर का जोगी आन गाँव में कितना सिद्ध माना जाता है भगवान के फसल से, है? उसके कद्रदानों और चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है, तुमने देखा नहीं? अब भाई जिधर जाता हूँ उधर ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ पे फोटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लग जाती है भगवान के फसल से।
1: देखा भी है और सुना भी है।
0: अब भाई क्या सुना है, क्या सुना है?
1: आज सवेरे रेडियो में खबर थी।
0: अरे हमारे बारे में गोया कि रेडियो में भी खबर आने लगी भगवान
1: जी
0: के फसल से।
1: हाँ, जी हाँ, खबर थी कि चिड़ियाघर से एक जानवर भागकर सड़कों पर घूम रहा है।
0: गोया मैं चिड़ियाघर का जानवर हूँ? देखो मुंशी तुवारी लाल, अब बल्द बुधवारी लाल मीर बख्शी की तौहीन करोगी ना और तो झगड़ा हो जाएगा भगवान के फसल से।
1: तुमने भी तो मेरे भैया की तौहीन की थी, याद है जब पिछली बार वो आए थे?
0: गधा,
1: तुमने मेरे भैया को गधा कहा?
0: अरे तुम्हारे भैया को नहीं, उनके साहबजादे को कह रहा हूँ भगवान के फसल से।
1: रिंकू,
0: हाय
1: कितना प्यारा बच्चा है,
0: प्यारा बच्चा,
1: और तुम उसे गधा कहते हो?
0: जिद्दी और झक्की, मालूम है वो क्या जिद कर रहा था?
1: मैं क्या जानू,
0: साहब फरमा रहे थे कि गधे की सवारी करूंगा, है? रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया, लाख समझाया कि भैया मिर्जापुर में गधे किराए पर कहां से लाऊं, मगर माने ही नहीं। हा?
1: और तुमने जरा सी बात पर रिंकू को रुलाया।
0: अब और क्या करता?
1: अगर जिद पूरी कर देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता?
0: तुम्हारे रिंकू के लिए गधा ढूंढने जाता गलियों में, यहाँ किया,
1: उसकी क्या जरूरत थी?
0: क्यों?
1: थोड़ी देर के लिए बेचारे को अपनी ही पीठ पर बिठा लेते।
0: यानी कि मैं गधा हूँ? देखो मुझे, देखो मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों अच्छी नहीं लगती है, झगड़ा हो जाएगा भगवान के फसल से।
1: तुम तो नाराज हो गए।
0: हाँ नाराज हो गए,
1: ऐसा मैंने क्या कह दिया?
0: अभी और कुछ बाकी है क्या भगवान के फसल से?
1: अरे मान भी जाओ।
0: नहीं मानेंगे,
1: चलो शहर घूमें।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है भगवान के फसल से।
1: तो मैं अकेले ही घूमने जाऊं?
0: अकेले? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, भाई एक बार बरेली के बाजार में गई थी तो झुमका गिरा आई थी, हाँ यहाँ मिर्जापुर के बाजार में क्या बिजलियाँ गिराओगी भगवान के फसल से? हाँ नहीं तो देखो देखो सारे आजम फिदा है ना, वो यहाँ क्या घास खाने आए हैं, उनके साथ चली जाओ भगवान के फसल से, अकेले नहीं जाने देंगे।
1: शाम से ही गायब है।
0: क्यों?
1: हम लोग एक की तरह बुद्धू तो नहीं कि नए शहर में आकर भी बस होटलों में पड़ा रहे?
0: देखो मुंशियाइन, देखो मुंशियाइन, अगर उसने भी शादी की होती ना तो वो भी हम सब लोगों की तरह बुद्धू बन जाता भगवान के फसल से।
1: मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया?
0: हाँ यकीनन बनाया।
1: मैं कहती हूँ अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो?
0: हाय हाय हाय, तो मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता भगवान के फजल से। हाँ
1: हाँ, अब तो ऐसा ही कहोगे, शादी के बाद हफ्ते भर तो यही रट्टा गाए रहते थे।
0: क्या
1: मुंशियाइन, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा हसीन और कोई नहीं।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, जरूर कहता था, जरूर कहता था। अरे भैया क्योंकि तब मेरी झूठ बोलने की आदत थी भगवान के फजल से। हाँ
1: कहते थे तुम्हारे आगे सारा आलम नाचीज है।
0: अरे तब मेरी जनरल नॉलेज जरा वीक थी भगवान के फजल से।
1: देखो जी, अगर औरत न होती
0: तो क्या होता,
1: तो मर्दों की जिंदगी अधूरी ही रहती।
0: अच्छा अच्छा
1: जी हाँ, किताबों में साफ लिखा है।
0: क्या लिखा है भाई?
1: शादी से पहले कवि कालिदास बहुत बड़े मूर्ख थे।
0: अरे भाई मूर्ख न होते तो शादी क्यों करते? बताओ।
1: अरे भाई शादी के बाद पति ने उन्हें कुछ दिनों में बहुत बड़ा पंडित बना दिया।
0: देखो भाई, देखो मुंशियाइन, देखो मुंशियाइन, तुमने तो एक ही कालिदास के बारे में पढ़ा है।
1: क्यों? क्या और भी कालिदास?
0: अरे भाई यकीनन है, यकीनन है। हाँ हमारे जैसे सैकड़ों कालिदास शादी से पहले बहुत बड़े विद्वान थे। हाँ लेकिन शादी के बाद पत्नी ने उन्हें थोड़े दिनों में बहुत बड़ा मूर्ख बना दिया भगवान के बदल से।
1: क्या?
0: हाँ।

0: मैंने तुम्हें मूर्ख बना दिया है।
1: भाई लोग तो ऐसा ही कहते हैं।
0: जरूर ये फिदा ने कहा होगा। आने दो, वो खबर लूंगी कि।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो मुंशी जान, गुस्सा करना ठीक नहीं भाई, सेहत खराब हो जाएगी यार
0: तुम्हारी बला से। जाओ, मैं नहीं बोलती।
1: आए हाय मेरी अच्छी मुंशी जान, जब तुम रूठती हो ना तो जी करता है कि कैमरा लेकर एक अच्छा सा पोज ले लूं।
0: अच्छी याद दिलाई। सुनो, तुमने मिर्जापुर में फोटो खिंचाने को कहा था।
1: हाँ भाई, कहा
0: था। कब खिंचवाओगे?
1: अरे भाई जब कहो तुम, जब कहो।
0: तब तो आज ही किसी अच्छे स्टूडियो में चलेंगे। फोटो पर मुस्कान, आंखों में चमक, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में, कितना नेचुरल पोज होगा।
1: गलत मुंशी आईन, एकदम गलत। नेचुरल पोज तो तब होगा जब तुम्हारा ये नाजुक नाजुक प्यारा प्यारा हाथ अब मेरी जेब में हो, भगवान के फजल से।
0: अरे तुम तो ज्योतिषी मालूम पड़ते हो। सच सच मुझे पैसों की सख्त जरूरत है।
1: अरे देखो तो मैं कहता हूँ तुम्हें पैसों से ज्यादा अक्ल की जरूरत है। हाँ।
0: अरे तुमसे वही चीज तो मांगूंगी जो तुम्हारे पास है।
2: क्या बात करी है मुंशी भाभी। अगर मुंशी मियां के पास अक्ल होती तो कसम खुदा की हमारी तरह ये भी कुंवारे ही रहते हैं।
0: फिदा, तुमने झूठ बोलकर झगड़ा कराना कब से सीख लिया?
2: तभी से जब से आपने मेरा जेब खर्चा बंद कर दिया।
1: अम्मा छोड़ो ये बहस, छोड़ो फिदा मियां, ऐसा करो जी जाकर मुंशियाइन को जरा शहर घुमा लाओ।
0: मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
1: क्यों?
0: मेरा सर चकरा रहा है, नीचे जाकर गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगी।
1: अरे सुनो तो भाई मुंशियाइन।
3: अब भाई फिदा मियां जी, ये भाई क्या चक्कर है, तुमने मुंशियाइन को क्यों जाने दिया?
4: दरअसल बात ये है मुंशी मियां के नीचे एक सुंदर सी प्रिया आपका इंतजार कर रही है।
1: अम्मा यहाँ मिर्जापुर में सुंदर सी प्रिया? अम्मा क्या कहते हो भगवान के फजल से।
4: कसम खुदा की सच कह रहा हूँ।
1: अच्छा,
4: उसका नाम प्रिया है। और वो किसी अखबार के लिए इंटरव्यू लेने आई है।
1: अच्छा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ।
4: प्रिया जी अंदर तशरीफ ले आइए।
5: गुड इवनिंग।
1: हाय हाय हाय।
5: गुड इवनिंग सर।
1: हाय हाय, खुश रहो भगवान के फजल से।
4: मुंशी मियां,
1: हाँ जी,
4: इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा मुझे। मुंशी जी, आप हैं मिस प्रिया।
1: हाय हाय,
4: अभी अभी मुझे गर्मा गर्म कॉफी पिला चुकी हैं।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय।
4: और प्रिया जी, आप हमारे मशहूर मारूफ मुंशी तिवारी लाल वल्द बुरद्वारी लाल मीर
1: बख्शी।
5: मुंशी जी,
1: हाँ जी,
5: मैं अपने अखबार के लिए आपको जरा तकलीफ दे रही हूँ।
1: अजी भाई शौक से दीजिए, ऐसी हसीन तकलीफ रोज दीजिए भगवान के फजल से।
5: धन्यवाद मुंशी जी,
1: हाँ जी।
5: सबसे पहले तो आप ये बताइए,
1: हाँ जी,
5: क्या आपको फूलों का शौक है?
1: हाँ भाई, यकीनन है यकीनन है।
5: तो आपका पसंदीदा फूल कौन सा है?
1: बताऊ
5: जी?
1: बताओ।
5: बिल्कुल।
1: तो मेरा पसंदीदा फूल है गोभी का फूल।
5: पिता साहब
4: जी,
5: ये सवाल आपसे है
4: जी, फरमाइए।
5: शौहर घर का मालिक कब बनता है?
4: शौहर घर का मालिक कब बनता है?
1: कभी नहीं।
4: मिस प्रिया, जब उसकी बीवी घर के बाहर होती है।
5: मुंशी जी, अगला सवाल शायद आपकी दुख तिरक को छेड़ दे।
1: आए, आए,
5: आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है?
1: आए, आए, आए, आए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी बता दूं?
4: बता दीजिए।
1: तो जवानी में हमें एक लड़की से इश्क फरमा बैठे और शादी का प्रपोजल कर बैठे,
5: तो उसने इनकार कर दी।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, वो शादी के लिए तैयार हो गई भगवान के फजल से।
5: फिदा साहब
4: जी,
5: मॉडर्न होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
4: कसम खुदा की, जब बेटे और बेटी में पहचान करना मुश्किल हो जाए ना, तब मान लेना चाहिए कि हम एकदम मॉडर्न हैं।
5: तो फिदा साहब, आपने कभी चुनाव लड़ा है?
4: जी मैंने तो कभी नहीं लड़ा, लेकिन अपने मुंशी मियां चुनाव लड़कर एक बार मुसीबत में जरूर फंस चुके हैं।
5: अच्छा
4: जी हाँ।
5: किस मुसीबत में फंस गए थे?
1: यार तुम किरकिरी कर रहे हो फिदा साहब।
4: बताइए बताइए।
1: मुसीबत ये है कि मुझे उस चुनाव में सिर्फ 3 वोट मिले थे।
5: तब तो आपकी जमानत जब्त हो गई होगी।
1: अरे भाई इतना ही होता तो क्या बात थी।
5: तो कुछ और भी हुआ?
1: अरे और क्या नहीं हुआ जी। हाँ देखिए, चुनाव का नतीजा निकलते ही
5: जी
1: मेरी मुंशियाइन जी कहने लगी,
5: क्या
1: देखा, मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में एक औरत और है, वरना हम 2 वोटों के अलावा ये तीसरा कहाँ से आया।
5: अच्छा विदा साहब,
4: हाँ जी,
5: आप प्रैक्टिकल जोक किसे समझते हैं?
4: प्रैक्टिकल जोक किसे समझते हैं
5: जी?
4: अरे छोड़िए अभी मोहतरमा, अरे आप इतनी देर से हमसे सवाल पे सवाल पूछे चली जा रही हैं,

0: और हमें क्या आपसे एक कप चाय के लिए भी नहीं?
1: अरे कोई बात नहीं,
0: इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है?
2: भाई सारे आजम ये तो भाई सचमुच गुस्ताखी हो गई ना।
0: कोई बात नहीं आप दो मिनट ठहरिए, मैं अभी गर्मा गर्म कॉफी लेकर आता हूँ।
2: ठीक है भाई।
1: मुंशी जी,
2: हाँ जी,
1: सुना है आपने नाटकों में तीर मारे हैं,
2: अरे भाई नहीं,
1: फिल्मों में डायलॉग लिखे हैं।
2: अरे भाई छोड़िए, वो तो भाई गुजरे जमाने की बातें हैं।
1: मुंशी जी,
2: हाँ जी,
1: अपने फिल्मी जमाने का एक डायलॉग सुना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी मुंशी जी।
2: हाँ जी, देखिए फिल्मी तो नहीं, लेकिन हाँ वो पारसी थिएटर के लिए लिखा था, वो इश्किया डायलॉग।
1: अरे बहुत खूब, इरशाद
2: सा इश्किया डायलॉग है भगवान के बदल।
1: अरे कुछ भी हो,
2: अच्छा तो ठीक है भाई। अरे हसीना नाज़नीना, ये फिजा ये बादिश हवा,
1: बहुत खूब
2: ये तेरे हुस्न के चर्चे कर रहे हैं। हम आज मिले हैं तो कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी सांसों में समा जाएंगे और हमारे बीच में जो आएगा उसको ठोकर से गिराएंगे।
1: क्या बात है मुंशी जी,
3: आप समझिए मिर्जापुर क्यों आए हो? इस तितली से प्यार का नाटक रचाया जा रहा है।
2: देखो मुझे यहाँ
3: तुम कौन हो जी? तुम यहाँ कैसे चली आई? मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कैसे चली आई?
1: मैं तो मुंशी जी का इंटरव्यू लेने आई थी।
3: और मैं मुंशी जी की खबर लेने आई हूँ।
2: देखो भाई कमाल है मुंशी यहाँ बहुत चक्की हो, तूफान बरसा कर देती
3: है।
2: फैजा साहब, फैजा साहब अब तुम ही बताओ कि प्रिया जी यहाँ इश्क फरमाने आई है कि इंटरव्यू देने?
1: बताओ।
3: मैडम मैं अखबार की रिपोर्टर हूँ, मुंशी जी से मुलाकात का हाल अपने अखबार में छपवाऊंगी। माफ करना, तब तो गलती हो गई। फिदा
2: जी,
3: तुमने मुझे नीचे जाकर क्या कहा था?
2: क्या कहा था जी?
0: बता दूं?
2: हाँ।
0: कसम खुदा की प्रिया जी, थोड़ी देर पहले आपने मुझसे एक सवाल किया था ना।
3: हाँ।
0: वही प्रैक्टिकल जोक वाला।
3: हाँ।
0: तो प्रैक्टिकल जोक का नमूना देखा आपने?
1: लेकिन भाई मैं तो बाल बाल बच गई, वरना मुंशियाइन जी तो मुझे गेट आउट ही बोल देती।
2: आमा भाई शायरे आजम, तुमने हमें भी नहीं बख्शा भगवान के फजल से।
0: मुंशी मियां, दरअसल आपने मुझे भाभी मोहतरमा से डांट खिलवा दी थी ना, तो मैंने भी आपको ये तोहफा पेश कर दिया।
3: तोहफे के लिए मैं किसी दिन तुम्हारी मरम्मत करूंगी, तुम्हारा खाना आज से बंद।
2: अरे नहीं नहीं, मेरी अच्छी मुंशियाइन, अच्छी मुंशियाइन, अब देखो मिर्जापुर में आके सुबह से तो खाया नहीं है, अब ऐसा करते हैं कि प्रिया जी को लिए चलते हैं और इस इंटरव्यू की खुशी में हम अपने ही पास से सबको डिनर कराएंगे।
0: जी हाँ जी,
2: मिर्जापुर में तो मिलेगा।
3: आइए
2: आइए भगवान के फजल से।
4: आज इतवार है, इस कार्यक्रम में ही अभी आपने सुनी नरेश मिश्र की लिखी झलकी मुंशी इतवारी लाल, प्रस्तुति विनोद रस्तोगी की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री

0: गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM

0: growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economies and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सकें। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न

0: अपन सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President CP Radhakrishnan calls upon

0: बरामद किए गए सामान की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम है। इसके अलावा तकरीबन 160 मेट्रिक टन सुपारी की एक खेप जब्त की गई है। मस्कुरा गिरोह के दीगर मेंबरान की शिनाख्त और उससे हुए नुकसान का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह की सूरत हाल अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में आइंदा दो दिनों के लिए जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल शदीद बारिश होने की तवक्को है। उड़ीसा में ताज़ा सैलाब आने का अंदेशा है क्योंकि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव के हल्के में इजाफा होने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। 49 ब्लाक और 5 शहरी इलाके मुतासर हुए हैं, जबकि 237 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। मुतासर इलाकों में तकरीबन 293 राहती कैंप काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने ज़िला कलेक्टरों के साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासर अज़ला में हुक्काम को हिदायत दी कि वो ड्यूटी पर रहें और अपनी छुट्टियों को मनसूख कर दें। आकाशवाणी न्यूज़ भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने जमैका के वज़ीरे आज़म एंड्रयू हॉलनेस का भारत के यौमे आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत जमैका के साथ बढ़ती हुई दोस्ती की दिल से कदर करता है, नेस खुसूसी और करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तई पुरुम्मीद है। अमले, अवामी शिकायात और पेंशन के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में कौमी अनुभव अवार्ड्स 2026 तफवीज करेंगे। अमले, अवामी शिकायात और पेंशन की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब में पेंशन मित्र पर एक किताबचा और मुल्कगीर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLS मुहिम के लिए 5 रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर सुंगल टनल को आवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसका तवील अरसे से इंतज़ार था। ये टनल राजौरी और पुंछ के दो ज़िलों नेज मुत्तसिल इलाकों के साथ कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी। सरहदी शाहराहों की तंजीम के ज़रिए तामीर करदा इस टनल को पहले 22 अगस्त को आवाम के लिए खोलने का प्रोग्राम था, अलबत्ता इसे यौम आज़ादी के तोहफे के तौर पर वक्त से पहले ही खोल दिया गया है। यह सारफीन को राहत फराहम करेगी और खित्ते में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
0: कालीधर रेंज से होकर गुजरने वाली 2.79 किलोमीटर तवील ये अहम टनल तामीर की गई है। ये मौजूदा रूट के मुश्किल हिस्से को बाईपास करेगी और तवक्को है कि इससे तकरीबन 13 किलोमीटर का सफरी फासला कम होगा। इसके अलावा ये सफर के वक्त में भी नुमाया कमी करेगी। अखनूर, राजौरी, पुंछ शाहराह पर सड़क चौड़ा करने और अपग्रेडेशन का काम तेजी के साथ जारी है, जिसके बायस ये टनल खोली गई है। सुंगल टनल की तामीर तकरीबन 600 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से की गई है। अब जबकि इस टनल को अवामी नकलो हरकत के लिए खोल दिया गया है, इस पर कुछ तामीरी और हतमी काम किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ छोटी गाड़ियों को इस टनल को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। भारी गाड़ियां, बसें और साजो सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों को अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि इस पर अभी कुछ काम होना बाकी है। भारी गाड़ियों की नकल हरकत को इस काम के पूरे होने के बाद आने वाले महीनों में आमदोरफ्त की इजाज़त दी जा सकती है। आकाशवाणी न्यूज़ जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: यूक्रेन और रूस ने आज एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए, जिसमें दोनों जानिब कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन ने इस जंग में अपने सबसे बड़े फजाई हमलों में से एक में पूरे रूस में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया, इनमें 6 अफराद हलाक हो गए। 3 कस्बों पर हमलों के बाद रूस के जनूब मगरबी खित्ते में 5 अफराद हलाक हो गए। 150 से ज़्यादा ड्रोन्स के हमलों में बहुत से घर और एक रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि जंगल में आग भड़क उठी है। मास्को खित्ते में एक निजी घर पर यूक्रेन के ड्रोन के एक हमले में 48 साल शख्स हलाक हो गया। मास्को के गवर्नर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यूक्रेन के हमले में एक वेयर हाउस में आग लग गई। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने रात के दौरान 822 यूक्रेन के ड्रोन्स को नाकारा बना दिया।

0: FIH खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में ग्रुप मरहले के मैच में चीन के खिलाफ 2-2 से सनसनीखेज ड्रॉ के साथ अपने मुहिम का आगाज किया। नवनीत ने 8वें मिनट में भारत को इब्तदाई बर्तरी दिलाई, लेकिन चीन ने 15वें मिनट में जोंग यिंग के पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल करके बराबरी कर ली। दीपिका ने 25वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत की बर्तरी को बहाल किया। तीसरे क्वार्टर में चीन की मैनिंग ने 39वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर गोल करके स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। भारत और चीन पूल डी में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ हैं। पूल से सरे फहरिस्त दो टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत इस आलमी चैंपियनशिप की 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। भारत को मर्दों के सिंगल्स, खवातीन के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स में 2-2 एंट्रीज हासिल हुई हैं, जबकि मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में 3 भारतीय जोड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। KL राहुल ने 82 रन जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम कहकशा। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चंद फिल्मी गजलें। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं जहां आरा फिल्म की गाई इस गजल से, जिसे गाया है तलत महमूद ने, बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के।

जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर उन छोटे छोटे पलों को पीछे छोड़ाते हैं जिनमें सुकून छिपा होता है। कभी खुली धूप में बैठकर बीते दिनों को याद करना, कभी ठंडी हवा के झोंकों के साथ यूं ही कहीं दूर निकल जाना और कभी बस अपने मन के साथ कुछ पल अकेले गुजारना। फिल्म मौसम का गुलजार साहब का लिखा और मदन मोहन जी के संगीत में सजी ये गजल जैसे फुर्सत की उसी तलाश को आवाज देती है। उपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गजल हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं बल्कि उन खूबसूरत पलों का भी नाम है जिन्हें हम रास्ते में महसूस करते हैं।

कुछ गजलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। उनमें बीते हुए रिश्तों की आहट होती है, तन्हाई की खुशबू होती है और यादों की एक ऐसी तस्वीर होती है जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। फिल्म उमराव जान की मशहूर गजल कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरी हुई है। शहर नया है, माहौल अनजाना है, लेकिन दिल के भीतर उठने वाले सवाल बहुत पुराने हैं। आखिर ये कैसी जगह है जहां हर तरफ अजनबीपन है और हर कदम पर कोई बीती हुई याद साथ चलती है। शायर शहरयार के अल्फाज और आशा भोसले की आवाज ने इस गजल को ऐसी गहराई दी श्रोताओं की सुनते सुनते हम भी उसी भावुक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं।

श्रोताओं, जिंदगी को समझना शायद इतना आसान नहीं। कभी ये खुशियों की सौगात लगती है तो कभी सवालों से भरी एक लंबी राह। हम जीते रहते हैं मगर कई बार ठहर कर सोचते हैं कि आखिर जिंदगी है क्या और इसका असली मतलब क्या है। इसी एहसास को अपने खूबसूरत अल्फाज में पिरोती ये गजल जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसमें जिंदगी को करीब से देखने, महसूस करने और उसके बदलते रंगों को समझने की कोशिश की है। कभी उम्मीद, कभी तन्हाई और कभी यादों की नरम सी दस्तक, हर एहसास इसमें अपनी जगह बना लेता है।

जगजीत सिंह की आवाज में आपने अभी सुनी सरफरोश फिल्म की ये गजल, और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में काजल फिल्म की गजल। बोल हैं साहिर के और संगीत है रवि का। मोहब्बत में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। किसी की नजरों की कशिश, किसी की मुस्कान की मिठास और करीब आने की वो हल्की सी झिझक, इन्हीं नर्म एहसासों से बनती है एक खूबसूरत प्रेम गजल। आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफ़ी की गाई काजल फिल्म की इस गज़ल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन, कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ

0: बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के सात चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritham Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritham Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritham Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritham Sarkar is a widely travelled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritham Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the seven chakras of our body.
0: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ओशित जाना।
1: Tonight, Ritham Sarkar is accompanied on the tabla by Oshit Jana.
0: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकोंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: Ritham Sarkar begins his guitar recital with rag malkos. With alap, jor and jhala, the composition is set to vilambit jhaptal followed by drut tintal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम सरकार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Raag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Raag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Raag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Raag Kirwani.
2: The composition is set to Kahrwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम सरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण

0: ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital